नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के साथ गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। श्री मोदी ने कल सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। श्री मोदी ने आधुनिक तकनीक, बेहतर निगरानी और केंद्र राज्य के बीच मजबूत समन्वय पर बल दिया। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा जरूरी है। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थ, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर की सुरक्षा चुनौतियों पर सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है। गृह मंत्री ने कहा कि अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून देश में पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की स्वीकृति दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। भारतीय नौसेना 31 अगस्त को मुंबई की नौसेना गोदी में निस्टार श्रेणी के दूसरे गोताखोर सहायता पोत निपुण को नौसेना में शामिल करेगी। स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ये पोत भारत की रक्षा जहाज निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसका निर्माण विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। ये पोत पनडुब्बी बचाव अभियानों में भी नौसेना की क्षमता को मजबूत करेगा। भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई को 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2016 में शुरू की गई यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के साथ वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की एक दशक की

0: लंबी सफलता की सराहना की है।
1: इस दुनिया के दो डिजिटल भुगतान लेनदेन में से एक भारत में होता है। पिछले वर्ष दुनिया में भुगतान लेनदेन की कुल मात्रा में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% रही। पिछले महीने देश भर में यूपीआई के जरिए 23 अरब से अधिक लेनदेन दर्ज किए गए। यूपीआई की अभूतपूर्व पहुंच और विश्वसनीयता को वैश्विक स्तर पर भी मान्यता मिली है। यूपीआई अब फ्रांस, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस सहित 11 देशों में संचालित हो रहा है। दीपेंद्र और ऋषु के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: दिल्ली सरकार आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर सशक्त बनाना है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि राजधानी में प्याज और चीनी की कोई कमी नहीं है। सरकार ने कहा कि कीमतें बढ़ने पर नेफेड से प्याज और चीनी खरीदकर लोगों को उचित दरों पर उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने प्याज की सस्ती बिक्री के लिए विभिन्न स्थानों पर कैंप लगाने और नेफेड से खरीद की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधारों से जुड़ी मसौदा रिपोर्ट को संसदीय समिति ने सर्वसम्मति से स्वीकृति दे दी है। शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल मामलों की संसदीय समिति की बैठक में एजेंसी को वैधानिक दर्जा देने के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच मतभेद रहे। बाद में रिपोर्ट की भाषा पर सहमति बनने के बाद समिति ने एजेंसी में सुधार और उसे मजबूत करने से जुड़ी मसौदा रिपोर्ट को स्वीकृति दे दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 4 दिन की यात्रा पर कनाडा के टोरंटो पहुंच गई हैं। इस दौरान श्रीमती सीतारामन कनाडा के वित्त मंत्री फ्रांसुआ फिलिप शोपेनिये के साथ पहली भारत कनाडा आर्थिक और वित्तीय वार्ता में हिस्सा लेंगी। इसके बाद वित्त मंत्री G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए अमरीका जाएंगी। भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन आज श्रीलंका 8 विकेट पर 265 रन से आगे खेलेगा। श्रीलंका पहली पारी में भारत से 238 रन पीछे है। भारतीय टीम ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर समाप्त घोषित कर दी थी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति बैठक में 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह ने अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा। दिल्ली सरकार आज लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4,000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। भारत और चीन ने सीमा विवाद के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। दुनिया भर में ईद मिलाद उन नबी की रौनक, केरलवासी मना रहे ओणम का सबसे शुभ दिन तिर ओणम। और ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने जर्मनी के विंसेंट कीमर को हराकर ग्रैंड शतरंज टूर फाइनल्स के खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। श्री मोदी ने कल सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी हुई रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इनकी कुल लागत 30,000 करोड़ रुपए से अधिक है। श्री मोदी ने किसानों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए कृषि क्षेत्र के डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म एग्रीस्टैक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक के बेहतर उपयोग का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट के मामलों पर जागरूकता अभियान, प्रशिक्षण और सुरक्षित डिजिटल व्यवहार को बढ़ावा दिया जाए। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून देश भर में पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा बेहद जरूरी है।
2: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। उन्होंने बताया कि मादक पदार्थ, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर की सुरक्षा चुनौतियों पर सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि अगले 15 से 20 वर्षों की संभावित चुनौतियों की पहचान कर उन्हें समय रहते रोकने की रणनीति बनाई जानी चाहिए। गृह मंत्री ने राज्यों से नशे के खिलाफ अभियान तेज करने और सुरक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर बल देते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य सुरक्षित, घुसपैठ मुक्त और नशा मुक्त भारत बनाना है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: गृह मंत्रालय ने केरल का आधिकारिक नाम बदलकर केरलम कर दिया है। ये बदलाव 25 अगस्त से लागू हो गया है। केरल का नाम बदलने से संबंधित विधेयक 11 अगस्त को लोकसभा और अगले दिन राज्यसभा में पारित हुआ था। इस महीने की शुरुआत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विधेयक को मंजूरी दी थी। इसके बाद इसे कानून का रूप मिल गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू

0: को मूल्यवर्धन करना है। भारतीय नौसेना निस्तार श्रेणी के दूसरे गोताखोर सहायता पोत निपुण को 31 अगस्त को मुंबई में डॉकयार्ड में शामिल करेगी। स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ये पोत भारत की रक्षा जहाज निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका निर्माण विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। ये पोत पनडुब्बी बचाव अभियानों में भी नौसेना की क्षमता को मजबूत करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार आज लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
1: अब तक 9,13,000 से अधिक महिलाओं ने इस योजना के लिए पंजीकरण कराया है और 6,52,000 से अधिक आवेदन अंतिम रूप से जमा किए जा चुके हैं। दिल्ली सरकार ने कहा कि वित्तीय सहायता अगले महीने की पहली तारीख से सीधे महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाएगी। दिल्ली के वर्ष 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए 5,110 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। दिल्ली सरकार ने सभी पात्र महिलाओं से समय पर अपना ऑनलाइन पंजीकरण पूरा करने का भी आग्रह किया है। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस बीच दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि राजधानी में प्याज और चीनी की कोई कमी नहीं है। सरकार ने कहा है कि कीमतें बढ़ने पर नेफेड से प्याज और चीनी खरीद कर लोगों को उचित दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ गठित करने के विचार पर सहमत हो गया है। केंद्र सरकार ने याचिका में सिविल सेवा परीक्षा 2025 के अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर से जुड़े उम्मीदवारों पर न्यायालय के 11 मार्च के फैसले पर स्पष्टीकरण मांगा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधारों को लेकर संसदीय समिति ने मसौदा रिपोर्ट को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। समिति ने एजेंसी को वैधानिक दर्जा देने समेत इसमें सुधार और मजबूत बनाने से जुड़ी सिफारिशों पर सहमति व्यक्त की। कांग्रेस सांसद मुकुल वासनिक की अध्यक्षता वाली समिति की ये छठी बैठक थी। ई श्रम पोर्टल के को आज 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये भारत के असंगठित कार्यबल के लिए सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 2021 में इस पोर्टल को शुरू किया था। इसके माध्यम से देश का पहला आधार आधारित राष्ट्रीय असंगठित श्रमिक डेटाबेस तैयार किया गया है। सरकार अखिल भारतीय निगरानी नेटवर्क के माध्यम से देश भर में प्रचलित मौसमी श्वसन संबंधी बीमारियों के रुझानों पर कड़ी नजर रख रही है। नई दिल्ली में स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल ने मीडिया को बताया कि देश में वर्तमान में फैल रहा इन्फ्लुएंजा वायरस पिछले कुछ वर्षों में देखे गए मौसमी पैटर्न के अनुरूप है। वर्तमान अवलोकन किसी नए इन्फ्लुएंजा खतरे के उभरने का संकेत नहीं देते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 25 अगस्त से 2 सितंबर तक कनाडा और अमेरिका की 9 दिन की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करना है। कनाडा की 4 दिन की यात्रा के दौरान श्रीमती सीतारामन वहां के वित्त मंत्री फ्रांसवा फिलिप शॉपिने के साथ पहली आर्थिक और वित्तीय वार्ता में हिस्सा लेंगी। अमरीका में वित्त मंत्री शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क का दौरा करेंगी। भारत और चीन ने सीमा मुद्दे के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है। साथ ही सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों ने कहा है कि इससे द्विपक्षीय संबंधों के विकास और प्रगति को बढ़ावा मिलेगा।
2: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कल पेचिंग में भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वीं दौर की वार्ता की सह अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पर विस्तार से चर्चा हुई। दोनों देशों ने अक्टूबर 2024 में कजान और पिछले साल अगस्त में तियाजिन में बनी सहमति को लागू करने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों पक्षों ने कैलाश मानसरोवर यात्रा और 3 निर्धारित सीमा व्यापार मार्गों से सीमा व्यापार समेत लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने का भी स्वागत किया। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं विकास नापा।
0: भारत और न्यूजीलैंड ने हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और समावेशी बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई है। दोनों देशों के बीच दूसरी रक्षा

0: रणनीतिक वार्ता कल न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में हुई। वार्ता में समुद्री सुरक्षा, संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने और 2030 के रोड मैप के लक्ष्यों को पूरा करने पर विचार किया। भारत और मोरक्को ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने, निवेश में वृद्धि करने और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये भारत और मोरक्को के बीच साझेदारी को अधिक मजबूत तथा गतिशील बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। कनाडा ने अमेरिका के साथ बढ़ते व्यापार विवाद के बीच 27 अरब 60 करोड़ डॉलर के अमेरिकी सामान पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाने का फैसला किया है। ये जवाबी शुल्क 8 सितंबर से लागू होंगे। गोवा के परनेम स्थित पत्रा देवी शहीद स्मारक का आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अनावरण करेंगे। ये स्मारक गोवा के मुक्ति संग्राम में बलिदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति और उनके योगदान को समर्पित है।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने कहा कि यह स्मारक उन 31 सत्याग्रहियों की याद में बनाया गया है जिन्होंने 1955 में गोवा को भारत में शामिल करने की मांग को लेकर सत्याग्रह किया था। गोवा में प्रवेश की कोशिश के दौरान पुर्तगाली सैनिकों की गोलीबारी में उन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्मारक परिसर में शहीदों की याद में मूर्तियां और अलग अलग संरचनाएं बनाए गए हैं। पत्रा देवी शहीद स्मारक शहीदों को श्रद्धांजलि देने, इतिहास को समझने और आने वाली पीढ़ियों को गोवा के मुक्ति संग्राम से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनने की उम्मीद है। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलाद उन नबी आज देश के विभिन्न हिस्सों में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर अलग अलग जगहों पर पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं पर मिलाद महफिलें और सीरत सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। उधर केरलवासी ओणम का सबसे शुभ दिन तिर ओणम मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को ओणम के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए कहा कि खुशियों और उल्लास का ये रंगारंग त्योहार पूरी दुनिया में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने ईद ए मिलाद उन नबी की भी शुभकामनाएं दी है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, केरलम और माहे में तेज वर्षा का अनुमान लगाया है। मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी दिन के दौरान तेज वर्षा की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में सक्रिय मॉनसून के बीच आज सुबह राज्य में भूकंप के झटके महसूस किए गए। शिमला में सुबह करीब 5:46 पर हल्के झटके आए जो कुछ सेकंड्स तक चले। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.0 मापी गई। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर के फाइनल्स के खिताबी मुकाबले में जगह बना ली है। प्रज्ञानंदा ने सेमीफाइनल में जर्मनी के विंसेंट कीमर को 19-9 से हराया। फाइनल मैच प्रज्ञानंदा और मौजूदा चैंपियन फेबियानो कारुआना के बीच खेला जाएगा। शीर्ष 3 स्थान हासिल करने वाले खिलाड़ी अगले साल के ग्रैंड चेस टूर के लिए सीधे क्वालिफाई करेंगे। भारत के साथ दूसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन आज श्रीलंका 8 विकेट पर 265 रन से आगे खेलेगा। श्रीलंका पहली पारी में भारत से 238 रन से पीछे है। भारतीय टीम ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान की खबर है, देश में अब निजी कंपनियां भी मिसाइल का निर्माण कर सकेंगी। डीआरडीओ की तकनीक निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करने की मंजूरी। अमर उजाला लिखता है, सरकार देगी तकनीक, निजी कंपनियां बनाएंगी मिसाइलें। इस फैसले से देश में ही मिसाइलों का बड़े पैमाने पर उत्पादन हो सकेगा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, H1N1 संक्रमण के मामले बढ़े, स्कूलों को दी हिदायत। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सीमा विवाद का समाधान तलाशने पर भारत चीन सहमत। एनएसए अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी की अगुवाई में हुई विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता। जनसत्ता ने सर्वोच्च न्यायालय का कथन दिया है, वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में चढ़ावा चोरी नहीं होने देंगे। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, यूपी में बुजुर्ग महिलाओं को बसों में मुफ्त सफर। स्कॉलरशिप से वंचित स्टूडेंट्स के लिए फिर खुलेगा पोर्टल, मेडिकल

0: है इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम चित्रलोक। 26 अगस्त एक ऐसी महान महिला का जन्मदिन जिन्होंने अपना पूरा जीवन इंसानियत की सेवा के नाम कर दिया। मदर टेरेसा, जिनका असली नाम था अग्नेस गोंझा बोया जीजू, उनका जन्म 26 अगस्त 1910 को हुआ था। भारत आकर उन्होंने गरीबों, बीमारों, अनाथों और बेसहारा लोगों की सेवा को ही अपना जीवन बना लिया था। 1950 में उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की। उनकी इसी निस्वार्थ सेवा और मानवता के प्रति समर्पण के लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनके जन्मदिन पर उन्हें याद करते हुए एक ऐसी महिला के रूप में जिन्होंने हमें यह सिखाया कि इंसानियत की सबसे बड़ी पहचान है किसी जरूरतमंद के काम आना, सुनते हैं ये गीत।

0: पुकार फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और साथियों के स्वरों में। मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे एआर रहमान का संगीत।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे।

आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम चित्रलोक। अलका याग्निक और साथियों के स्वरों में इश्क विश्क फिल्म का गीत, समीर का लिखा, अनु मलिक का संगीत बनाया।

श्रोताओं, आज है जाने माने फिल्मकार मधुर भंडारकर का जन्मदिन। उन्हें जन्मदिन की ढेरों बधाइयां देते हुए हम आपको सुनवाने जा रहे हैं अगला गीत। लेकिन साथ ही आपको बता दें कि आज के फनकार आज का कार्यक्रम ये केंद्रित रहने वाला है फिल्मकार मधुर भंडारकर पर। 9:30 पर और रात्रि पुनः आप सुन पाएंगे 9:30 पर। आलेख एवं स्वर अमरकांत दुबे का है, प्रस्तुति रमेश गोखले की, तो सुनना नहीं भूलिएगा। और गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं हीरोइन फिल्म से बैनी दयाल और श्रद्धा पंडित की आवाज़ें, नीलेश मिश्रा का लिखा गीत, सलीम सुलेमान का संगीत।

श्रोताओं, 26 अगस्त महिला समानता दिवस भी मनाया जाता है 26 अगस्त के दिन। क्या आप जानते हैं कि आज का दिन सिर्फ महिलाओं की उपलब्धियों को याद करने का दिन नहीं है, बल्कि बराबरी के उस अधिकार को समझने का दिन है जिसकी लड़ाई महिलाओं ने वर्षों तक लड़ी। 26 अगस्त 1920 को अमेरिका में 19वें संविधान संशोधन के जरिए महिलाओं को मतदान का संवैधानिक अधिकार मिला। लेकिन महिला समानता का मतलब सिर्फ वोट देने का अधिकार नहीं है, इसका मतलब है शिक्षा, रोजगार, समान अवसर, समान सम्मान, सुरक्षा और अपने जीवन से जुड़े फैसले लेने की आजादी। और भविष्य की बात करें तो असली समानता तब होगी जब किसी महिला को आगे बढ़ने के लिए अपने जेंडर की वजह से, लिंग की वजह से कोई अतिरिक्त बाधा ना झेलनी पड़े, क्योंकि बराबरी किसी एक दिन का उत्सव नहीं, हर दिन की सोच और व्यवहार का हिस्सा होनी चाहिए।

प्रेम रतन धन पायो, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं मोहम्मद इरफान, दर्शन रावल और पलक मुश्ताक की आवाज में। इरशाद कामिल ने इस गीत को लिखा है और हिमेश रेशमिया का संगीत। और इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रलोक अब यहीं संपन्न होता है। दीजिए आज्ञा।

0: है विविध भारती।
1: आज के फनकार, हमारा आज का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों।

0: श्रोते हो, आपण ऐकत आहात आकाशवाणीचं अमरावती केंद्र FM बँड 101.5 MHz वर।
1: चटपटीत चमचमीत चवदार स्वाद ब्युटीफुल पदार्थ असो कुठलाही रुचकर बनवणार घरकुल।
2: घरकुल मसाले ज्यांच्या घरी वर्णावी त्यांची खवय्येगिरी।
1: म्हणून जेवण हवं असेल ठसकेबाज घरकुल मसाले आणा आज।
3: पहली किरण फूटती राग में एक शार्प मोड शुरू होता है। ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
4: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती।

0: एक वीडियो कैसेट लाइब्रेरी चलाता था। काफी साल मुझे उसमें, 4-5 साल मैंने स्ट्रगल किया। वीडियो कैसेट घर घर जाके पहुंचाता था। मैं खार में रहता था, तो वर्सोवा जुहू एरिया इलाके में जाके वीडियो कैसेट रहता था। कहीं फिल्म वालों को भी कैसेट दिया करता था मैं, तो वहां से तो पहले से फिल्म का तो था शौक। लेकिन एक ऐसा हो गया कि जब वीडियो कैसेट देते देते फिल्म वालों से बहुत ही काफी करीब आ चुका था मैं, तो मुझे ऐसा लगा कि यहीं से मौका मिलना चाहिए मुझे। तो मैंने वीडियो कैसेट्स के बाद मैंने कुछ और जॉब्स किए बॉम्बे में, जैसे छोटे मोटे क्लैप देना, कंटिन्यूटी लिखना छोटे मोटे डायरेक्टर के साथ। मेरी कोई एकदम डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं थी, क्योंकि मुझे कोई बड़ा डायरेक्टर अपना असिस्टेंट रख लेगा। तो काफी एक सवा साल मुझे स्ट्रगल करना पड़ा। उसके बाद मेरी मुलाकात मिस्टर राम गोपाल वर्मा जी से हुई है, तो उनके साथ मैं जुड़ा रहा 91 से लेकर 95 तक। तक 5 साल का सफर उनके साथ जुड़ा रहा, तो काफी कुछ सीखने मिला। वो एक अलग टाइप के डायरेक्टर है और काफी इनोवेटिव और क्रिएटिव किस्म के डायरेक्टर है, तो बहुत उनसे सीखने मिला। और वहां से एक जर्नी मेरी शुरू हुई है, क्योंकि जब पहली पिक्चर जब मैं बनाने निकला था, तो लोगों ने मुझे कहा कि आप कमर्शियल फिल्म बनाइए, क्योंकि जो कमर्शियल फिल्म चलती, तो मैं जिस तरह की सब्जेक्ट्स और जिस तरह आइडिया थे मेरे पास, तो कहीं लोगों ने बोला कि तुम बहुत ही इंटेलेक्चुअल सोचते हो और तुम बहुत ही श्याम बेनेगल गोविंद नगारी टाइप सोचते हो, तुम आप
1: जी
0: कमर्शियल फिल्में बनाओ। तो मुझे लगा कि रंगीला पिक्चर में मैं एसोसिएट डायरेक्टर था मिस्टर रामगोपाल
1: जी
0: वर्मा
1: जी
0: जी का, तो उसके बाद मैं इंडिपेंडेंट हो गया। मुझे लगा कि एक इंडिपेंडेंट फिल्म बनानी चाहिए, तो लोगों ने मुझे कहा कि तुम एक्सपेरिमेंटल सिनेमा या अलग टाइप का सिनेमा मत बनाओ, क्योंकि जो पहली पिक्चर होनी चाहिए वो कमर्शियल फिल्म होनी चाहिए। अगर कमर्शियल फिल्म चलेगी तो आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा दूसरे प्रकार की फिल्म बनाने का। तो मैंने शायद दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा लिया और सोचा, और इस सबसे मैंने एक कमर्शियल फिल्म बनाने की पूरी कोशिश की, जो दूसरों को पसंद था वो बनाया, जिसका नाम था त्रिशक्ति, जो पिक्चर थी जिसमें अरशद वारसी, मिलिंद गुना जी, शरद कपूर थे। तो वो पिक्चर बनने में ही 2.5 साल लग गए, और बाय द टाइम रिलीज हुई उसको 3 साल के बाद पिक्चर रिलीज हुई। तो जब बॉक्स ऑफिस से पिक्चर लगी, तो किसी के स्टेटस वहां पे नहीं थे, क्योंकि अरशद, शरद, मिलिंद गुना, ये तीनों के बॉक्स ऑफिस स्टेटस भी खत्म हो चुके थे। तो बड़े ही जद्दोजहद से वो पिक्चर रिलीज हुई, लेकिन वो ऐसी पिक्चर थी जिसकी खबर भी नहीं छपी, वो आई और चले गई, पता नहीं
1: पता
0: चला
1: नहीं
0: किसी
1: चला।
0: को। तो मेरे माथे पे एक होता है वो लग गया कि फ्लॉप डायरेक्टर बोल के, तो ये बहुत मुश्किल होता है कि एक इंसान को फ्लॉप डायरेक्टर का जब टैग लगता है, खास करके आपकी पहली पिक्चर नहीं चले, और
1: जी
0: खास करके जो पिक्चर जिसमें कुछ स्टारकास्ट भी नहीं थे, जो बी ग्रेड फिल्म कहा जाता था, तो वहां से उठ कर इस पोजिशन में पहुंचना बहुत संघर्ष करना पड़ा।

0: की फिल्म चांदनी बार, जिसने न सिर्फ अपने झंडे गाड़े बल्कि आपको राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिला दिया, उसका आइडिया आपको कैसे आया?
1: देखिए, त्रिशक्ति जब नहीं चलने के बाद एक 1.5 साल ऐसा मेरी लाइफ में आया कि जहाँ पे मुझे लगा कि मैं क्या काम करूँ, बल्कि किस तरह की, मुझे एक ही लगा कि ये जो पिक्चर मैंने बनाई थी त्रिशक्ति, ये मेरी फिल्म नहीं थी, ये मेरे दिल से निकली हुई फिल्म नहीं थी। मुझे लगा कि मैंने किसी और के हिसाब से फिल्म बनाई है, तो मुझे लगा कि एक फिल्म ऐसी बनानी चाहिए जिसमें मेरा काम नजर आए। तो इसी तरह से मैंने चांदनी बार का सब्जेक्ट, एक बार मेरा एक दोस्त था जो मुझे बार में ले गया, मुझे पता ना लेडीज बियर बार है, तो वहाँ ले गया, और उसने बार को जब मैंने देखा, मुझे लगा यार ये कैसा कल्चर है, यहाँ पे लोग लड़कियाँ डांस कर रहे हैं और लोग पैसे फेंक रहे हैं, तो वहाँ से जो आइडिया जनरेट हुआ मेरे से, तो वहाँ से ही मुझे लगा कि ऐसी फिल्म बनानी चाहिए। तो बहुत तो लोगों को मैंने सब्जेक्ट सुना है इसका, तो सब लोगों ने रिफ्यूज किया, बोला नहीं ये तो सब्जेक्ट समझ में नहीं आता है, या जिनको समझ में आया तो वो अश्लील बनाना चाहते थे, तो मैं अश्लील फिल्म नहीं बनाना चाहता था। मुझे लगा कि मैं अपने हिसाब से एक फिल्म बनाऊंगा बल्कि जिसके अंदर इमोशनल बॉन्डिंग रहेगी बल्कि। तो तब जाके मैंने मिस्टर आर मोहन, जो मेरी पिक्चर गलती से त्रिशक्ति देखे हुए थे, तो उनको लगा कि मधुर ने ऐसा टेक्निकली काम अच्छा किया था पिक्चर में त्रिशक्ति में, तो मैंने उनको सब्जेक्ट सुनाया चांदनी बार का, और उन्होंने बोला बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और मैं तुम्हारे साथ फिल्म बनाऊंगा। फिर मैंने एक रिसर्च किया, 6 महीने के ऊपर रिसर्च किया, बार में जाके लोगों से मिलके, बार वालों से मिलकर, वेटर से मिलकर, कस्टमर से मिलकर, तो काफी रिसर्च करके 6-8 महीने में मैंने उसकी स्क्रिप्ट की राइटरों के साथ बैठकर उसको डाला, और उनको लगा कि पिक्चर में स्पार्क है और ये बन सकती है अच्छी पिक्चर, तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है मधुर मैं बनाऊंगा। और तब्बू जी उनके साथ काम कर चुकी थी सदाए कालापानी पिक्चर में, तो मैंने उनको बोला तब्बू अगर होगी तो अच्छा रहेगा पिक्चर में, तो मैं और आरमोन साहब तब्बू को जाके मिले और हमने उनको नरेट किया, और तब्बू को बहुत अच्छा लगा सब्जेक्ट आइडिया, और उसके बाद ये पिक्चर मुकम्मल हुई। मुझे लगा कि एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए, क्योंकि मेरा दूसरा चांस था, अगर ये पिक्चर नहीं चलती तो शायद मैं यहाँ बैठा नहीं होता। और जब मैं चांदनी बार बना रहा था 1999-2000 में, तो जब म्यूजिक इंडस्ट्री जो है वो बड़ी पीक पे थी, और बिना गाने के तो पिक्चर ही नहीं बनती थी, और आइटम गाना तो एकदम पीक पे था वो टाइम पे, तो लेकिन मैंने मेरे प्रोड्यूसर को कन्विंस किया कि मैं बोला इसमें मैं कोई गाना नहीं रखना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगा कि इस पिक्चर से, गाना आने से पिक्चर का नरेशन जो है इसका बहुत ही कमजोर पड़ेगा, और मुझे लगा कि 6 महीने जो बार में रिसर्च किए, तो मैंने हमेशा फिल्मी गाने सुने थे, तो इतना जहन में था मेरे कि मुझे लगा कि रियलिस्टिक गाना होने में ही बेटर होगी, तो इस पिक्चर की जो मोल्डिंग है वो भी रियलिस्टिक लगेगी। तो इसलिए हमने कोई गाना या कोई आइटम सॉन्ग, अगर चांदनी बार मेरे ख्याल से ऐसी जगह थी जिसके अंदर आप 5 आइटम गाना भी डालते तो कम पड़ता, हर लड़की आइटम गाने भी डांस कर रही, लेकिन मैंने रियलिस्टिक गाना रखा जो पिक्चर के पुराने जो गाने होते हैं जानबूझ के रखा, और एक जर्नी दिखाई थी 1985 से 2000 तक, तो मैंने उस हिसाब से ईयर वाइज ईयर मैंने दिखा कि गाने चेंज भी होते हैं, एम्बियंस चेंज होता है, सेट को रेनोवेट किया गया, तो हमने वही डिसीजन लिया, और मैं इस बारे में मेरे प्रोड्यूसर को भी सहयोग दूंगा कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया इस बारे में।
0: ये तो थी फिल्म चांदनी बार की बातें, सिर्फ यही नहीं बल्कि मधुर भंडारकर की फिल्म पेज 3 भी राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजी

इस फिल्म पेज थ्री को बहुत ही रीजनेबल बजट में नए कलाकारों को लेकर बहुत ही कम समय में मधुर भंडारकर ने बना लिया। इससे जुड़ी कुछ बातें भी उनसे सुनेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि मधुर भंडारकर की एक और फिल्म थी आन, इसे भी डायरेक्ट उन्होंने ही किया था, लेकिन फिल्म के निर्माता फिरोज नडियाडवाला से उनके कुछ मतभेद होने के कारण उन्होंने तकरीबन कंप्लीशन पर ही ये फिल्म छोड़ दी, इसीलिए क्रेडिट्स में उनका नाम नहीं है। बहरहाल आइए सुनते हैं फिल्म आन का गाना।

0: हाँ तो मधुर जी, अब पलटाइए पेज थ्री।
1: पेज थ्री एक ऐसी फिल्म थी कि लोगों ने लगा कि ये किस तरह की फिल्म है और पता नहीं लोग इसे पसंद करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि एक पेज थ्री टाइटल ही बहुत ही अलग टाइटल था और पिक्चर में कोई फेस वैल्यू नहीं था। लेकिन हमारे प्रोड्यूसर, हमारे टीम ने पूछा उसको, स्क्रीन प्ले डायलॉग में इसको ढहा भरा से और इस तरह से उसको हमने प्रेजेंट किया, तो उस बात की खुशी हुई कि पिक्चर चली बोल के। वो पेज थ्री का आइडिया आया था जब मैं कहीं पार्टीज में गया, जैसे पेज थ्री पार्टीज कहते हैं, और कहीं अलग अलग मुझे लगा कि अलग अलग प्रकार के लोग एक पार्टी में आते, चाहे वो बिजनेस वर्ल्ड से हो, फिल्म वर्ल्ड से, एड वर्ल्ड से हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, पॉलिटिशियंस हो, तो एक छत के नीचे आते हैं और इंटरेक्ट करते हैं। तो मुझे लगा कि इस पर एक फिल्म बननी चाहिए। जब मैं ऑब्जर्व करता था, मैं एक अच्छा ऑब्जर्वर हूँ जैसे लोग कहते हैं, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि लोग किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, तो मुझे लगा कि इस पर फिल्म बन सकती है। तो मुझे पहले लगा कि एक ओवरनाइट सब्जेक्ट बनाते हैं जिसमें रात को पार्टी चालू होती सवेरे खत्म होती है, लेकिन फिर मुझे लगा कि इतने कैरेक्टर्स एक रात में मैं नहीं दिखा पाऊंगा, और किसके पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाना बड़ा मुश्किल हो गया था पिक्चर, कि ड्राइवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रखे, कोई सोशलाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से रखे। मुझे फिर एक लगा कि जर्नलिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो अच्छा रहेगा, तो इसलिए एक जर्नलिस्ट ऐसी रखी जो नई है बीट पे और नई तरह से काम शुरू किया है, तो ज्यादा मंझी हुई नहीं है वो, तो उस तरह से उसकी जर्नी हमने दिखाई है। खास घटना तो नहीं कहूंगा, लेकिन कहीं ऐसे पेज थ्री में इंसिडेंट्स मैंने देखे पार्टी

0: में कि किस तरह से सुपरफिशियल लोग, किस तरह से एक प्लास्टिक वर्ल्ड हम कहते हैं जैसे
1: हाँ
0: डिपिक्ट करते हैं कि वो आते हैं वहां पे। माने चेहरे के पीछे हर इंसान की कहानी होती है, हर इंसान का एक जज्बात होता है।
1: जी
0: तो मुझे लगा कि ये पिक्चर की स्टोरी अगर बताई जाए तो बहुत बहुत ही अनयूजुअल सब्जेक्ट था ये।
1: जी
0: लेकिन मुझे लगा कि रिस्क लेके लोगों ने, मुझे कहा चलो भाई तुम फिल्म बनाना चाहते हो ठीक है, लेकिन उसमें टाइटल तो चेंज करो, ये Page 3 समझ में किसको आएगा। लोग बहुत कहीं लोगों ने कहा कि मर्डर मिस्ट्री है,
1: जी
0: कोई फ्लैट नंबर है, क्या है ये,
1: जी
0: समझ में नहीं आ रहा पिक्चर। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, कि मैं उस टाइटल से सीमित था कि Page 3 होना चाहिए। मैं, मेरे ख्याल से कोई भी एक पिक्चर चलती, वो क्रेडिट पूरा डायरेक्टर को लेना नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से पूरे टीम ने के मेहनत की है, प्रोड्यूसर ने मेहनत की है, मेरे राइटरों ने मेहनत की है, म्यूजिक डायरेक्टर ने मेहनत की, राजू सिंह बैकग्राउंड म्यूजिक स्कोर बहुत अच्छा उसने किया, उसने मेहनत की, तो सब लोग ने की मेहनत।

दोस्तों, मधुर भंडारकर की बातों को सुनने के बाद आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि उन्होंने फिल्मों में जो भी सब्जेक्ट रखे हैं, जो भी उठाए हैं, जो समस्याएं दिखाई हैं, वो सब उनकी जिंदगी के आसपास घटने वाली चीजों को ही उन्होंने फिल्मों में उतारा है। उन्होंने कहीं कहा है कि मैं समस्याओं को सुलझाने की कोशिश नहीं करता। पेज 3 उन्होंने बनाई सन 2005 में, कॉर्पोरेट बनाई 2006 में कॉर्पोरेट वर्ल्ड को लेकर, ट्रैफिक सिग्नल बनाई सन 2007 में, बहुत ही खूबसूरत फिल्म 2008 में फैशन वर्ल्ड को लेकर उन्होंने एक रियलिस्टिक फिल्म दिखाने की कोशिश की, और फिर जेल की जिंदगी पर बनी सन 2009 में जेल। तो एक बहुत ही रियलिस्टिक कोशिश करते हैं मधुर भंडारकर अपनी फिल्मों के जरिए समाज को ये दिखाने की कि उसके आसपास, उसके अंदर क्या हो रहा है, ये भी देखिए।

सामाजिक सरोकारों को देखकर, जानकर, महसूस करके उसे रुपहले पर्दे पर प्रस्तुत करने में माहिर मधुर भंडारकर की दो फिल्मों का जिक्र यहाँ जरूरी करना हो जाता है। एक तो दिल तो बच्चा है जी, इसी कड़ी में एक और फिल्म है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, हीरोइन।

बात मधुर भंडारकर की कर रहे हैं तो ये जिक्र भी जरूरी है, यानी कहना चाहिए कि लीक से हटकर एक अलग सब्जेक्ट पर फिल्म बनाने वाले इस निर्देशक की हीरोइन के बाद कौन सी फिल्म आई तो तुरंत नाम याद आता है, कैलेंडर गर्ल्स। इस प्रतिभावान निर्देशक को भारत सरकार ने भी सराहा, उनकी प्रतिभा को नवाजा पद्मश्री देकर सन 2016 में। तो दोस्तों ये था फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम, रमेश गोखले द्वारा प्रस्तुत। इस कार्यक्रम के लिए शोध आलेख और स्वर अमरकांत का। अब नमस्ते।

है खिलते, हर मजहब के लोग है मिलते, इस बगिया में इस महफिल में हो, हे हम सारे हैं भारतवासी, सब है।

यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सुरीला सफर कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम सुरीला सफर। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को एतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। वैसे दोस्तों, अब तक तो आपको पता चल ही चुका होगा कि हर रोज हम एक इबारत या टेक्स्ट फेसबुक पर पोस्ट करते हैं, इसमें वो शब्द

छपे होते हैं जिन पर आधारित गाने इस कार्यक्रम में शामिल किए जा सकते हैं। तो आज का कार्यक्रम सुनने के लिए जरा इबारत ध्यान से सुन लीजिए। वैसे तो जो श्रोता फेसबुक पेज पर उपलब्ध हैं, जुड़े हुए हैं, तो उन्हें पता होगा, लेकिन जो लोग फेसबुक पेज पर नहीं हैं, उनके लिए हम इबारत जरा पढ़कर सुना देते हैं। जिंदगी में मिलती है जो मोहब्बत की घड़ी, तो दिल नील गगन की सैर करता है। वो पुरानी यादों की ही मेहरबानी है, सावन की बूंदें जब बरसती हैं, आह रिमझिम के ये प्यारे प्यारे लम्हे मनमीत बन जाते हैं। और बासंती पवन पागल बनकर बहती है। यहाँ पर कोई गाना याद आया? कौन सा गाना याद आया? हमें वैसे लगता है कि बासंती पवन पागल एक ऐसे कमी गाने जिनमें ये तीनों शब्द आते हों, लेकिन अगर आपको याद आए तो बताइएगा जरूर। बहरहाल आगे जरा पढ़ दूं तो दिल पूछ बैठता है कि ऐ संदली हवा तू कहाँ, ये बता इस नशीली रात में। तुम्हारे इंतजार में चंपा कली देखो झुकी जाए है, इस मौसम में कपट का कोई काम नहीं है। सजन रे झूठ मत बोलो, जब ऐसा लगे कि सजनवा बैरी हो गए हमार, तब भी वही पुरानी हंसी याद आ जाती है जो कभी लाल लाल होठों से छलकती थी, मतलब लाल लाल होठुआ से छलकती थी। यहाँ पर कौन सा गाना याद आया आपको? कोई लोकगीत है, याद कीजिए, फिल्मी लोकगीत, तलत महमूद की आवाज है। हमने हिंट भी दे दिया, पर आखिर में जब मन थकता है तो भक्ति ही सहारा बनती है। हे गंगा मैया तुहे पियरी चढ़ेबो, ये आस हमेशा रहेगी कि गंगा मैया में जब तक पावन धार बहेगी प्रीत अमर रहेगी। मतलब गंगा मैया में जब तक, आगे बताइएगा। घाट पर ढलती शाम में जैसे कोई पुकारता है, नदी नारे न जाओ शाम, पर लहरों के सन्नाटे में बस यही मलाल रह जाता है कि नदिया किनारे हेराई आई कंगना। जो छूट गया वो समय की धारा में बह गया, पर उसकी सुरमई गूंज आज भी यही ठहरी हुई है। अब जरा बताइए, अभी तक तो आपने इबारत पढ़ी थी, अब जब इबारत अपने आप से पढ़ी थी, जब मेरे मुंह से सुनी ये इबारत, तो आपके भीतर कुछ अलग भाव भी पैदा हुए होंगे। अब बहुत सारे भाव हैं इसमें, तो अब उन शब्दों को याद कीजिए जिन शब्दों से गाने आपके जहन में इस समय आ रहे हैं। और हाँ, बहुत सारे श्रोता नदी के बारे में लिख रहे हैं, तो हाँ नदी तो है इस शब्द में, नदी वाले कौन से गाने आपके जहन में वो भी बताइए। और ये भी बताइए कि किस नदी के किनारे आपका घर है, मतलब आपके शहर में कौन सी नदी बहती है, आपके गाँव में कौन सी नदी बहती है, ये भी बताते चलिए। और हाँ, ये जो बातें हैं गंगा मैया की बात भी इसमें है, गंगा मैया वाले कौन से गाने हैं वो जरा साझा कीजिए, और गंगा मैया से जुड़ी कौन सी याद है आपके भीतर। चलिए अब यादें और बातें साझा करते रहिए, लेकिन अब जरा सुनिए गाना और पहले भी बूझिए कि इस गाने में कौन है हीरो और कौन है हीरोइन। फिल्म आंखें, जिन्हें हीरो हीरोइन का नाम नहीं पता वो बता दें गीतकार संगीतकार का नाम। आंखें फिल्म का गाना, फटाफट बताइए हीरो हीरोइन का नाम।

आखिरी फिल्म का गाना था लता मंगेशकर की आवाज, साहिर लुधियानवी के बोल रवि का संगीत था, और हीरो हीरोइन माला सिन्हा और धर्मेंद्र। हमारे श्रोताओं ने बहुत त्वरित जवाब दिया और सही जवाब दिया है। और एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे नागपुर शहर के बगल में 15 किलोमीटर पर कान्हा नदी बहती है, और लेकिन बाकी किसी श्रोता ने अब तक नहीं लिखा कि उनका शहर या उनका घर गाँव किस नदी के किनारे है। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि बिल्कुल यही कला है पाठन की जो आपको बाकी से अलग करती है। आज की पहली जब आपके मुंह से सुनी तो गीतों की श्रृंखला बनती चली गई। गंगा मैया को इस गीत से याद करते हैं, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, न मानो तो बहता पानी। और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे घर से थोड़ी ही दूर कुंदा नदी है, निमाड़ में माँ नर्मदा भी है। और एक श्रोता ने लिखा है कि धर्मेंद्र और माला सिन्हा, गीतकार साहिर लुधियानवी, संगीतकार रवि, बिल्कुल सही लिखा। अरे एक श्रोता ने और लिखा, मेरे इधर कावेरी नदी है। वैसे नदी के किनारे अगर घर है, शहर है, गांव है, तो कितना अच्छा लगता है जब आप अकेलेपन से ऊबे या ठंडी हवा, एकदम प्राकृतिक कुदरती हवा चाहें तो नदी के किनारे चले जाएं, बस यूं ही बैठे रहें, खुद से बातें करें, खुद से गुफ्तगू करें और इसका आनंद अवश्य लें। क्योंकि कई बार क्या होता है, अरे कौन जाए वहां तक घूमने टहलने के लिए, चलो मोबाइल में उतना समय बिता लेते हैं। तो ये जो मन का जो भटकाव है, इससे बचना चाहिए। जब आप कुदरत के नज़दीक जाते हैं तो आपके भीतर भावनाओं का ज्वार होता है, आपकी संवेदनशीलता बढ़ती है और आपकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। बहरहाल ज़रा हम श्रोताओं की टिप्पणियों पर आ जाएं। हमारे श्रोता जो लिख रहे हैं वो हम आप तक पहुँचा दें। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, आज की इबारत तो शब्दों का गुलदस्ता है जिसे पढ़ते ही मन में पुराने सदाबहार गानों की महफिल सज गई है। इस जादुई लिखावट में छुपे कुछ बेहद प्यारे गाने सीधे दिल को छू रहे हैं, जिन्हें आज दोपहर 1 बजे सुनने का इंतजार रहेगा। नील गगन की सैर करता है याद आता है फिल्म आम्रपाली का वो खूबसूरत गाना नील गगन के तले। और एक श्रोता ने लिखा है कि रिमझिम के ये प्यारे प्यारे लम्हे सुनते ही कानों में रस घोलता है, रिमझिम के तराने लेकर आई बरसात। और आगे लिखा है, ऐ संदली हवा तू कहाँ ये बता, फिर सीधे जोड़ता है इस नगमे में, पूरे इस हमारी इबारत को गानों से इन्होंने जोड़ दिया है। और अंत में ये भी लिखा है, चंपा कली देखो झुकी जाए, किशोरदा की शरारती आवाज। और कुछ श्रोता ने लिखा है कि वाह भाई, मेरी 10-12 गानों में से पहला गाना ही शामिल हो गया। गनीमत है कि आपने शिकायत नहीं की कि मेरी पसंद का गाना शामिल नहीं हुआ। चलिए, हो सकता है आपका गाना शामिल हो जाए, मतलब आप सभी में से। तो आप अपनी पसंद लिखते रहिए, और ये है हमारी पसंद और आप सबकी पसंद। बताइए जरा, गीतकार और संगीतकार का नाम, गीतकार संगीतकार का नाम आपको बूझना, फिल्म उसने कहा था और रिमझिम बरसात से

0: para salir y casarte. Pajarín din que ye pere pere guite nene.
1: भाई आज तो गानों की बहार सी आई हुई है विविध भारती के फेसबुक पेज पर हमारे श्रोताओं की ओर से बढ़कर एक गाने आ रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है नदी नारे न जाओ शाम पैया पढ़ूं, और एक श्रोता ने लिखा है कि साहिल लुधियानवी और साहिल लुधियानी और रवि शायद ये अगले गाने के लिए लिख रहे हैं। और हमने आपसे पूछा था, उसने कहा था फिल्म में गीतकार संगीतकार

कौन है शैलेंद्र और सलिल चौधरी, लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजें हैं। एक श्रोता ने नदी के लिए लिखा है, हमने पूछा था आपसे कि आपका शहर या गांव किस नदी के किनारे बसा है या आपके घर के पास कौन सी नदी है। हमारे श्रोता ने लिखा है गंगा बनारस शहर। एक श्रोता ने लिखा है ओ गंगा आए कहाँ से, गंगा जाए कहाँ से, मचलती हुई हमारे संग संग चली गंगा की लहरें। क्या बात है, बहुत सारे गाने हमारे श्रोता हमें याद दिला रहे हैं। हालांकि ये सारे गाने हमारे जहन में है, लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा है कि इतने सारे गाने आपको याद आ रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे घर या गांव के पास नदी नहीं है, बहुत दूर है वो। और एक श्रोता कहते हैं कि गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे। एक श्रोता ने लिखा है गंगा सबकी मैया है, हमारे घर में जब नई बहू आती है तो सबसे पहले उसे गंगा मैया की पूजा करवाने ले जाते हैं। पीली साड़ी मांग में पीला सिंदूर, पीला नहीं बल्कि उसको मटिया सिंदूर बोलते हैं जो नारंगी रंग का होता है। और बहू को गंगा जी के किनारे पीली साड़ी से ही गंगा मैया की पूजा की जाती है और अपना आंचल फैलाकर सुहाग मांगती हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं तो बनारस से हूँ, वहाँ गंगा नदी है। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे तो जबलपुर में माँ नर्मदा जी हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरा मायका सांगली है, वहाँ कृष्णा नदी है। और एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे शहर चित्तौड़गढ़ में दो नदियां हैं, एक का नाम गंभीरी और दूसरी का नाम बीडच नदी। गंभीरी नदी प्रसिद्ध नदी है जो पन्ना धाय के समय प्रसिद्ध हुई थी, जहां पर उदय सिंह जी को छुपाया गया था। भाई नदियों के बारे में अगर आपको भी कोई जानकारी है तो आप भी साझा कर सकते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे घर के पास नदी तो नहीं है लेकिन डैम 3-4 हैं, वो भी जंगल पहाड़ से घिरे हुए। और एक श्रोता कहते हैं कि मेरे खंडवा शहर में छोटी आबना और बड़ी आबना नदी बहती है, वही 60 किलोमीटर दूर माँ नर्मदा बहती है। छोटी और बड़ी आबना जहाँ खंडवा का स्थानीय जल ढांचा बनाती है, वहीं माँ नर्मदा पूरे अंचल की आध्यात्मिक आर्थिक और जीवनदायिनी शक्ति है। और एक श्रोता ने लिखा है कि मैं लखनऊ की हूँ तो वहाँ गोमती नदी बहती है और कानपुर ससुराल है तो यहाँ गंगा नदी बहती है जो बहुत पवित्र मानी जाती है। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे यहाँ नर्मदा नदी क्योंकि हम एमपी वाले हैं। और एक श्रोता कहते हैं कि ओ बसंती पवन पागल आह रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत, तू कहाँ ये बता चंपा कली देखो नदिया किनारे हे राई, आए कंगना मैं न भूलूंगा मैं न भूलूंगी सुरमई शाम, इस तरह से आए। बहुत सारे श्रोताओं ने आज इस तरह से गाने लिख भेजे हैं और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि तलत महमूद का जिक्र तो किया लेकिन छोटी और बड़ी आपना जहाँ खंडवा का स्थानीय जल ढांचा बनाती है, वहीं माँ नर्मदा पूरे अंचल की आध्यात्मिक आर्थिक और जीवनदायिनी शक्ति है। और एक श्रोता ने लिखा है कि मैं लखनऊ की हूँ तो वहाँ गोमती नदी बहती है और कानपुर ससुराल है तो यहाँ गंगा नदी बहती है जो बहुत पवित्र मानी जाती है। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे यहाँ नर्मदा नदी क्योंकि हम एमपी वाले हैं। और एक श्रोता कहते हैं कि ओ बसंती पवन पागल आह रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत, तू कहाँ ये बता चंपा कली देखो नदिया किनारे हे राई, आए कंगना मैं न भूलूंगा मैं न भूलूंगी सुरमई शाम, इस तरह से आए। बहुत सारे श्रोताओं ने आज इस तरह से गाने लिख भेजे हैं और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि तलत महमूद का जिक्र तो किया लेकिन तलत महमूद का गाया हुआ गाना आप लोग सुनाते ही नहीं है, तो अभी जो गाना सुनवाया था फिल्म उसने कहा था उसमें भी तलत महमूद की आवाज थी, अब चलिए ये गाना भी सुनिए, जरा देखिए किसकी आवाज है और हमें गीतकार संगीतकार का नाम जरूर बताइए। फिल्म का नाम हम बता रहे हैं लागी नहीं छूटे रामा, गीतकार संगीतकार का नाम आपको बूझ

कानपुरी चित्रगुप्त। सभी श्रोताओं ने लगभग सही बताया, कुछ एक श्रोताओं ने गलत जवाब भी दिया, कोई बात नहीं। और आपने जवाब दिया और इस प्रोग्राम से जुड़े हुए, ये जानकर हमें अच्छा लग रहा है। एक श्रोता ने लिखा है कि सुरीला सफर में भोजपुरी गीत सुनकर अच्छा लगा। दरअसल ये लोकगीत हैं और जब हम लोकगीत सुनते हैं तो अपने अपने अंचल को याद करते हैं, अपने अपने गाँव की मिट्टी को याद करते हैं। लोकगीतों में बसी होती है सौंधी मिट्टी की सुगंध। तो आप अपने गाँव को याद कर सकते हैं, कौन सी वो बात है जो शहर में रहते हुए गांव को मिस करते हैं आप, और कितने बरस हो गए अपने गांव गए हुए। और बात नदी की चल रही थी, बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं कि हमारा गांव या शहर इस नदी के किनारे, जैसे हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि मेरे घर के नजदीक त्रिमुहानी नदी, गंडक नदी आदि बहती हैं। तो जरा बताइए कि पिछले दिनों आप कब नदी के किनारे गए थे और सिर्फ घूमने के मकसद से गए हों नदी के किनारे। एक समय था जब नदी के किनारे जाकर पानी भर के लाया जाता था। हालांकि आज भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो इंटीरियर में हैं, जहां पर नदी से घड़े में पानी भरकर लड़कियां और महिलाएं सिर पर रखकर ले जाती हैं, वहां पानी की किल्लत भी बहुत सारी है। तो आज जब ये बात चली है तो यहाँ पर एक ये संदेश भी देना जरूरी है कि पानी बहुत कीमती है, पानी की बचत भी बहुत जरूरी है। जब आप पानी बहाते हैं, वेस्ट करते हैं, तो याद रखें कि बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पर दूर दूर नदी के किनारे से, नदियों से पानी भर के लोग सिर पर रखकर घड़ा ले जाते हैं। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि नदी के द्वीप अज्ञे जी द्वारा लिखी गई कविता है। द्वीप व्यक्ति का प्रतीक और नदी समाज या व्यापक प्रवाह का व्यक्ति समाज से ही आकार पाता है। व्यक्ति और समाज के बीच संबंधों को दर्शाती है नदी। नदियों को हम माँ समान पूजते हैं, फिर भी नदी की स्वच्छता के बारे में जागरूकता नहीं है। आप किस तरह से जागरूकता फैलाते हैं, क्या संदेश देते हैं अपने बच्चों को, क्या कहते हैं, क्या सिखाते हैं, क्या कभी नदी के किनारे उन्हें ले जाकर घुमाते हैं, या सिर्फ मॉल या और फिल्में सिनेमा दिखाने ले जाते हैं, या फिर पार्क में ही ले जाते हैं, नदी के किनारे ले जाते हैं, ये भी आप हमें बताइए। एक श्रोता ने लिखा है कि जीवन में प्रेम के पल, पुरानी यादें और सावन का मौसम मन को असीम आनंद देता है। संकट या जीवन के अंतिम पड़ाव में ईश्वर की भक्ति ही सच्चा सहारा बनती है, जो प्रेम को अमर रखती है। बीता हुआ समय भले ही वापस नहीं आता, लेकिन उसकी खूबसूरत यादें हमेशा दिल में दस्तक देती है। ओ बसंती पवन पागल, और इस गाने को बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है, मतलब इस गाने की एक तरह से फरमाइश लिख भेजी है हमारे श्रोताओं ने। तो चलिए हम यही गाना सुन लेते हैं, लेकिन हमारी पहेली भी है शामिल। तो पहेली का जवाब दीजिए कि कौन है इस फिल्म में कलाकार और कहां पर फिल्माया गया है ये गाना, फिल्म जिस देश में गंगा बहती है। गीतकार संगीतकार का नाम भी आप बता सकते हैं। गाना कहाँ फिल्माया गया है, किस जगह पर, किस शहर में, ये भी आप बता सकते हैं।

0: इस गाड़ी में, इस फिल्म में गाड़ी पर बैठकर कौन है हीरोइन और कौन है हीरो बैठकर जा रहे हैं बताइए। बैलगाड़ी में बैठे हैं हीरो हीरोइन, नाम आपको पूछना है। और साथ में वो झूठ वाली बात भी बताइएगा कि कब झूठ बोला था और डांट पड़ी थी कि नहीं।
1: भला कीजिए

हमारे एक श्रोता ने लिखा है, तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। मेरे बाबूजी का बहुत पसंदीदा गीत था, कहते थे कि ये निर्गुण है। और बहुत सारे श्रोताओं ने सब जवाब सही दिया है। बैलगाड़ी में राज कपूर और वहीदा रहमान हैं। और जरा ये बताइए कि ये फिल्म किस रचनाकार की रचना पर आधारित थी, किस उपन्यासकार के उपन्यास पर आधारित थी ये फिल्म। और एक श्रोता की टिप्पणी है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि बनारस के 80 घाट के पास रहता हूँ, जब भी मन में आता है गंगा जी निहारने चला जाता हूँ और बहुत सुकून मिलता है। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे पुणे में मुला मुठा नदियों का संगम है, उपनगरों में पवना राम नदियां हैं। अब बात गंगा जी के निहारने की चली है, तो चलिए वो गंगा वाला गाना ही सुन लेते हैं, जो आप सबका पसंदीदा गाना भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे श्रोताओं ने इस गाने का जिक्र किया है। लेकिन जरा पहली पूछिए, गीतकार और संगीतकार का नाम बताइए। और हाँ, हमने पूछा था कि जो अभी गाना सुनवाया, सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, ये बात तो हमें सिखाई जाती है, लेकिन

बड़ा भोला मासूम होता है, वहां ये बात नहीं पता चलती है, नहीं चलती है। तो कौन सी ऐसी बात है जिसके लिए आपने झूठ बोला और डांट खाई, ये भी बताइएगा ईमानदारी से। फिलहाल ये गाना जिसके लिए बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है।

ये फिल्म थी फणीश्वर नाथ रेणु की कृति मारे गए गुलफाम पर आधारित ये फिल्म थी। और ये हमारा सवाल था गंगा मैया, ये तीसरी कसम फिल्म के लिए जो सवाल पूछा था उसके लिए था ये जवाब। और अभी जो गाना आप सुन रहे थे गंगा मैया तो है पियरी चढ़ई वो, इसमें हमने आपसे गीतकार और संगीतकार का नाम पूछा था। श्रोताओं की ओर से इसका भी जवाब सही आया है, शैलेंद्र और चित्रगुप्त। और एक श्रोता ने लिखा है कि एक बार मैं जब छोटी थी तो दीदी के बच्चे के लिए मिल्क पाउडर और सेरेलेक रखा रहता था जो चोरी करके मैं खा जाती थी। मम्मी डांटती थी पर दीदी ने समझाया कि छोटू बेबी का है, फिर अलग से वो मुझे भी खाने देती थी। और ये जो चोरी है दूध पाउडर या सेरेलेक तो मुंह पर लगा रह जाता था, तो जब आप झूठ बोलते थे तो पकड़ में भी आ जाते थे। एक श्रोता ने लिखा है कि अपने पिताजी से बचपन में 1 रुपए के लिए झूठ बोला था, वो मार पड़ी कि अभी तक याद है, जीवन भर याद रहेगा। और ऐसे ही जो बातें हैं वो आपको नैतिकता भी सिखाती हैं कि आगे चलकर आप ये सब बातें छोड़ देते हैं, जो डांट पड़ती है मार पड़ती है उससे आप अपने को समृद्ध करते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि हे गंगा मैया तो हे पियरी चढ़ई वो भोजपुरी सिनेमा के इतिहास का सबसे पहला और मील का पत्थर माने जाने वाला गीत है। सन 1963 में रिलीज हुई फिल्म भोजपुरी फिल्म है, शीर्षक

आते हैं कि आगे चलकर आप ये सब बातें छोड़ देते हैं, जो डांट पड़ती है, मार पड़ती है, उससे आप अपने को समृद्ध करते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि हे गंगा मैया तो हे पियरे चढ़ाई, वो भोजपुरी सिनेमा के इतिहास का सबसे पहला और मील का पत्थर माने जाने वाला गीत है। सन 1963 में रिलीज हुई फिल्म भोजपुरी फिल्म है, शीर्षक गीत है। इसे महान गीतकार शैलेंद्र ने लिखा था, चित्रगुप्त ने संगीत तैयार किया था। और बात शैलेंद्र की चलिए, इसी महीने में शैलेंद्र की जयंती आ रही है। अगर आपको तारीख याद है शैलेंद्र की जयंती की, तो आप जरूर बताएं, इसी महीने में है। अब आगे बढ़े और आपको सुनवाए ये गाना, जरा बूझिए फिर एक बार गीतकार का नाम। फिल्म है जिद्दी।

दी जाती है वो सही होती है। एक श्रोता ने लिखा कि जीवन में सुख दुख खुशी या गम खुद की किस्मत अब कुछ पहले से तय है, नियति के परे कुछ भी नहीं, तभी तो वो हमें किसी अनजान से मिलाती है और ऐसे कि जैसे कभी अलग थे ही नहीं। संवेदनाओं के अंबार उमड़ते हैं जब उसके करीब या ख्यालों में खोते हैं। दुनिया में जैसे खुशी के एहसास के सिवा कुछ भी नहीं है। और मेरे ख्याल से इबारत पढ़कर इन्होंने ये अपनी बात लिखी है। और एक श्रोता ने लिखा है कि हृदय में दुख का सागर उमड़ता है और मन वैराग्य से जुड़ता प्रतीत होता है, जो वियोग श्रृंगार के आध्यात्मिक भक्ति यानी लौकिक से अलौकिक की यात्रा की शुरुआत हो सकती है। ये भी इबारत से जुड़ी हुई बात है। एक श्रोता ने लिखा है कि इन गानों को सुनते हुए मन बड़ा भावुक हुआ, क्योंकि बचपन की बहुत सारी बातें याद आ जाती हैं। अब जरा सुनिए ये गाना और बताइए कि कौन है हीरो और कौन है हीरोइन फिल्म तेरे घर के सामने। इस गाने का भी जिक्र बहुत सारे श्रोताओं ने किया है।

जिद्दी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में, हसरत जयपुरी के बोल थे और सचिन देव बर्मन का संगीत था। सभी श्रोताओं ने जवाब सही दिया, एक आध श्रोता ने गलत जवाब भी दिया और हमने आपसे पूछा था शैलेंद्र के लिखे गाने के लिए कि इसी माह में उनकी जयंती है, इसका भी जवाब श्रोताओं ने सही दिया 30 अगस्त। और बहुत सारे श्रोताओं से जब हम सवाल पूछते हैं तो ये भी कहते हैं कि भाई आपकी जानकारी बड़ी समृद्ध है, तो हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि हम तो विविध भारती सुनकर अपनी जानकारी को पुख्ता करते हैं, क्या बात है। और हम सब के लिए रेडियो एक मानक रहा है और पैमाना रहा है कि यहाँ से जो भी जानकारी

तेरे घर के सामने फिल्म का गाना मोहम्मद रफी की आवाज, शब्दकार हसरत जयपुरी, संगीतकार सचिन देव बर्मन और कलाकार देव आनंद और नूतन। इसका भी जवाब श्रोताओं ने सही दिया। एक श्रोता ने लिखा है कि सदाबहार और शानदार प्रस्तुति, आज आपने सुरीला सफर में फिल्मों के शानदार गीत सुनवाए और श्रोताओं की टिप्पणियां भी शामिल की। तो और बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं कि सुंदर गीतों से सजा ये कार्यक्रम, आभार आपका। दरअसल आभार आप सभी श्रोताओं का कि इस प्रोग्राम से जुड़े हुए थे। और अब अभी भी हमारे बहुत सारे श्रोता गानों की लिस्ट लिख रहे हैं और बहुत सारे गाने तो आज हमारे आपके बिल्कुल मैच हो गए। अब देखिए ये गाना भी आपके दिल के करीब है या नहीं। फिल्म अभिमान, जरा बताइए किस हीरोइन पर फिल्माया गया है ये गाना। संगीतकार का नाम बताइए और हीरोइन का नाम बताइए। फिल्म अभिमान।

अभिमान फिल्म का गाना था लता मंगेशकर की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे सचिन देवबर्मन का संगीत था, जया भादुड़ी पर फिल्माया गया था ये गाना। हमारा सवाल था और सभी श्रोताओं ने इसका भी जवाब बहुत जल्द दिया, कम समय में दिया, सही दिया सचिन देवबर्मन, ये भी सही जवाब था। आज का सुरीला सफर प्रोग्राम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। अब आज का सफर बस इतना ही।

0: thunderstorms with lightning and gusty winds likely to prevail over Uttarakhand, eastern Rajasthan, Andhra Pradesh and Andaman and Nicobar Islands till Saturday. Parts of Delhi are expected to witness generally cloudy sky with possibility of very light to light rain tomorrow. Flood concerns have resurfaced in Odisha with the Mahanadi swelling following rainfall in its upper catchment areas in Chhattisgarh. We have more from a correspondent.
1: In Odisha, the flood situation remains a concern in several areas despite water levels in major rivers showing a receding trend. About 670,000 cubics of water reached Mundali in Cuttack following rainfall in the upper catchment areas, raising the possibility of a rise in Mahanadi levels. The Baitarani has flooded again in Bhadrak, with Chandbali witnessing its third flood. More than 1 lakh people remain affected across 6 districts with 79 rescue teams deployed. The state government has said presently no flood situation in the Salandhi, Subarnarekha and Brahmani rivers. The IMD has issued no rainfall warning for Odisha today but has forecast heavy rain tomorrow and very heavy rain at isolated places this weekend. Prakash Das for Akashvani News, Bhubaneswar.
0: In men's cricket, host Sri Lanka were 179 for 3 against India in the second innings on the fourth day of the second test in Colombo when reports last came in. Earlier, India enforced the follow-on after bowling Sri Lanka out for 290 in the first innings. Resuming the first innings at 265 for 8 this morning, the host managed to add only 25 runs. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Finance Minister Nirmala Sitharaman addresses leading members of Indian business community in Toronto, Canada, says India's transformation is structural and driven by rapid urbanization and world-class digital infrastructure. Chief Minister Rekha Gupta launches Delhi Lakshmi Yojana, hands over approval letters to 2,500 beneficiaries, and Indian Medical Association issues public health advisory on H1N1 influenza spread in country, says no cause for panic, just heightened vigilance required. Festival of Onam been celebrated with traditional fervor. Birthday of Prophet Hazrat Muhammad, Eid Milad Nabi, been celebrated in various parts of the country. And with that we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कनाडा के टोरंटो में भारतीय व्यापारी समुदाय को संबोधित किया। कहा, भारत का परिवर्तन संरचनात्मक है जो तीव्र शहरीकरण और विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचे से प्रेरित है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया। 2,500 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपे। भारतीय चिकित्सा संघ ने देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा के प्रसार को लेकर परामर्श जारी किया। कहा, घबराने की जरूरत नहीं, सतर्कता बरतने पर जोर दिया। ओणम का त्योहार पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलाद उन नबी धार्मिक उत्साह के साथ मनाई जा रही है। पूर्वी और उत्तर पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना। और क्रिकेट में भारत ने कोलंबो टेस्ट मैच में श्रीलंका को फॉलो ऑन खेलने के लिए कहा। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है और यहाँ व्यापक अवसर, निरंतर वृद्धि, युवा आबादी, बढ़ती खपत तथा तेजी से विकसित हो रहे पूंजी बाजारों का अनूठा संयोजन निवेश के मजबूत अवसर प्रदान करता है। कनाडा के टोरंटो में आज भारतीय कारोबारी समुदाय के प्रमुख सदस्यों को संबोधित करते हुए श्रीमती सीतारामन ने ये बात कही।
3: भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। भारत में हो रहा बदलाव केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि एक व्यापक और संरचनात्मक परिवर्तन है। तेजी से हो रहा शहरीकरण, बढ़ता मध्यम वर्ग और विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचा अर्थव्यवस्था के लगभग हर क्षेत्र में नए अवसर पैदा कर रहे हैं।
2: वित्त मंत्री ने कहा कि देश के डिजिटल बुनियादी ढांचे ने वित्तीय और वाणिज्यिक सेवाओं तक पहुंच का दायरा बढ़ाया है। भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी के बढ़ते महत्व का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि कनाडा में भारतीय प्रवासी दोनों देशों के बीच एक रणनीतिक सेतु है।
3: भारत और कनाडा के द्विपक्षीय संबंधों में हाल के समय में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इन संबंधों को हमारे साझा लोकतांत्रिक और बहुतावादी मूल्यों, बढ़ते आर्थिक सहयोग और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क ने मजबूत किया है।

0: innovation-driven economies.
1: श्रीमती सीतारामन ने जून 2025 में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच द्विपक्षीय संबंधों को नए सिरे से मजबूत करने को लेकर बनी सहमति का उल्लेख करते हुए कहा कि दोनों देशों ने भविष्य केंद्रित रणनीतिक साझेदारी को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। श्रीमती सीतारामन 4 दिवसीय यात्रा पर कल टोरंटो पहुंची। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि जापान के शीर्ष कारोबारी और वित्तीय क्षेत्र के प्रमुखों से व्यापार, मोबिलिटी, औद्योगिक, बैंकिंग और बीमा क्षेत्रों में भारत में निवेश बढ़ाने और मौजूद कारोबारी अवसरों के बारे में चर्चा की गई। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि जापान यात्रा के दौरान भारत की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता का लाभ उठाने और देश की भूमिका को वैश्विक निर्यात केंद्र के रूप में मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। भारत ने इस बात पर भी जोर दिया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तत्काल प्राथमिकता मौजूदा संघर्षों के मानवीय परिणामों को कम करने के लिए कदम उठाना होना चाहिए। जन संकट, वैश्विक और स्थानीय खाद्य संकटों को कम करने में सुरक्षा परिषद की भूमिका शीर्षक से सुरक्षा परिषद की खुली बहस को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सुरक्षित, त्वरित और निर्बाध मानवीय सहायता पहुँच के साथ प्रभावी संघर्ष निवारण व्यवस्थाओं के समर्थन का आह्वान किया।
2: खाद्य असुरक्षा सशस्त्र संघर्षों के सबसे गंभीर मानवीय परिणामों में से एक है। आज के संघर्षों का असर केवल युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके दूरगामी प्रभाव पूरी दुनिया में देखने को मिल रहे हैं। ऊर्जा बाजारों, उर्वरक आपूर्ति, समुद्री परिवहन, मानवीय सहायता की व्यवस्था और कृषि व्यापार में होने वाले व्यवधानों से स्पष्ट है कि किसी क्षेत्रीय संघर्ष से वैश्विक खाद्य सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है।
1: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत माय भारत द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा। ये खेल युवा नेतृत्व, नागरिक जिम्मेदारी, स्वयं सेवा, फिटनेस और राष्ट्र निर्माण को एक साझा मंच प्रदान करेगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि देश की प्रगति के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण आवश्यक है। नई दिल्ली में दिल्ली लक्ष्मी योजना के स्वीकृति पत्र सौंपते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि योजना के शुभारंभ के बाद से 9,22,000 से अधिक महिलाओं ने इसके लिए पंजीकरण कराया है।
3: 1 अगस्त से लेकर के आज तक 9,22,000 बहनों ने इस योजना में अपना नाम रजिस्टर किया। इस दिल्ली लक्ष्मी योजना में पहली 2,500 बहनों को हमने अप्रूवल सर्टिफिकेट सौंपा है, क्योंकि ये पहली 2,500 बहने हैं जिन्हें इस योजना का लाभ मिलने जा रहा है।
1: श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ये वित्तीय सहायता महिलाओं को बच्चों की देखभाल और शिक्षा, घरेलू आवश्यकताओं और आजीविका तथा व्यवसायिक गतिविधियों में सहायता जैसी

0: मांसपेशियों में तेज दर्द और थकान जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। अन्य लक्षणों में सिर दर्द, नाक बहना या बंद होना, मतली, उल्टी और दस्त शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट तथा आईसीएआर एआईईए पीजी और एआईसीई पीएचडी 2026 परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी और परिणाम इस सप्ताह जारी करेगी। एजेंसी ने बताया है कि परिणाम और अंतिम उत्तर कुंजी उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करने को कहा है। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और उसके वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के लिए महिला सशक्तिकरण केवल चुनावी नारा है। नई दिल्ली में आज संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा नेता बांसुरी स्वराज ने कहा कि केंद्र सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने इस विधेयक का विरोध किया और सदन में इसके पारित होने में बाधा डाली। उन्होंने हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की कांग्रेस शासित सरकारों में महिला मंत्रियों की अनुपस्थिति को लेकर राहुल गांधी से सवाल किया। आकाशवाणी कोलकाता ने आज प्रसारण के 100वें वर्ष में प्रवेश किया है। आकाशवाणी कोलकाता की शताब्दी यात्रा का ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: आकाशवाणी कोलकाता ने आज अपना शताब्दी वर्ष में प्रवेश किया है, जो बंगाल में प्रसारण के इतिहास का एक महत्वपूर्ण पर्व है। केंद्र ने 26 अगस्त 1927 को अपना पहले बंगाल प्रसारण शुरू किया था। पिछले 100 वर्षों में आकाशवाणी कोलकाता बंगाल के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। समाचार, संगीत, साहित्य, नाटक, शिक्षा और जनसेवा कार्यक्रम के माध्यम से इसने कई पीढ़ियों के श्रोताओं को जोड़ा और ज्ञान चर्चा को दिशा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रसार के अधीन ये केंद्र आज आधुनिक माध्यमों के जरिए श्रोताओं तक पहुंचने के साथ साथ अपनी समृद्ध विरासत को भी संरक्षित कर रहा है। संदीपन दास गुप्ता के साथ अभिरूप भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, कलकत्ता।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दुनिया भर में रह रहे केरलम वासी आज तिरुओणम का पर्व मना रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: तिरुओणम के अवसर पर पारंपरिक पुष्प सज्जा ओण पुक्कलम से उत्सव की शुरुआत हुई। इसे पौराणिक राजा महाबली के स्वागत के लिए बनाया जाता है। फसल का ये प्रमुख पर्व सभी केरल वासियों द्वारा उत्सव के साथ मनाया जाता है। सबरीमाला, अरुणमुला और गुरुवायूर सहित राज्य के विभिन्न मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। पारंपरिक केरल भोज ओण साध्या भी तिरुओणम के प्रमुख आकर्षणों में शामिल है। आज राज्य भर में आधिकारिक आयोजनों सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम और पारंपरिक खेल आयोजित किए जाएंगे। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: वहीं पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलाद उन नबी आज देश के विभिन्न भागों में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में आज पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं पर मिलाद महफिलें और सीरत सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर मिलाद जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। इसके लिए जगह जगह सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। आकाशवाणी समाचार के पूर्व समाचार वाचक पंचदेव पांडे का आज निधन हो गया। उन्होंने 1963 में आकाशवाणी वाराणसी से उद्घोषक के रूप में अपने सफर की शुरुआत की थी। उन्होंने 1983 से 1997 तक आकाशवाणी दिल्ली में समाचार वाचक के रूप में अपनी सेवाएं दी। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दो दिन के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश का अनुमान है। वहीं उत्तराखंड, पूर्वोत्तर राजस्थान, आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में शनिवार तक तेज हवाएं चल सकती हैं। विभाग ने अगले सप्ताह देश में बारिश कम होने की संभावना जताई है। इस बीच दिल्ली के कुछ हिस्सों में कल आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में हुई बारिश के बाद महानदी का जलस्तर बढ़ने से उड़ीसा में एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: उड़ीसा में ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में बारिश के बाद कटक के मुंडली में लगभग 6,70,000 क्यूसेक पानी पहुंचा, जिससे महानदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका है। बाढ़ का पानी आरड़ी, सुंदरपुर, नंदापुर और उलाक पंचायत को प्रभावित कर रहा है। 6 जिलों में 1,00,000 से अधिक लोग प्रभावित हैं। अधिकारी नदियों के जलस्तर और संवेदनशील इलाकों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। IMD ने आज उड़ीसा के लिए बारिश की कोई चेतावनी जारी नहीं की है, लेकिन कल भारी बारिश का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।

उधर उत्तरी नेपाल में आज सुबह अचानक आई भीषण बाढ़ ने सीमावर्ती बस्तियों को भारी नुकसान पहुंचाया है और निचले इलाकों के कई जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बाढ़ सुबह तिब्बत की दिशा से आती हुई भोटे कोशी नदी में उमड़ी। नेपाल की सेना ने एक बयान में कहा कि पानी के अचानक बढ़ने से रसुआ जिले के तिरुमुरे और पास के सियाफुरुबेसी इलाके में भारी तबाही हुई है। भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान IICT और नेटफ्लिक्स ने कहानी कहने वालों की अगली पीढ़ी को समर्थन देने के लिए 100 भारतीय विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की घोषणा की है। इस छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को 6 व्यावसायिक कार्यक्रमों में 80% तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिनमें 1 वर्षीय 2 डिप्लोमा कार्यक्रम और 6 माह के 4 प्रमाण पत्र कार्यक्रम शामिल है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव और IICT बोर्ड के अध्यक्ष चंचल कुमार ने कहा कि भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। ये घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस वर्ष अगस्त में नेटफ्लिक्स के सहायक मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सारंडोस के साथ हुई बैठक के बाद की गई है। भारत ने अत्यधिक ऊंचाई वाले इलाकों में सैनिकों के लिए स्वदेशी पैराशूट तकनीक में बड़ी सफलता हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की आगरा स्थित ADRDE द्वारा डिजाइन और विकसित मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम का लद्दाख के न्योमा के मुध ड्रॉप जोन में सफल परीक्षण किया गया। ये दुनिया के सबसे ऊंचे ड्रॉप जोन में शामिल है। इस दौरान प्रशिक्षित जंपरों ने 0 से नीचे करीब 15 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 22,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई। कोलंबो क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे और अंतिम मुकाबले के चौथे दिन का खेल जारी है। फॉलो ऑन मिलने के बाद श्रीलंका ने दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक 3 विकेट पर 185 रन बना ली है। इससे पहले श्रीलंका की टीम पहली पारी में आज 290 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी 503 रन बनाकर घोषित की थी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कनाडा के टोरंटो में भारतीय व्यापारी समुदाय को संबोधित किया। कहा, भारत का परिवर्तन संरचनात्मक है जो तीव्र शहरीकरण और विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचे से प्रेरित है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया। 2,500 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपे। भारतीय चिकित्सा संघ ने देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा के प्रसार को लेकर परामर्श जारी किया। कहा, घबराने की जरूरत नहीं, सतर्कता बरतने पर दिया जोर। ओणम का त्योहार पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलादुन नबी धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना। और क्रिकेट में भारत ने कोलंबो टेस्ट मैच में श्रीलंका को फॉलो ऑन खेलने के लिए कहा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।

ये विविध भारती है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। पेश है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को हमारा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत है मोहम्मद रफी और नंदा की आवाजों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी। फिल्म का नाम है जब जब फूल खिले।

आइए अब सुना जाए अगला गीत, जिसे लिखा है हसरत जयपुरी ने। तर्ज है शंकर जय किशन की। फिल्म का नाम है मेरे हुजूर और इस गीत में आवाज आप सुनेंगे।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को वो भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझवारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
1: एक निर्देशक,

0: प्राध्यापक, तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा, तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्री।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों की 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले और साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन, फिल्म का नाम है शिकार।

0: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। और इस वक्त आप सुन रहे हैं सदाबहार गीतों का कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं अगला सदाबहार गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन। फिल्म का नाम है झुक गया आसमान।
1: कौन है जो सपनों

मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ, मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, जो झुक गया आसमान।

0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
1: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
2: कुछ दिल ने कहा,
3: सुनहरे ख्वाबों वाली एक लड़की,
4: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
3: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
4: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
2: हम चले तुम चलो सावन की हवा,
3: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
4: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब 3 चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता।
3: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई,
4: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
3: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
2: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम की,
3: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
2: जैसे तो है पास मेरे, तेरे पास मैं।
3: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय, बॉम्बे टॉकीज, 29 अगस्त से 12 सितंबर, हर शनिवार शाम 4 बजे, सिर्फ

कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।

साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है आशा भोसले की आवाज में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीत है ओपी नैयर का, फिल्म का नाम है हम साया।

பண்ணிட்டு உங்களே ஆகாஷ்வாணி அமராவதி கேந்திர எஃப்எம் பேண்ட் எக்ஸைட் பூர்ணாங்க 5 MHz வர श्रोते हो वे लक्षात घ्या दुपारचे 3 वाजतात. आकाशवाणी मुंबईच्या अस्मिता वाहिनीवरून प्रसारित होणाऱ्या प्रादेशिक मराठी बातम्या आता आम्ही सहक्षेपित करत आहोत काही क्षणातच.

0: सुना लीजिए, वैसे महिलाओं से अगर पूछा जाए कि आपको कौन सी साड़ी पसंद है तो बताना मुश्किल हो जाएगा,
1: बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये कहूँ या वो कहूँ, इसकी ये खासियत है तो उसकी वो खासियत है।
0: यहाँ जाने के लिए वो साड़ी, फलानी जगह जाने के लिए दूसरी साड़ी चाहिए। तो साड़ियों का भरमार हो लोगों के पास तो भी साड़ी से दिल नहीं भरता है,
1: और भरना भी नहीं चाहिए।
0: साड़ी दरअसल अपने देश की परंपरा है, और पारंपरिक साड़ी, पारंपरिक पोशाक भरा किसी नहीं अच्छा लगता है। तो इतने तरह की साड़ियां हैं कि जिसमें चूज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आजकल लोग साड़ियों के प्रकार के बारे में बहुत ही जागरूक हो गए हैं कि फला साड़ी ही हमें फला मौके पर पहननी है, और हम इसीलिए साड़ी के बारे में हर हफ्ते लेकर आते हैं जानकारियां थोड़ी बहुत। आज बालारामपुरम साड़ी के बारे में हम जानकारी देंगे,
1: जो ओणम का त्योहार है, तो क्यों ना हम केरल
0: की बात करें। तो बताइए,
1: बालारामपुरम साड़ी केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के बालारामपुरम क्षेत्र की प्रसिद्ध पारंपरिक हथकरघा साड़ी है, और लगभग 200 वर्षों से चली आ रही इसकी बुनाई परंपरा का संबंध त्रावणकोर के राज परिवार से माना जाता है।
0: और इस साड़ी में प्राकृतिक बिना रंगे और सूती धागे का प्रयोग किया जाता है। इसकी महीन बुनावट इसे हल्का और आरामदायक बनाती है। इसकी सबसे पहचाने जाने वाली जो विशेषता है वो ये है कि किनारे और पल्लू पर दिखाई देने वाली सुनहरी जरी, जिसे केरल में कसावू कहा जाता है, ये होती है।
1: यानी इसका कलर सिर्फ क्रीम, ऑफ व्हाइट या प्राकृतिक सफेद रंग की पृष्ठभूमि पर सुनहरा बॉर्डर होता है, और कहीं कहीं छोटे बुट्टे और रंगीन धागों का प्रयोग भी मिलता है। और पारंपरिक पिट लूम और हाथ से नियंत्रित बुनाई इसकी विशिष्ट पहचान है। कुछ डिजाइनों में बुनाई के कारण बॉर्डर पर हल्की उभरी हुई धारियां भी दिखाई देती है।
0: और बालारामपुरम साड़ी को जो पंजीकृत किया जाता है इस प्रमाण पत्र की तारीख 19 मार्च 2009 है,
1: और उन्हें GI टैग मिला हुआ है।
0: और इसके अलावा बालारामपुरम की बुनाई परंपरा को त्रावणकोर के महाराजा बाला

0: ममता जी, हमारे बहुत सारे साथियों ने ईर्ष्या शब्द हमारा विचार आपके में बहुत सारे कमेंट्स लिखकर भेजे हैं। एक साथी कहते हैं, ईर्ष्या मन की वो आग है जो दूसरों को नहीं सबसे पहले हमें ही जलाती है। किसी की सफलता से जलने के बजाय उससे प्रेरणा ले और अपने रास्ते पर आगे बढ़े। अगर मन में ईर्ष्या नहीं होगी तो जीवन बहुत अधिक सुंदर होगा। ये इन्होंने बात बहुत
1: हाँ
0: सही लिखी। साथ ही एक साथी कहते हैं कि जलन को दूसरे शब्दों में ईर्ष्या कहा जाता है। जलन का स्वभाव अग्नि तुल्य है। जैसे अग्नि अपने समीप में आई वस्तु को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही ईर्ष्या मानव की बुद्धि को नष्ट कर देती है। दूसरे की प्रगति को देख नहीं सकना जलन की भावना है। ऐसे लोग हमेशा दुखी रहते हैं। यही नकारात्मक सोच उनके पतन का कारण बनता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह की ईर्ष्या ना करें। एक हमारी सखी हैं जो लिख रही हैं कि कभी भी ईर्ष्या को कम करके नहीं आंकना चाहिए। आपके सबसे करीबी शुभचिंतक भी शायद आपको खुद से ज्यादा सफल होते देखकर ईर्ष्या से भर उठते हैं। जब कोई नकारात्मक ईर्ष्या से प्रेरित होता है तो वो सफल व्यक्ति की कामयाबी के प्रति हिंसक रूप से प्रतिक्रिया करता है। ईर्ष्या एक ऐसा दानव है जो अलग अलग मौकों पर अप्रत्याशित ढंग से उभरता है। सवाल तो यह है कि आप ईर्ष्या करना छोड़ सकते हैं, लेकिन जब दूसरे आपसे ईर्ष्या करें तब आप क्या करें?
0: जवाब दीजिए।
1: तब बस और कोई रास्ता नहीं होता है कि आप उन्हें नजरअंदाज करें।

0: अलावा और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि अगर ईर्ष्या करने वाले से आप लड़ने भिड़ने गए, बहस करने गए, तो और मुसीबत में
1: हमारे हाथ जल जाएंगे।
0: और एक हमारी और सखी लिख रहे हैं कि जलन को दूसरे शब्दों में ईर्ष्या कहा जाता है। जलन का स्वभाव अग्नितुल्य है, जैसे आपने पढ़ी तो नहीं
1: टिप्पणी, जी जी,
0: तो जैसे अग्नि अपने समीप से आई वस्तु को जलाकर आग बना देती है, वैसे ही ईर्ष्या मानव की बुद्धि को नष्ट कर देती है।
1: एक साथी ने लिखा है कि ईर्ष्या एक ऐसा नकारात्मक मानसिक भाव है जो मनुष्य को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खोखला कर देता है। ईर्ष्या का अर्थ है दूसरों की प्रगति, सुख या ऐश्वर्य को देखकर बिना किसी वास्तविक कारण के खुद दुखी होना। यानी ये जो है ना, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना, खुद हमेशा दुखी ही रहते हैं, और जब हम दुखी रहेंगे ना, तो हमारा घर, हमारा जो मन है, शरीर है, वो हमेशा निराशा का घर बन के रह जाएगा, हम आगे बढ़ ही नहीं सकते।
0: बिल्कुल, कई बार तो ईर्ष्या इतनी मतलब जरा जरा सी बात में होती है कि दो दोस्त हैं और तीसरा आपको देख रहा है, तो दोस्तों को, दो दोस्तों के बीच प्रेम स्नेह देखकर भी लोग ईर्ष्या करते हैं कि अरे देखो
1: कितनी
0: अच्छी दोस्ती है, हमारे पास नहीं है ये। किसी के घर को देख के ईर्ष्या होती है, किसी की कामयाबी देखकर ईर्ष्या होती है, किसी की प्रतिभा देखकर ईर्ष्या होती है। मतलब ईर्ष्या के कुछ कारण नहीं है,
1: कोई परिभाषा ही नहीं है,
0: जरा जरा सी बात पे लोग ईर्ष्या करते हैं। एक श्रोता लिख रहे हैं कि ईर्ष्या का तात्पर्य है पराई उन्नति से दुखी होना, ये एक ऐसा अवगुण है जो मनुष्य को आत्मविनाश की ओर धकेल देता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति सदैव अशांत रहता है और दूसरों के अहित की कामना करता है, भाई ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए।
1: एक साथी कहते हैं ममता जी कि बहुत से लोगों की फितरत होती है कि कोई भी उनका अपना उनसे किसी भी क्षेत्र में आगे निकल जाए तो उनको सहन नहीं होता और वो उसको पीछे लाने में कोई कसर नहीं छोड़ते, तो ये ईर्ष्या नहीं जलन होती है।
0: तो बस ये ईर्ष्या जलन दोनों सखियां हैं, बहने हैं, इनसे दोनों से दूर रहना चाहिए और हमें दूर नहीं जाना है, करीब आना है सखी सहेली के, लेकिन एक ब्रेक के बाद।

0: विविध भारती से यह है कार्यक्रम सखी सहेली, और बात चल रही थी ब्रेक पे जाने से पहले ईर्ष्या की कि किस बात पर। अच्छा सोनाली जी बताइए, आपको कभी किसी से ईर्ष्या हुई है?
1: पता नहीं, मुझे तो ऐसे ईर्ष्या होती नहीं, बल्कि मुझे तो खुशी मिलती है ममता जी अगर कोई आगे जाता है
0: और अपना अच्छा कोई खास तौर से अगर आगे बढ़ता है तो खुशी मिलती है। लेकिन हाँ, कई बार बचपन में पढ़ाई लिखाई में जो सहेलियां होती थी उन्हें देखकर लगता था कि काश ये गुण हमारे पास भी होता। लिखने की जो ताकत क्षमता होती थी, पढ़ने में जो तेज होती थी, तो लगता था कि हम भी इतने मार्क्स पा जाएं तो अच्छा।
1: या फिर कोई हमारी सहेली टीचर की कोई फेवरेट हुआ करती थी, तब लगता था अरे ये हमारी टीचर इन्हीं का नाम लेती है
0: और हमारा नहीं लेती। ये एक सहज ईर्ष्या होती है, बचपन की जो ईर्ष्या होती है सहज होती है, लेकिन बड़े होने पर जो किसी की कामयाबी पर जलन हो वो ठीक नहीं होता है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि ईर्ष्या करना इंसान की एक कमजोरी ही नहीं बल्कि एक बुरा अवगुण है। कुछ लोग ईर्ष्यालु होते हैं, उनकी आदत सुधारने पर भी सुधरती नहीं है। और एक श्रोता ने और लिखा है कि ईर्ष्या एक दुर्गुण है। आपके पास जो टिप्पणी है जरा पढ़कर सुनाइए।
1: एक साथी कहती है, मनुष्य है तो हमें भी अपने ईर्ष्या द्वेष का सामना ही करना पड़ता है, और वो भी बचपन में। कभी किसी को गुब्बारे घड़ी आदि मिल गए, हमारे पास नहीं रहे, किंतु जैसे जैसे हम बड़े होते गए वैसे वैसे ऐसी भावनाएं प्राय कम होती चली जाती है। अंत में स्वीकार कर लिया जाता है कि जही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। ये तो बहुत सही है। एक साथी कहते हैं कि शब्द हमारा विचार आपके ईर्ष्या भाई, ईर्ष्या एक मानवीय गुण है, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, किंतु षड मनोविकारों काम क्रोध लोभ मोह मद ईर्ष्या द्वेष में

0: इनकी गणना अवश्य है और इससे बचते रहने का निर्देश भी है। यद्यपि ईर्ष्या किसी के प्रति उत्पन्न हुए द्वेष के मानसिक उद्वेग का ही परिणाम है, इससे दूर रहने के लिए उद्वेग को यहीं पर रोकना उचित है।
1: भाई तरह तरह की बातें हमारे श्रोता लिख रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारी सखी है कि भाई ईर्ष्या तो इतनी भी नहीं चाहिए कि मेरी सामने वाले पड़ोसन तो इतनी ईर्ष्या करती है जब मैं सवेरे नाश्ता चाय बनाऊं और हमारे बुढ़ऊ अगर उसे आंगन में क्या समझ में नहीं आया कि आंगन में गिरे आम के पत्ते सहेजते झाड़ू मारते दिखे, मतलब घर के बुजुर्ग की बात है कि झाड़ू मारते दिखे तो वो भी आंगन में झाड़ू मारने निकल पड़ती है चाहे आंगन में कुछ भी ना हो। भाई ये तो गजब की ईर्ष्या। अच्छा इसी बहाने साफ सफाई हो
0: जाती हो जाएगी।
1: एक सखी है जो लिख रही है कि ईर्ष्या या जलन भाई बहनों में भाई भाई या पड़ोसियों की तरक्की से रहन सहन में हो जाती है। दरअसल ये ईर्ष्या स्वाभाविक और सहज होती है। ईर्ष्या करना इंसान की एक कमजोरी नहीं बल्कि एक बुरा अवगुण है और बहुत सारे श्रोता इस तरह की बात लिख रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि ईर्ष्या विषय पर आप लोग बहुत सारे कमेंट्स पढ़ रही हैं। ईर्ष्या विषय पर इसमें नकारात्मक ईर्ष्या का जिक्र किया गया है, क्या ईर्ष्या सकारात्मक और नकारात्मक भी होती है? क्या उदाहरण देकर समझा सकती हैं आप? भाई देखिए ये कोई पाठशाला तो है नहीं कि हम आपको समझा सकें। हम यहाँ पर ये एक ऐसा मंच है जहाँ पर श्रोताओं की टिप्पणियों के साथ हम अपनी बात अपने विचार साझा करते हैं आपसे। तो हम अपने विचार यही साझा कर रहे हैं कि ईर्ष्या जब सकारात्मक होती है तो ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी की कामयाबी को देखकर लग रहा है कि काश हम भी इतने ऊंचाई तक पहुंच पाते, ऐसा कुछ कर पाते, तो उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी।
0: और
1: तो,
0: अगर हम मेहनत करने लग गए
1: तो फिर वो सकारात्मक हो गए। और अगर हम सिर्फ जलते कुटते रहे तो वो नकारात्मक ही हो गए।
0: घर में बैठे रहे और बस जलते ही रहे, कुछ मेहनत ही नहीं की हमने,
1: बिल्कुल
0: तो वो नकारात्मक हो जाती है।
1: तो ईर्ष्या से जुड़ी हुई तमाम बातें हमारे श्रोता लिख रहे हैं, लेकिन ये नहीं लिखा कि कब उन्हें किससे ईर्ष्या हुई। और कई
0: व्यंजन भी नहीं लिखे।
1: हमें इंतजार है, अभी तो प्रोग्राम बाकी है, व्यंजन तो लिख भेजेंगे।
0: हाँ, कि आपके और घर में कौन सी मिठाई बनती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और ईर्ष्या कई बार हमारे श्रोताओं ने यह भी लिखा कि महिलाओं में ज्यादा होती है। महिलाओं में तब होती है जब उसके साथी को शेयर करने की कोई कोशिश करे तो महिला निश्चित रूप से लड़ पड़ती है। और बहुत सारी फिल्में भी इस पर बनी है,
0: इस विषय पर बनी है
1: कि जब दो महिलाएं आपस में ईर्ष्या करती हैं, ये कहने की बात है। दरअसल ईर्ष्या तो पुरुष में भी होते हैं। ये ऐसा गुण है जो सब में पाया जाता है, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक,
0: छोटे या बड़ी मात्रा में सब में होता है।
1: फिलहाल सुनते हैं।

0: कहाँ खो गई से सुना लीजिए।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं, ईर्ष्या 4 दिनों की जिंदगानी है, और दूसरों से ईर्ष्या करके व्यर्थ ही अपने शरीर को नुकसान क्यों पहुंचाया जाए। हर किसी को अपने नसीब का मिलता है।
0: और कर्मों का
1: और एक
0: नसीब के साथ साथ।
1: सखी ने भी ये भी लिखा है ममता जी कि कुछ चाहत में मन में रहती है तो ये लगता है कि उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद क्यों। कुछ बातों को देखकर ऐसा लगता है पर ईर्ष्या नहीं होती।
0: ये सहज बात होती है, मन में आती है, आए विचार और खत्म हो जाए तो कोई परेशानी का सबब नहीं है, लेकिन बहुत देर तक आपको तकलीफ देती रहे तो फिर बात गलत हो जाती है। वैसे आज हम एक और जरूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं, वो है नारी की पहचान। तो स्त्रियों की पहचान के साथ हमेशा तमगा रहता है पति की पहचान से फलाने की वाइफ या उनके सरनेम से ही जाना जाता है। ये फिर पहले पिता के नाम से बच्चों की मतलब लड़कियों की पहचान होती है, फिर पति के नाम से, फिर बाद में संतान के नाम से फलाने की मम्मी। तो ये जो है अब आज के युग में महिलाएं चाहती हैं कि उन्हें अपना नाम
1: खुद के नाम से पहचान
0: नाम से पहचाना जाए, उन्हें अपना सम्मान खुद मिले, चाहे बेटी हो, बहन हो, पत्नी, बहू, माँ, जैसे अनेक रिश्ते वे निभाती हैं। इन रिश्तों से उसे प्यार और सम्मान तो मिलता है, लेकिन इन रिश्तों के बीच उनकी अपनी पहचान कहीं गुम हो जाती है। एक महिला की पहचान केवल किसी की पत्नी, बेटी, बहू के रूप में नहीं बल्कि उसके अपने नाम और व्यक्तित्व से भी होनी चाहिए।
1: बिल्कुल सही कहा आपने ममता जी। और हमारे समाज में अक्सर विवाह के बाद महिला की पहचान उसके पति के नाम से होने लगती है। कई बार उनकी उपलब्धियां, उनकी प्रतिभाएं भी परिवार के रिश्तों के पीछे छिप जाती है, जबकि उन्होंने अपनी शिक्षा, मेहनत और संघर्ष से जो पहचान बनाई उसका श्रेय और सम्मान उसके अपने नाम के साथ जुड़ना चाहिए। और आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, जैसे शिक्षा कह लीजिए, चिकित्सा, विज्ञान, प्रशासन, खेल, कला, साहित्य, व्यापार और राजनीति जैसे अनेक क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। वे अपने कार्यों से परिवार और देश का नाम रोशन कर रही है। ऐसी महिलाओं को उनके अपने नाम से पहचानना और सम्मान देना हम सभी की जिम्मेदारी है।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अपना नाम केवल पहचान बताने का माध्यम नहीं है बल्कि ये व्यक्ति के अस्तित्व, आत्मसम्मान और स्वतंत्र व्यक्तित्व का प्रतीक भी है। जब किसी महिला को उसके नाम से पुकारा जाता है तो उसकी उपलब्धियों को उसके नाम से जब जोड़ा जाता है तो उसके भीतर आत्मविश्वास का संचार होता है और सम्मान की भावना भी मजबूत होती है। तो अमूमन यही कहा जाता है ना कि जैसे पति का नाम लेकर उनकी वाइफ, या जब दोनों, जबकि कई बराबर से प्रतिभाशाली हैं और बराबर से उनका करियर आगे बढ़ रहा है, कई बार महिलाएं दो कदम आगे भी होती हैं अपने पति से, तो भी उनकी वाइफ के नाम से ही उन्हें पुकारा जाता है।

0: उनके नाम से उन्हें नहीं जाना जाता है, ये कहीं उनके दुख का सबब भी होता है।
1: पर इसका अर्थ ये नहीं ना ममता जी कि महिला अपने पारिवारिक रिश्तों से दूर हो जाए, वो अपने सभी रिश्तों को बड़ी ही गरिमा के साथ निभाते हुए अपनी अलग पहचान रखना चाहती है।
0: सही कह रही है, और रिश्ते जीवन को सुंदर भी तो बनाते हैं, लेकिन अपनी पहचान जीवन को अर्थ देती है। अब जरूरी नहीं कि वो बहुत बड़ा काम करें, वो अपनी रुचि और प्रतिभा के अनुसार कोई भी क्षेत्र चुन सकती हैं महिलाएं। शिक्षा है, संगीत, लेखन, कला, व्यवसाय, समाज सेवा, खेल या कोई और हुनर, इन सब के लिए खुद को कोशिश भी करनी पड़ती है कि महिलाएं अपनी पहचान खुद बनाएं। कई बार कुछ महिलाओं को एक सहारे की हमेशा जरूरत होती है, अमर बेल के रूप में ही जाने जाने में उनको भी सुख मिलता है कि वो अपने पति के पति के साथ, मतलब पति के नाम से ही जाना जाना अच्छा लगता है। जबकि अगर उनके अंदर टैलेंट है, उनके अंदर प्रतिभा है, तो खुद अपना रास्ता चुने और अपने उस चुने हुए रास्ते पर आगे बढ़े।
1: और जब कोई महिला अपने मेहनत से सफलता प्राप्त करती है तो उसके परिवार के साथ साथ उसका अपना नाम भी सम्मान से लिया जाता है। यही आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास की सच्ची मिसाल है। आजकल बहुत सारी महिलाएं विवाह के बाद भी उन्हें उनके मायके के नाम से पहचानने की इच्छा रखती है। इस बात को लेकर परिवार के लोगों ने भी उनकी इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए, उन्हें उनके नाम से पहचानने का अधिकार उन्हें मिलना चाहिए। हालांकि थोड़ा अभी जमाना बदल रहा है, आजकल की जो युवतियां हैं वो अपना मायके का ही नाम रखती है अपने सारे इसमें डॉक्यूमेंट्स में, तो उन्हें उन्हें इस बात को लेकर रोक टोक नहीं होना चाहिए।
0: बिल्कुल सही बात है। अब एक गाना सुन लेते हैं, फिर और बातें करते हैं।

0: ये गाना हमारे श्रोता सुन रहे थे और बात हम कर रहे थे कि स्त्रियों को उनके पहचान से, उनके नाम से जाना जाना चाहिए, मतलब उनके नाम से उनकी पहचान होनी चाहिए। हमारे बहुत कम श्रोताओं ने इस मुद्दे पर लिखा है और जिन्होंने लिखा उनकी टिप्पणी उन तक पहुंचा रहे हैं। और ये तो अनुभव की बात है कि आपने कहाँ कहीं इस तरह के रिश्तों को देखा है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि शादी विवाह के बाद बेटी की पदवी बदल जाती है, न कि नाम। जैसे कि कन्या का नाम शीला है तो विवाह के बाद सरनेम बदल गया, यहाँ हुआ तो उसका नाम शीला ही रहेगा लेकिन पदवी दीक्षित की जगह, मतलब अगर पांडे परिवार है तो पांडे हो जाएगा। ये वैदिक परंपरा के अनुसार पाणि ग्रहण संस्कार के परिणाम से ही होता है, न कि अपने मनमर्जी से। ये दो के एक होकर ही जीवन जीते रहने के प्रक्रिया स्वरूप बंधन का द्योतक है, जिससे आपसी सहमति, सहयोग और सद्भाव बढ़ते रहने की बात है। तो यहाँ पर उल्टा भी हो सकता है, अगर आपसी सद्भाव सहयोग होता है तो आप उलट भी सकते हैं,
1: जी
0: है ना। तो ये हम लोगों की, ये आप अपनी सोच की बात है
1: जी
0: कि हम कई बार चाह कर भी, मतलब अगर लड़कियां चाहती हैं आगे बढ़ना चाहती हैं महिलाएं, तो भी उनको हम एक दायरे में कैद करना चाहते हैं।
1: एक हमारे साथी ने लिखा है ममता जी, वो हम टिप्पणी पढ़ रहे हैं। नारी जब अपनी शिक्षा, हुनर और आत्मविश्वास से आगे बढ़ती है तो अपने फैसले स्वयं लेना सीखती है, किसी विशेष क्षेत्र में नाम कमाती है, तब उसका नाम उसकी पहचान बनता है। रिश्ते नारी के जीवन को समृद्ध करते हैं, लेकिन उसकी पहचान केवल रिश्तों तक सीमित नहीं होना चाहिए। आज घर संभालने वाली महिला भी अपनी कला, पाक कला, लेखन, सामाजिक सेवा, राजनीति, ब्लॉगर या किसी हुनर के माध्यम से अपने अलग पहचान के माध्यम से नाम कमा रही है।
0: हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि नारी की पहचान केवल रिश्ते से नहीं बल्कि उसके अपने नाम, व्यक्तित्व और उपलब्धि से होनी चाहिए। वो बेटी, बहन, पत्नी या माँ के होने के साथ साथ एक स्वतंत्र व्यक्तित्व भी

0: राजनीति, ब्लॉगर या किसी हुनर के माध्यम से, अपने अलग पहचान के माध्यम से नाम कमा रही है।
1: हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि नारी की पहचान केवल रिश्ते से नहीं बल्कि उसके अपने नाम, व्यक्तित्व और उपलब्धि से होनी चाहिए। वो बेटी, बहन, पत्नी या माँ के होने के साथ साथ एक स्वतंत्र व्यक्तित्व भी है। उनके सपनों, विचारों और मेहनत को सम्मान मिलना चाहिए। जब नारी शिक्षा, आत्मविश्वास और प्रतिभा के बल पर अपनी पहचान बनाती है तो उसे उसका हक मिलना चाहिए। लेकिन ये बातें हम अपने घर में करते हैं, लेकिन दूसरों के घर में करते हैं दूसरों के लिए, लेकिन अपने घर में जब बारी आती है तो हम पीछे हट जाते हैं, सोचते हैं कि नहीं ठीक है, जैसे परंपरा
0: जो चल रहा है वो अच्छा है
1: जी।
0: एक सखी ने लिखा है ममता जी कि नारी की पहचान बने उसका अपना नाम, ये विषय रोजमर्रा के विषय से अलग लगा, मुझे ये विषय बहुत अच्छा लगा। अक्सर नारी को या तो पति के नाम से या पिता के नाम से जानते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि नारी की पहचान उसका अपना नाम होना चाहिए, इसका अपना एक आत्मसम्मान होना चाहिए। अक्सर होता है कि हम पति के नाम से नारी को जानते हैं, एक नारी की पहचान उसके अपने नाम से होना चाहिए, उसके कर्मों से होना चाहिए और उसके अपने स्वभाव से होनी चाहिए, ना कि उसके पति, पिता या परिवार के स्वभाव या परिवार के रहन सहन के तरीकों से होना
1: बिल्कुल
0: चाहिए।
1: सही कहा। तो अगर इन्हें विषय अच्छा लगा तो इस मुद्दे पर हम कभी और चर्चा करेंगे, और तब हम चाहेंगे कि हमारे श्रोता इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। फिलहाल एक गाना

0: काजू
1: मिठाई।
0: कतली बनाने की एक सामग्री लिखकर भेजी है एक श्रोता ने। काजू 2 कप, साबुत या टुकड़े में चीनी 1 कप, पानी आधा कप, देसी घी आधा छोटा चम्मच, इलायची पाउडर, गुलाब जल आधा छोटा चम्मच। काजू कतली बनाने के लिए काजू का पाउडर बनाएं। काजू को मिक्सी के जार में डालें। मिक्सी को लगातार ना चलाएं, इसे पल्स मोड पर रुक रुक कर कुछ सेकंड के लिए चलाएं ताकि काजू तेल ना छोड़े। पीसे हुए पाउडर को बारीक छन्नी से छान ले। जो मोटे टुकड़े बचे उन्हें दोबारा मिक्सी में पीस कर छान ले। चाशनी तैयार करें। एक भारी तले की कढ़ाई में चीनी और आधा कप पानी डालें। मध्यम आंच पर चीनी को पूरी तरह घुलने दें और चाशनी को 3 से 4 मिनट तक पकने दें। चाशनी की एक तार की कंसिस्टेंसी, यानी एक तार बनाना है, उसे चेक करें। अब मिश्रण पकाएं। गैस की आंच धीमी करें। छना हुआ काजू पाउडर और धीरे धीरे चाशनी में डालते जाएं। इसे लगातार चलाते रहें ताकि गांठें ना पड़े। मिश्रण को तब तक पकाएं जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए और कढ़ाई ना छोड़ने लगे, लगभग 5 से 6 मिनट तक। अब इसमें थोड़ा सा घी और इलायची पाउडर डालकर गैस बंद कर दे। अब इसको गूंथना है। मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने दे ताकि आप इसे छू सके। इसे बटर पेपर या चिकनी प्लास्टिक शीट पर रखें और हल्के हाथों से तब तक मस ले जब तक चिकना और आटे जैसा ना, डो जैसा ना हो जाए। बेलन में थोड़ा सा घी लगाकर इसे अपनी पसंद की मोटाई में बेल ले। शीट को पूरी तरह से ठंडा होने दे। उसके बाद चाकू की मदद से डायमंड शेप में काजू कतली काट ले और खिलाए।
1: क्या बात है। तो भाई ये मिठास घुली रहे और इसी मिठास को घोलते हुए हम एक हमारे पास टिप्पणी आई। हमारे आकाशवाणी परिवार के वरिष्ठ सदस्य हैं जिन्होंने टिप्पणी की है कि आज का ये प्रोग्राम बल्कि इस ट्रांसमिशन के लिए पूरा लिखा है इन्होंने और टिप्पणी भेजी है कि प्रोग्राम बेहतर जा रहा है। तो शुक्रिया अदा करते हैं उनका और आभार व्यक्त करते हैं। अब क्या किया जाए, कुछ बोले बतिया या गाना सुनवाए?
0: गाना सुनवा दे,
1: सुनवाते हैं।
2: नहीं,

0: स्पेंगेस्ट फिल्म का ये गाना था और बात चल रही थी गाने से पहले नारियों की पहचान की। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आजकल की नारियां तो आगे बढ़ रही हैं और अपने नाम से पहचाने भी जा रही हैं, चाहे वो खेलकूद हो या फिर आकाश में उड़ना हो, ट्रेन चलाना हो। नारी की सबसे सुंदर पहचान सिर्फ किसी रिश्ते से नहीं, उसके अपने नाम से होनी चाहिए। बेटी, पत्नी, माँ, बहन और भी बातें इन्होंने लिखी है जो हम पहले कर चुके हैं।
1: और अब इतना अच्छा विषय है तो क्यों ना एक मिठाई की बात हो जाए।
0: बिल्कुल।

ये आनंद फिल्म का गाना था, मुकेश की आवाज, गुलजार के बोल थे, सलील चौधरी का संगीत था। और अब जरा घड़ी की ओर देखिए कि हम अब कुछ बोले बतियाए नहीं, घड़ी यही कह रही है, ना ही हम गाना

0: सुनवा सकते हैं। तो लेते हैं सभी श्रोताओं से इजाजत, आप सभी को ममता सिंह
1: और सोनाली पाठक का
0: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: के मेहमान कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं अभिनेता जॉय सेन गुप्ता से। इनसे बातचीत की है अनुराधा उपाध्याय ने।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है एक ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी कलाकार को जिनका सफर थिएटर की सादगी से शुरू हुआ, अभिनय के विभिन्न रंगों में घुलकर डबिंग की अद्भुत दुनिया का हिस्सा बना। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने हिंदी और बांग्ला सिनेमा में अपनी छाप छोड़ी, टेलीविजन पर भी अपनी जगह बनाई और OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी काफी वो नजर आ रहे हैं। और आज बातों का सिलसिला शुरू करते हैं अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता से। तो जॉय सेन गुप्ता जी, विविध भारती की तरफ से एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आपका।
2: बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, और मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि मैं विविध भारती से फिर से जुड़ पा रहा हूँ, जो एक तरह से मेरी जड़ें जो हैं वो ऑल इंडिया रेडियो से जुड़ी हुई है, मेरी सांस्कृतिक जड़ें जिसे कहते हैं जी। मेरी सारी मेमोरीज जो हैं वो ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती के कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है, उसके इन्फ्लुएंस से ही जिसे कहते हैं कि मेरे गहन मन में कई तरह की चीज़ों का उपज हुआ, चाहे वो हमारे क्लासिकल दौर हो चाहे फोक का दौर हो, वो सब मुझे ऑल इंडिया रेडियो से ही मिला था। और नाटक, ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती में एक जमाने में बहुत सारे रेडियो नाटक खेले जाते थे
1: जी जी।
2: उसने जो मेरे सेंसेस पे जो काम किया था, वो नाटक सुन सुन के दोपहर को वो नाटक खास करके रविवार को सुनाते थे, मतलब उसके जरिए ही मैं कह सकता हूँ बचपन से मेरे इमेजिनेशन को जो है एक बहुत बढ़िया एक धक्का मिला
1: जी। विविध भारती तो खैर सुरीली धड़कन है ही
2: जी।
1: और अच्छा लगा आप विविध भारती के साथ जो आपकी यादें हैं उससे शुरुआत हुई है। शुरुआत करते आपके बचपन की, कहां कहां शुरुआत हुई ऐसा कहना चाहिए, क्योंकि हमने सुना कि आपके पिताजी की नौकरी के चलते काफी सारी जगह बदली है
2: जी,
1: तो कैसे शुरुआत हुई?
2: पैदा तो मैं कलकत्ते में हुआ
1: जी।
2: उस जमाने में मेरी माँ हर शाम को हारमोनियम निकाल के रविंद्र संगीत, नजरुल गीत प्रैक्टिस करती थी। मेरे पिताजी जोर से अपने कविताएं रिसाइट करते थे, चाहे वो बंगाली में हो चाहे इंग्लिश में, वर्ड्सवर्थ और कीट्स हो। घर में लोग जब आते थे तो बहुत डिबेट होते थे, चाहे वो माइथोलॉजी पे हो, रामायण महाभारत पे हो,

0: या राजनीति पे हो, स्पोर्ट्स पे हो, चारों तरह स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा सिलसिला था उन दिनों, बहुत स्पोर्ट्स खेला जाता था। और जैसे मैंने कहा, बाहर जो है जो चहल पहल, राजनीतिक चहल पहल, वो चली रही थी। तो उस दौर में मैं पैदा हुआ, वो सारे सेंसेस मेरे अंदर आ गया, और कलकत्ता से पापा का तबादला हो गया दिल्ली।
1: जी
0: छुटपन पे मैं जब 6 साल का था तब दिल्ली चले गए। तो कलकत्ते के इस सांस्कृतिक दौर से, जहां राजनीति को आप संस्कृति से कभी अलग नहीं कर सकते, वहां से हम दिल्ली पहुंचे। लेट 70 के दशक में थोड़ा अलग था, कलकत्ते से काफी अलग था,
1: बिल्कुल।
0: वहां का कल्चर भी बहुत अलग था और वहां की भाषाएं बहुत अलग थी। तो पूरे बंगाली कल्चर से हम जो उस कल्चर में आए, वहाँ पंजाबी कल्चर, वो भी जो पार्टीशन के बाद जो पंजाबी इधर आए थे, वो कल्चर ज्यादा था। ये ठेठ पंजाब का कल्चर नहीं था। और हरियाणा का एक कल्चर था वहां पे, वर्किंग क्लास कल्चर जिसे हम कहते हैं। और एक कल्चर जो धीरे धीरे पीछे जा रहा था, वो पुरानी दिल्ली का कल्चर, जहाँ पे आपको बहुत बढ़िया, आपको संयम भी दिखता था वहां पे, पोइट्री का सिलसिला भी दिखता था, एक मिजाज था, वो पुरानी दिल्ली का कल्चर था। वो समझने में मुझे थोड़ा टाइम लगा। पहले तो मैं अपने चारों ओर थोड़ा सा ये जो दिल्ली का जो टफनेस है ना, जो जो एक जिसे कहते हैं आपको थोड़ा सा अग्रेसिव होना पड़ेगा, डिफेंसिव होना पड़ेगा, वो दिखा मुझे। पुरानी दिल्ली का कल्चर में थोड़ा बड़ा हुआ तो मैंने वो, मेरा एक्सपोजर बढ़ा, जहाँ जिसे हम मीर गालिब का कल्चर कहते हैं
1: जी।
0: या लखनऊ से निकल के दिल्ली पहुंचने वाला खुसरो का कल्चर कहते हैं, वो कल्चर से भी मैं वाकिफ हुआ। तो मेरा बचपन ये दो स्रोतों में बहते हुए निकला।
1: फिर नेपाल भी कुछ वक्त
0: फिर नेपाल फिर मैं जब क्लास 5 में था तो पापा का तबादला नेपाल हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस था
1: जी।
0: वो इंटेलिजेंस ऑफिसर थे, उनका काम ही था इकोनॉमिक एनफोर्समेंट के जरिए काम करना। तो नेपाल जो है वो गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता था। तो पापा का वहाँ तबादला हुआ क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा उनको काम भी करना था। तो मैं वहाँ पे इंडियन एम्बेसी के स्कूल में पढ़ता था, जो कि सेंट्रल स्कूल कहते हैं। छोटा सा स्कूल था, एक क्लास में सिर्फ 18 बच्चे थे। तो संगत बहुत अच्छी हुई, क्योंकि बड़े स्कूल में बहुत सारे बच्चों के बीच में आप खो जाते हैं, यहाँ बहुत कम बच्चे थे। तो एक जो है अपनापन बन गया, टीचर्स का अटेंशन वो ज्यादा दे पाते थे हर बच्चे को। और यहाँ से मेरा नाटक का सिलसिला बहुत अच्छा शुरू हुआ, क्योंकि नाटक मैंने उससे पहले भी किया, मतलब मैंने लोअर केजी से ही शुरू किया था। जब मुझे एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं मेरा जो अंदर का जो एक शर्मिला जोय है वो कहीं छूट जाता है पीछे, जब मैं कुछ कपड़े पहन लेता हूँ, मुंह में कुछ रंग लगा लेता हूँ और स्टेज पे जाता हूँ। ये मुझे लोअर केजी से ही मुझे
1: एक ये स्कूल का प्ले भी मुझे कुछ सुना है मैंने,
0: जी जी जी,
1: कुछ बताएं।
0: तो उस समय बात है, मैं कॉन्वेंट स्कूल में था कलकत्ते में, दमदम में, मैं हार्वर्ड मेमोरियल करके। तो वहां पे ऑब्वियसली क्रिसमस के आसपास नेटिविटी प्लेस होते थे। तो मुझे यहोवा का किरदार दिया गया, मतलब जीसस क्राइस्ट के पिताजी का, कंबल पहनाया गया, दाढ़ी लगाई गई और सर पे साफा बांधा गया, लाठी दे दी गई। तो मुझे जहां तक याद है, मतलब मेमोरीज ही है, कि मैं जब वो सब कर रहा था तो टीचर्स मेरे मम्मी को कह रहे थे कि बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत बढ़िया कर रहा है, बाकी बच्चों को बताना पड़ता है, ये तो अपने आप ही बहुत चीजें कर जाता है। तो मुझे वो याद है वो वाक्या, कि मैं वैसे मैं बहुत शर्मिला था। क्लास में अगर मुझे कुछ प्राइज भी मिलता था, मेरा नाम लेते थे, तो मैं खड़ा नहीं होता था इस डर से, शर्म से, कि मुझे अपनी शक्ल दिखानी होगी सबको। इतना शर्मिला लड़का कभी नाटक कर सकता है? लेकिन मजे की बात यह है कि शायद जिनके अंदर झिझक हो, वो वेट कर रहे हैं कि किसी मीडियम के जरिए वो अपने आप को खोल पाए। तो नाटक मेरे लिए था वो एक्सपोजर जो है। और लेकिन हाँ, स्टेज पे जाके मैंने अपने मम्मी को सामने देखा तो शर्मा के मैंने अपनी जीभ बाहर करके मैं खड़ा हो गया। वो शुरुआत थी मेरी। लेकिन नेपाल में चल के खास करके हमारे क्लास प्लेस भी होते थे, जो कि इंटर हाउस प्लेस होते हैं, क्लास के अंदर के प्रोग्राम्स होते थे और एनुअल प्रोग्राम होता था। और इन दिनों मेरा जो है साहित्य के साथ बहुत अच्छा संबंध हो गया था। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत छुटपन में मेरे हाथों में बच्चों के ही सही लेकिन साहित्य दिया था। बड़ों के साहित्य को, मतलब जो लिटरेचर कहते हैं, उसको भी ट्रांसलेटेड वर्क्स मुझे पकड़ाए थे। चार्ल्स डिकेंस हो, या हमारे बंगाली में बहुत राइटर्स हैं, रहे हैं बिमल मित्रा, बिमल कौर, आशापूर्णा देवी, महाश्वेता देवी, इनके लिटरेचर हो, अंग्रेजी लिटरेचर हो, फ्रेंच लिटरेचर हो, ये सारे उन्होंने ट्रांसलेटेड मुझे दिया था बंगाली में। हाँ, मैं वो पढ़ता रहता था, बच्चों का शेक्सपियर मैं बचपन से पढ़ना शुरू किया। तो इससे मेरे अंदर का जो मेरी कल्पना शक्ति एकदम उजागर हो गई। मैं ये सब किरदारों को आसपास देखता था, मैं उनके साथ एडवेंचर पे जाता था, मैं पूरी दुनिया घूम लेता था साहित्य के जरिए। अगर मैं किसी वाइकिंग के ऊपर कोई किताब पढ़ रहा हूँ तो मैं वाइकिंग के साथ उनके जहाज पे पूरी दुनिया घूम रहा हूँ, एडवेंचर कर रहा हूँ। तो ये मेरे सबसे अच्छे दोस्त बन गए, किताब। और मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट तो था,
1: बिल्कुल,
0: तो किताबें दोस्त बन गई। और फिर नाटक, ये लिटरेचर से नाटक की तरफ जिसे कहते हैं, मैंने खुद अपने हाउस प्लेस के लिए नाटक लिखे जो मैंने पढ़े थे किताबों में। तो अरेबियन नाइट्स में समझ लो,

0: कोई किस्सा पढ़ा, उसी में से मैंने कोई नाटक का रूप दिया बच्चों का, और उसको डायरेक्ट भी कर दिया मैंने। तो इस तरह से मेरा नाटक का सिलसिला स्कूल टाइम में, आप कह सकते हैं कि प्राइमरी से सेकेंडरी स्कूल में जाके बहुत एक्टिव हो गया।
1: वहीं से एक दिशा मिल गई कि इस तरफ ही जाना
0: हाँ,
1: है।
0: और एनुअल डे में नॉर्मली सीनियर स्टूडेंट्स को मौका मिलता था, तो मेरे अंदर एक जिद थी कि मैं भी एनुअल डे में परफॉर्म करूंगा। तो मैं खुद ब खुद नाटक बनाने लग गया। मैंने कुछ नाटक उठाया, वन एक्ट प्ले, और एक दो दोस्तों को पकड़ा, मैंने डायरेक्ट किया, खुद ही परफॉर्म किया, और जाके मैंने वो दिखा दिया। हमारे जो कल्चर कोऑर्डिनेटर होते थे उनको जाके दिखाया, वो इतने प्रभावित हो गए, बोले कि हाँ इस साल हम सेकेंडरी स्कूल का भी एक नाटक एनुअल डे में रखेंगे। तो पहली बार ऐसा हुआ सेकेंडरी के स्टूडेंट्स का नाटक जो मैंने डायरेक्ट किया, मैं एक्ट कर रहा था, रखा गया। वो इतना अच्छा लगा उन लोगों को एनुअल डे के प्रोग्राम में भी कि प्रिंसिपल ने कहा कि इसको हम अपने प्रेयर के ग्राउंड में भी इसको खेलेंगे। तो प्रेयर ग्राउंड में सब
1: असेंबली
0: स्टूडेंट्स के सामने मैंने उसको खेला, तो ऐसा शुरू हो गया। फिर मुझे याद है कि हम लोग घर घर जाके अपने SUBW के मोमबत्ती वगैरह जो बनाते थे वो
1: में।
0: बेचते
1: हाँ
0: थे,
1: हाँ बिल्कुल।
0: तो बेचने जाते थे तो कुछ लोग, मेरे फादर के कलीग थे, उन्होंने मुझे पकड़ लिया, बोले कि भाई मैंने तुम्हारा नाटक देखा एनुअल डे में, हाँ मैं पागल हो गया, तुम एक काम करो पापा को मत बताना, जब बड़े होंगे तो सीधा मुंबई चले जाना, बॉम्बे, बॉम्बे, उसे बॉम्बे कहते चले
1: जी
0: जाना।
1: जी
0: मैंने कहा अंकल ये क्या कह रहे हो, मुझे तो पता नहीं ये सब क्या है। कहते नहीं मैं तुमको बता रहा हूँ, याद रखना, बड़े होंगे तो बॉम्बे चले जाना। मैंने कहा अच्छा, कहते हाँ। तो मेरे सर पे ये जो है बीज बो दिया,
1: बो दिया गया था
0: तब मैं
1: बिल्कुल।
0: क्लास 8 में था शायद। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा भी है कुछ, मतलब मेरे अंदर कुछ है जो मुझे काठमांडू से दिल्ली नहीं, कलकत्ता नहीं, मेरे बॉम्बे
1: बॉम्बे
0: ले
1: भेजना
0: जाएगी।
1: चाहता
0: तो ये एक और सिलसिला था।
1: बिल्कुल।
0: फिर मैं दिल्ली वापस आया, दिल्ली में अब मैं सीनियर स्कूल में था, सीनियर स्कूल में भी मैं नाटक खेला। वहां पे भी मेरे इंग्लिश टीचर जो थे उन्होंने कहा कि ये तुम्हारी खास जो टैलेंट है इसको तुम नजरअंदाज ना
1: तो ये
0: करना।
1: नाटक जो है आपका पहला प्रेम कह सकते हैं, क्योंकि अभी भी मुझे ऐसा लगता है
0: मेरा
1: कि
0: हाँ
1: टेलीविजन फिल्म्स उसके
0: जी
1: आगे
0: जी
1: प्रायोरिटी आपकी जो रहती है वो शायद नाटक की रहती है एक।
0: ये मेरा जीवन भर का अगर कोई प्रेमिका या प्रेम है तो
1: जी
0: वो नाटक है। बाकी सब प्रेम प्रेमिकाएं तो छूट जाती हैं, रह जाती हैं, टूट जाता है दिल, लेकिन इसने ना दिल मेरा तोड़ा है ना ही मेरा पीछा छोड़ा है, तो ये संबंध तो अभी तक चल रहा है।
1: चलिए यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, आपकी पसंद का कोई गाना आप सुनना चाहें बताएं।
0: शुरुआत अगर करें तो एक थोड़े खुशहाल गाने से करते हैं, जो
1: बिल्कुल।
0: मेरे एक ऑप्टिमिज्म का गाना है, मेरे फिलोसफी को दर्शाता है। वो देवानंद का मैं बड़ा फैन होता था, तो उनका एक गाना है मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, उसको अगर आप सुना दें कि मेरा एक
1: सुनवाते हैं
0: पसंदीदा
1: गाना
0: गाना है।
1: हमारे श्रोताओं को आपकी पसंद का।
2: मैं

0: बात चली है नाटकों की, तो यूनिवर्सिटी में ही आपने जन नाट्य मंच से आप जुड़े, और उसके बाद थिएटर का जो सफर है थोड़ा सा और प्रोफेशनल हो गया। नाम आता है बहुत बड़े दिग्गजों का, जिसमें इब्राहिम अलकाजी साहब का नाम आता है और भी कई नाम आते हैं, तो उनके साथ जब आप जुड़े तो कैसा अनुभव, कुछ अलग अनुभव है वो,
1: कमाल
0: उसके बारे में कुछ बताएं।
1: कमाल
0: अलग अलग
1: लो
0: मेथड्स कैसे हैं, अलग अलग
1: जी।

0: अपने आप को प्रस्तुत करना, उसके बाद उनसे जुड़ना, समानता की नजर से जुड़ना किसी के साथ भी, ये मैंने उनसे सीखा
1: जी।
0: तो वो बहुत काम आया मेरे, कि मेरे अंदर से जो विभाजनकारी जो एक पर्सनालिटी बन जाती है लोगों के अंदर, कभी वो घर से वैल्यू लेके निकलते हैं, कभी चारों ओर के इन्फ्लुएंसेस से लोग, हर कोई थोड़े विभाजनकारी बन जाता है, मेरी भाषा, मेरी जात, मेरा धर्म,
1: मेरा कल्चर,
0: मेरा शहर
1: जी,
0: मेरा कल्चर, मेरा खान पान, मेरी आदतें, मेरी तरह के लोग क्यों नहीं, दूसरे तरह के लोग क्यों, वो लोग और हम लोग, ये फर्क उसी से आता है, मेरा देश सबसे महान, उसका देश सब नीचे गिनेंगे, ये जो ऊंच नीच विभाजन, ये सारी चीजें, ये इन्फ्लुएंसेस होती हैं, बहुत सारी चीजें घर से निकलती हैं, बहुत सारी चीजें हमारे चारों ओर से आती हैं, मीडिया से भी आती हैं। अगर आपको बहुत पहले ये नजरिया आपको मिल जाए, ये दुनिया को देखने का दर्शन आपको मिल जाए कि आपको कोई फर्क नहीं करना है, जब आप किसी के सामने अपने आपको प्रस्तुत करो, किसी से बात करो, किसी से जुड़ो, तो पहले समानता से जुड़ो
1: जी,
0: उसके बाद फिर आप तोलो कि हाँ इसमें ये कमी है, कैसे मैं इस कमी को दूर करूं और इसे ऊपर उठाऊं। तो हमारी जिम्मेदारी है किसी को ऊपर उठाना, किसी को नीचे गिराना नहीं। ये जो दर्शन ये मैंने सफदर से पाया, और अलकाजी साहब ने मुझे दुनिया में खूबसूरती को खूबसूरत तरीके से देखना सिखाया कि आप कोई भी चीज को कैसे खूबसूरत बना सकते हो, उसके अंदर की खूबसूरती को कैसे निकाल सकते हो, निखार सकते हो, यह अलकाजी साहब से मैंने सीखा। चाहे वो साहित्य हो, चाहे पेंटिंग हो, चाहे थिएटर हो, चाहे सिनेमा हो, चाहे कुछ भी हो, जिसको हम एस्थेटिक्स कहते हैं अंग्रेजी में, सौंदर्य दर्शन आप कह लीजिए, आपके चारों ओर सौंदरता है, पेड़ पौधे सबसे ज्यादा सौंदरता का प्रतीक है, आपके अंदर का अंदरूनी मन सौंदरता का प्रतीक है, साहित्य सौंदरता का प्रतीक है, कविता, पेंटिंग, थिएटर, ये सब सौंदरता का प्रतीक है, इनको उजागर करना है, हमको इनको समाज के सामने लेके जाना है, प्रकृति और कला, और एक साइंटिफिक नजरिए से, मतलब एक वैज्ञानिक सोच के साथ, आप किसी को भटकाएंगे नहीं, वैज्ञानिक सोच में क्या होता है, भटकाते नहीं है, आप सही रास्ता दिखाते हैं। तो ये वैज्ञानिक सोच और ये कलात्मक सोच सफदर अलकाजी साहब के चलते मेरे अंदर बैलेंस बन गया था।
1: बिल्कुल।
0: और
1: कहते हैं ना, थिएटर का मतलब जो पहला सबक सिखाया जाता है, सबको साथ में लेकर चलना
0: जी,
1: सिर्फ अपना नहीं सोचना, एक टीम वर्क और सब कैसे संभले,
0: ये तो सही कह रहे हैं आप, लेकिन मुश्किल ये होता है कि जब एक्टर होता है ना थिएटर में, तो वो ग्रुप में समा जाता है, ग्रुप थिएटर में वो फिलोसफी लेके चलता है कि सबको साथ लेके जाना है, लेकिन खुद जब वो खड़ा होता है तो एक्टर वो सिर्फ अपने आप को देखता है, और तब उसे सिर्फ अपनी पहुंच, अपना रुतबा है ना
1: जी,
0: अपना माइलेज, अपनी रोशनी, ये चाहिए उसको, तो उसमें फिर गड़बड़ हो जाता है, फिर वो थिएटर का जो फलसफा है वो भूल जाता है, वो
1: बिल्कुल,
0: कि सबको साथ लेके चलना है, किसी को नीचे नहीं गिराना है, बल्कि हाथ देना है, उठाना है, अगर दूसरों को उठाओगे तो आप खुद भी उठोगे। थिएटर में हम ये सीखते हैं कि अगर आपका बगल वाला एक्टर कोई सीन खराब करता है तो आपका सीन भी खराब हो जाता है, क्योंकि आप उसी के साथ काम कर रहे हो, तो वो अच्छा करेगा तो आपका सीन अच्छा जाएगा, तो आप अच्छा काम करोगे, तो इसीलिए एक दूसरे को आप कॉन्स्टेंटली सपोर्ट करते रहते हो थिएटर में, लेकिन दूसरे मीडियम में जाके वो बाजारू हो जाता है, तो बाजार में क्या है कि हर कोई जो है अकेला दिखना चाहता है, अकेले खड़ा होना चाहता है,
1: मैं सबसे अलग,
0: हाँ, तो ये बाजार आपको सिखाता है कि आपकी अलग ब्रांडिंग है, आप ब्रांड हो, आप सब मिलके ब्रांड नहीं हो, आप अकेले ब्रांड हो, तो यहाँ जाके फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है।
1: यहाँ पर सुनते हैं आपकी पसंद का दूसरा गाना।
0: अब मैं थोड़ा जिसे गंभीर गाने की तरफ लेके जाता हूँ, आज का जो दौर चल रहा है, युवाओं के मन में जो सवाल चल रहे हैं, उससे जुड़ा एक गाना है, फिल्म प्यासा में, गुरुदत्त की फिल्म है, साहिर ने लिखी थी और SD बर्मन ने कमाल का जो है इसे सुर दिया था, वो है जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है।
1: सुनते हैं गाना।

0: अभी थिएटर की जैसे हमने बात की, 80s 90s से आप जुड़े हैं, नुक्कड़ नाटक भी किए हैं, थिएटर अभी भी कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ वक्त से, कुछ सालों से एक जो चेंज, एक परिवर्तन देखा है वो है कि मेगा प्लेज करके थिएटर आ गया है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही साउंड इफेक्ट, एक लार्जर देन लाइफ अगर हम टर्म यूज करें तो वो यूज कर सकते हैं, तो कितना फर्क आया तब में और आज में? या हर किसी के अपना अपना एक जगह है, अपना स्थान है,
1: हर किसी का स्थान चल रहे हैं, क्योंकि ये तो पश्चिमी देश से आया है। होता यह है कि पश्चिम देश में अगर आप देखें, खास करके इंग्लैंड और यूएस में अगर आप देखें, तो इंग्लैंड में जो थिएटर डिस्ट्रिक्ट है उसको वेस्ट एंड कहते हैं
0: जी।
1: और यूएस में न्यूयॉर्क थिएटर कैपिटल है और वहां पे ब्रॉडवे कहते हैं
0: जी।
1: जब आप वेस्ट एंड या ब्रॉडवे कहते हैं तो आप बड़े नाटक की बात करते हैं, म्यूजिकल्स की बात करते हैं, जहां बड़ा होता है। जब उससे हटके बात होती है, जो जिसमें थोड़ा सा अपनापन होता है, पर्सनल एलिमेंट होता है, उसको हम ऑफ ब्रॉडवे कहते हैं। और जब वहां से और हटके बहुत एक्सपेरिमेंटल काम होता है, रिस्की काम होता है, चीजों को परखने का काम होता है, उसको हम ऑफ ऑफ ब्रॉडवे बोलते हैं। वही वेस्ट एंड में भी है, वेस्ट एंड है, ऑफ वेस्ट एंड है, ऑफ ऑफ वेस्ट एंड है। तो वेस्ट एंड और ब्रॉडवे में बड़ा काम होता है, वहां पे बड़े स्टार्स आते हैं जिनको फिल्मों में भी देखते हैं, वहां पे म्यूजिकल में चकाचौंध टेक्निकलिटीज आपको दिखती है, सीन्स ऐसे बदलते हैं आपको पता भी नहीं चलता, इस तरह के सेट्स आते हैं, इस तरह के इफेक्ट्स आते हैं, आप जो है उड़ जाते हैं, एकदम होशो हवास उड़ जाता है आपका, और आप उसके लिए बहुत डॉलर्स और पाउंड्स खर्च करते हैं, ठीक है, उससे पूरी थिएटर इंडस्ट्री चलती है
0: जी।
1: तो उसका कुछ एक हिस्सा ऑफ ब्रॉडवे पे, ऑफ वेस्ट एंड के पास भी आता है, और कुछ हिस्सा ऑफ ऑफ वेस्ट एंड में भी आता है। तो बात करने का जरिया होता है, जैसे नुक्कड़ नाटक में आप सड़क पे बात करते हैं, क्योंकि आप सोचते हैं ये बात मुझे सड़क पे ही मैं कर सकता हूं, ये हॉल में करूंगा तो कुछ चुनिंदा लोग आएंगे जो टिकट खरीद के देखेंगे, बाकी लोग नहीं आएंगे। तो सफदर कहता था कि अगर वो नहीं आते तो हमें उनके पास जाना चाहिए, तो आप वहां जाके ये करते हैं
0: जी।
1: फिर एक्सपेरिमेंटल हमारे यहाँ पे भी थिएटर होता है, जैसे दिल्ली में था श्रीराम सेंटर बेसमेंट, यहाँ पे भी है, पृथ्वी है, एनसीपी है। तो एक्सपेरिमेंटल स्पेस में कम दर्शक होते हैं, लेकिन वो दर्शक बड़े ही रोचक दर्शक होते हैं, वो सोच और समझ के साथ आते हैं कोई बात को सुनने। तो आप जब वहां पे मंटो का नाटक करते हैं, मतलब मंटो की बात को रखते हैं, प्रेमचंद की बात को रखते हैं, अंधा योग करते हैं, जो भी करते हैं, तो वो बड़े रोचक तर्क के साथ उसको देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, उसके एनालिसिस करते हैं। फिर आप बड़े हॉल में जाते हैं, यहाँ पे जमशेद भाभा ऑडिटोरियम है या एनएमएससीसी में बड़ा वाला हॉल है, तो वहां पे जो लोग आते हैं वो वित्तवान लोग हैं, बहुत पैसे वाले लोग हैं, उनको

0: एंटरटेनमेंट चाहिए, लेकिन एक ग्लोबल एंटरटेनमेंट चाहिए,
1: हाँ
0: वो वेस्ट की तरह वो चाहिए उनका एंटरटेनमेंट। तो वहां पे चकाचौंध दिखता है। अगर उस चकाचौंध के अंदर कुछ अच्छी बात भी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना मिले तो कम से कम वो इस बात के लिए खुश है कि मैंने जो पैसा खर्च किया है उसके बदले में मुझे एक एक्सपीरियंस मिला है जो बहुत ही एंटरटेनिंग है और मेरे सारे सेंसेस को इन्होंने एंटरटेन किया है। तो ये सारी चीजें जरूरी हैं,
1: अपनी अपनी जगह पर।
0: अपनी अपनी जगह है। आप बड़े चीज के जरिए बहुत अच्छी बात कह सकते हैं, बहुत बड़ी बात कह सकते हैं। जैसे ला मिजराबल करके एक बहुत फेमस म्यूजिकल होता है वेस्ट एंड ब्रॉडवे में, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर है, लेकिन म्यूजिकल है, उसमें कमाल कमाल के गाने हैं, क्रांति के बारे में है, तो आप बड़ी बात कह रहे हैं। लायन किंग बहुत बहुत फेमस म्यूजिकल है जो
1: जी
0: वहां पे चलता रहता है। तो लायन किंग में भी तो आप बात क्या कर रहे हैं, आप बहुत बड़ी सीख दे रहे हैं, आप फलसफा दे रहे हैं ट्रेडिशन के बारे में, एथिक्स के बारे में, है ना। तो आप बड़ी चीजों के जरिए भी अच्छी बातें कह सकते हैं। तो मेरा यही कहना है कि अगर आप संस्कृति की बात करते हो तो संस्कृति सिर्फ मनोरंजन पे निर्भरशील नहीं होता, मनोरंजन एसेंशियल होता है, मनोरंजन के बिना संस्कृति नहीं है, मनोरंजन तो होना ही चाहिए, लेकिन सिर्फ मनोरंजन नहीं होता है, उसके अंदर से कोई बात निकल के आती है जो आपके सोच और समझ को या तो बदलती है या उसको और उजागर करती है, तो आपके अंदर एक नई चेतना भर देती है, चाहे छोटे तौर पे हो लेकिन भर देती है कि आप हॉल से बाहर आए तो थोड़ा सा सोचे और कहीं आपका नजरिए में थोड़ा सा फर्क आए, आप थोड़ा सा साफ देखने लगे, आप चीजों को थोड़े संयम के साथ संतुलन के साथ देखने लगे, ये अच्छी संस्कृति की जो है सीख है।
1: जी, म्यूजिकल ड्रामा की बात चलिए तो उसमें भी अपने ताज एक्सप्रेस करके कुछ म्यूजिकल ड्रामा से आप रिलेटेड हैं।
0: जी, अभी भी चल रहा है ना, अभी 23-24 को पृथ्वी में शो है लेडीज संगीत करके,
1: अच्छा
0: वो भी म्यूजिकल ही है।
1: अच्छा
0: हाँ, वो उसमें कहने को तो लेडी संगीत है तो लोग लेडी संगीत सुनने आते हैं, बहुत शुभा मुद्गल का म्यूजिक है उसमें,
1: जी
0: बहुत बढ़िया म्यूजिक आता है, फोक और क्लासिकल म्यूजिक आता है उसके अंदर, लेकिन उसके जरिए हम

0: और थिएटर पे करना।
1: देखिए ग्रामर अभिनय का तो एक ही रहता है, इमोशंस, करेक्ट, इमोशंस और आइडियाज को आपको प्रोजेक्ट करना है।
0: जी
1: लेकिन प्रोजेक्शन में आपका जो टेक्निक है वो थोड़ा सा बदल जाता है। जब आप नुक्कड़ में करते हैं यानी कि सड़क पे करते हैं तो आवाज का प्रोजेक्शन बहुत ज्यादा होता है, पूरे शरीर का इस्तेमाल ज्यादा होता है। आप लोग जब देख रहे हैं उस चकाचौंध रोशनी में, इतनी भीड़ में, इतने शोर शराब के बीच में, तो आपका शरीर का खेल कमाल
0: बिल्कुल
1: होना चाहिए और आवाज कमाल होनी चाहिए। जब आप एक हॉल के अंदर करते हैं जैसे प्रोसिनियम थिएटर करते हैं तो थोड़ा कंसंट्रेशन होता है स्टेज के ऊपर, स्टेज लाइट होता है, ऑडियंस अंधेरे में होती है तो आप साफ दिखते हैं, तो शरीर का बहुत ज्यादा प्रयोग करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आवाज का एक प्रोजेक्शन होता है लेकिन नुक्कड़ की तरह नहीं, वो कम हो जाता है, तो उसके अंदर गांभीर्य आ जाता है। जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
0: जी
1: तो बहुत बड़े बड़े अभिनेता सिनेमा में रहे हैं जो बहुत कम बोलते हैं। दिलीप कुमार को अगर आप फिल्मों में देखें तो उनकी
0: बिल्कुल
1: आंखें बोलती थी। अमिताभ बच्चन डायलॉग के लिए जाने जाते हैं लेकिन उनकी आंखें बोलती थी,
0: बिल्कुल
1: है ना?
0: हाँ
1: तो आंखों से आप पकड़े जाएंगे। ओम पुरी ने आक्रोश में किरदार किया था जिसमें पूरे फिल्म में उनका कोई एक लाइन नहीं है, एक लाइन नहीं। वो जेल में पड़े हुए सड़ रहे हैं, उनपे अपने बीवी को मारने का इल्जाम है जबकि वो निर्दोष है एक्चुअली। तो लॉयर उससे जब भी मिलने आता है वो एक बात नहीं करते लेकिन उन आंखों से उनके साथ जो अन्याय हुआ है उनकी आंखें बता देती है। तो सिनेमा में ही है और रेडियो में पूरा ही वाचन, सब कुछ ही ऑडियो है, सिर्फ आवाज से आपको समझ में पड़ेगा कि ये आदमी कहाँ है, किस परिप्रेक्ष्य में है, किस मूड में है, कहां से आया है, कहां जा रहा है, जो बातें कर रहा है उसके पीछे क्या अवचेतन मन में क्या चल रहा है, सब
0: बिल्कुल
1: टेक्स्ट सब कुछ उसकी आवाज से निकलनी चाहिए। तो आवाज पे ही पूरा काम करना पड़ता है, फिर सारे इमोशंस को आवाज के जरिए, पिच के जरिए, और आपको एक अंदाजा देना पड़ता है आवाज के जरिए कि आप किस स्पेस में हैं।
0: बिल्कुल
1: ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस स्पेस में हैं। तो वो सब जो है, किरदार का क्लास क्या है, उसके मन में क्या चल रहा है, वो सब आवाज से होता है। तो सोचिए जब आप आंख बंद करके भी आप सुनेंगे तो आप वहां पहुंच जाएंगे। तो ये रेडियो प्ले की खासियत
0: बिल्कुल। यहाँ पर आपकी पसंद का गीत जो आप सुनवाना चाहते हैं।
1: है जी, एक बढ़िया गाना है जिसमें क्रांतिकारी सोच भी है लेकिन थोड़ा ऑप्टिमिज्म भी है। एक फिल्म थी राज कपूर की, ये सुबह कभी तो आएगी, वो जो है दोस्तोवस्की की फेमस कहानी क्राइम एंड पनिशमेंट पे बेस्ड थी। उसमें एक ही गाने को दो तरह से गाया गया था। ये सुबह कभी तो आएगी पहले दुखद तरीके से गाया गया था, जब वो सोचते हैं कि ये सुबह शायद कभी नहीं आएगी, फिर अंत में जब वो लड़की रोती है तो वो गाते हैं कि ये सुबह हम ही से आएगी। तो ये जो ये सुबह कभी तो आएगी, ये सुबह हम ही से आएगी, ये गाना जो है मुझे बेहद पसंद
0: बिल्कुल, और गीतों के साथ जो आप डिटेलिंग दे रहे हैं
1: जी
0: वो सुनने में और मजा आ रहा है।

0: बात करते हैं फिल्मों की, हिंदी फिल्मों की। तो लेट 90s में आपकी शुरुआत हुई हिंदी फिल्म से, 1084 की माँ, जो कि काफी पॉपुलर रही,
1: चर्चित रही
0: कह सकते हैं, बिल्कुल, और पहचान मिली एक।
1: जी जी,
0: इससे जुड़ना कैसे हुआ?
1: मैं आपको सच बताऊं तो ये बड़ा अजीबोगरीब जिसे कहते हैं मैनिफेस्टेशन है। मैं 80 के दौर में जब स्कूल में रहते हुए मैं भारतीय पैरेलल सिनेमा की तरफ, सीरियस सिनेमा की तरफ मेरा झुकाव हो गया था। अमिताभ बच्चन के दौर से निकलकर मैं इस दौर में जा रहा था जहां फिल्मों में नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, पंकज कपूर, शवाना जी, स्मिता पाटिल, दीप्ति जी, इन लोगों का दौर चल रहा था अभिनय के क्षेत्र में। और डायरेक्शन में श्याम बेनेगल, सैयद मिर्जा, कुंदन शाह, केतन मेहता, ये सब जो है धूम मचा रहे थे। मैं वैसे भी थोड़ा बहुत आदर्शवादी था, तो गोविंद निलानी मेरे मन में बैठ गए। उसके बाद मैंने उनकी आगे फिल्म देखी अर्ध सत्या, जो करप्शन ऑफ पुलिस सी व्यवस्था के ऊपर थी। फिर उनकी फिल्म आई आघात, जो ट्रेड यूनियन के ऊपर थी। उसके बाद उनकी फिल्म आई तमस, जो पार्टीशन के ऊपर थी। एक के बाद एक, और मेरे होश हवास उड़ गए। मुझे अगर कभी मैं सिनेमा में मौका मिला तो मैं ऐसे डायरेक्टर या इनके साथ ही करना चाहूंगा कम से कम एक काम या शुरुआती काम जो भी है। तो फिर जब मैं थिएटर में पढ़ाई कर रहा था, थिएटर सीख रहा था अलगाई साहब से, तो उस समय बॉम्बे आने का एक बार मुझे मौका मिला था। तो मैंने बड़े मुश्किल से पता लगाया कि गोविंद निलानी जो है महबूब स्टूडियो में मुंबई में शूटिंग कर रहे हैं। तो मैं वहां पहुंच गया और मैं उनसे मिला और वो मुझसे मिले भी। तो उनको जब पता चला मैं अलकाई साहब का स्टूडेंट हूं तो बड़े खुश हुए। पूछा मेरे नाटकों के बारे में। मैंने जो नाटक किया था विरासत करके, नाटक है वराचड़ी बिंदे, ये एल कुंचर की नाटक, वो उस पे वो एक फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे थे दूरदर्शन के लिए।
0: अच्छा
1: जी, टीवी फिल्म। तो बोले कि मैं तुमको मैं इतला करूंगा अगर जब मैं ये बनाऊंगा। तो मैं अपने फोटो वोटो देके बड़े खुश होकर मैं सीना चौड़ा करके वापस आ गया दिल्ली और मेरे नाटक के सेक्शन में घुस गया। फिर बात भूल गया मैं, 2-3 साल गुजर गए। फिर जब फाइनली मेरा बॉम्बे आना हुआ और मैंने वहां नाटक करना शुरू किया, तो मेरे जो पहले नाटक का शो था वहां पे, ए विशेस व हॉर्सेस करके एक नाटक, तो उसका शो देखने गोविंद निलानी आए हुए थे, ये मुझे पता नहीं था।
0: अच्छा।
1: मैं उसके बाद चंडीगढ़ चला गया वर्कशॉप लेने। मैं हर गर्मी की छुट्टी में चंडीगढ़ में बच्चों का वर्कशॉप लेता था। तो मैं ये सारी चीजें करता था, मतलब टेलीविजन भी करता था, थिएटर भी करता था, वर्कशॉप भी लेता था, ये सब मेरे चलता रहता था। पंजाब यूनिवर्सिटी के ड्रामा डिपार्टमेंट में फोन आया गोविंद निलानी के ऑफिस से।
0: अच्छा।
1: पता नहीं उन्होंने कैसे पता लगाया कि मैं चंडीगढ़ में हूँ, और उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी के ड्रामा डिपार्टमेंट में फोन किया कि भैया जॉय सेन गुप्ता चंडीगढ़ में, जरा पता करो, उनको बताओ कि हम उनका इंतजार कर रहे हैं, उनसे बात करनी है। तो मैं मुंबई लौट आया, उनके वहां गया। उन्होंने कहा भाई मैं एक फिल्म बना रहा हूँ जो महाश्वेता देवी की जो छोटी नॉवेल है, नॉवेला 1084 की माँ के ऊपर है, उसके प्रोटैगनिस्ट के लिए तुमको मैं ढूंढ रहा था, क्योंकि मैंने तुमका नाटक देखा, मुझे पसंद आया तुम्हारी पर्सनालिटी, मुझे एक दो और लोगों ने कहा कि भैया इस लड़के पे नजर रखो, तो मैंने नजर रखा और तुम्हें याद किया, अब तुम ऑडिशन दो और देखते हैं कैसा आता है। तो एक बड़ा मुश्किल ऑडिशन लिया मैंने उनसे, 3 तरह के ऑडिशन, जिसमें कॉमेडी भी था, सीरियस भी था और इन्फॉर्मेटिव भी था। ऐसे 3 तरह के ऑडिशन के बाद मुझे चुना और ऐसे फिल्म में चुना जो उस दौर को दर्शाती है जिस दौर में मैं पैदा हुआ। उस दौर में महाश्वेता देवी ने लिखा था उस एक स्टूडेंट के बारे में जो मारा जाता है, मरने के बाद वो सिर्फ एक नंबर बन जाता है, लाशों का नंबर होता है, लाशों का नाम नहीं होता। उसकी माँ जब

0: बेटे को ढूंढने जाती है तो उसे लाश का नंबर बताया जाता है। वो कहती है सिर्फ नंबर कैसे हो गया, ये तो मेरा बेटा है व्रती। फिर उस नंबर के पीछे की सच्चाई को ढूंढने उसकी मां निकलती है कि वो कौन सा पक्ष है इस मेरे बेटे का जो मैं नहीं जानती थी। मेरा बेटा तो घर पे एक मध्यम वर्ग का अच्छा लड़का था, कॉलेज जाता था, पढ़ाई करता था, मेरे को हंसाता था, ये उसे पसंद था, वो था, ये चीज तो मुझे पता ही नहीं था कि पुलिस ने उसे क्यों गोली मारी। तो वो समझने के लिए निकलती है और फिर अपने बेटे के इतिहास के जरिए खुद उसके अंदर एक क्रांतिकारी भाव आ जाता है। तो माँ का भी एक ग्रोथ होता है इस फिल्म में, तो इसीलिए वो 1084 जो नंबर है उसकी माँ। तो इसमें मुझे मौका मिला काम करने का। तो मेरा जो पर्सनालिटी है नुक्कड़ नाटक, ठीक है, मेरा जो जीवन दर्शन, दुनिया को देखने का नजरिया, जिस दौर में पैदा हुआ, वो सब कुछ इस फिल्म में मिला। तो एक तरह से आप कह सकते
1: फिर से
0: हैं कि
1: जिया आपने उसे उस माहौल को,
0: बताइए एक पूरा कैसे एक कोइंसिडेंस है, लेकिन ये सारी चीजें एक जगह आ गई। महाश्वेता देवी, गोविंद निलानी, मैं, मेरे को एक्ट्रेस नंदिता दास जो जननाट्य मंच में मेरे साथ काम करते थे, हम लोग साथ नुक्कड़ नाटक करते
1: और
0: थे,
1: जया
0: और
1: भादुड़ी
0: जया
1: जी
0: भी,
1: और अनुपम खेर के साथ।
0: जी जी जी जी जी तो अनुपम खेर जो महेश भट्ट स्कूल ऑफ सिनेमा से आए थे,
1: जी
0: जया जी जिनकी शुरुआत सती इतरे से हुई, और फिर ऋषिकेश मुखर्जी स्कूल ऑफ एक्टिंग से आए, तो ये सारे जो है एक जगह हम लोग आ गए।
1: चलिए यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, आपकी पसंद का कोई गाना आप सुनना चाहें बताएं।
0: लगान का गाना है चले चलो बड़े चलो, वो आप जरूर सुनाइए क्योंकि उसके अंदर एक जोश है, होश है, वो सुना दीजिए
1: सुनते
0: इसमें
1: हैं गाना।
0: जी।

0: मैनिफेस्टेशन दरअसल सच होता है,
1: ऐसा ही
0: उस चीज
1: लगा
0: को
1: मुझे,
0: दिल से चाहो तो।
1: ऐसा ही लग
0: और
1: रहा
0: भी
1: है।
0: आगे भी हम बात करेंगे, आगे भी बहुत सारी चीजों में मैनिफेस्टेशन हुआ है
1: जी
0: आपका।
1: जी जी
0: तो अभी फिल्मों में आप आ चुके थे, उसके बाद भी आप टीवी पर भी काम कर रहे थे,
1: जी जी
0: तो कभी ऐसा नहीं लगा कि अब थिएटर कर लिया, फिल्मों में आ गया, अब टीवी छोटे पर्दे पे मैं क्यों करूं, ऐसा कभी भावना नहीं आई?
1: टीवी पे काम मैंने सिनेमा से पहले शुरू किया था।
0: अच्छा,
1: मैं थिएटर से टीवी में मुझे मौका मिला था।
0: अच्छा,
1: मैं टीवी में एंकरिंग कर रहा था, होस्टिंग कर रहा था, एक्टिंग भी कर रहा था, और मैं ठीक ठाक पैसे कमा रहा था। तो एक मध्यम वर्ग का वो एक्टर जिसका बाप एक सरकारी मुलाजिम था, जिसकी ना कोई सेविंग्स थी ना कोई प्रॉपर्टी थी, और जिसने अपने बच्चे के बारे में ये सपना देखा था वो आईएएस ऑफिसर बनेगा, समझ रहे हो, है ना, तो जिसमें जिंदगी में सिक्योरिटी भी होगी, ओहदा भी होगा,
0: बिल्कुल,
1: और थोड़े बहुत पैसा भी होगा। उसने तय किया कि मेरे पीछे कुछ होना हो मैं आर्टिस्ट ही बनाऊंगा, और एक्टर नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ एक्टर नहीं था, मैं एक सीरियस आर्टिस्ट था। मैं थिएटर से जुड़ा हुआ था, थिएटर को लेकर मेरे कुछ एम्बिशंस थे। तो मैं मुंबई में जाके स्टार बनूंगा ऐसा मेरा कोई आदर्श नहीं था। मैं उसको बुरा नहीं कहता, लेकिन मेरा आदर्श नहीं था वो,
0: बस
1: मैं
0: एक कलाकार, एक आर्टिस्ट।
1: बिल्कुल, वो मेरा एक एक्सटेंशन था। मैं जो कर रहा था उसी का एक एक्सटेंशन है कि मैं एक मीडियम में काम कर रहा हूं, अब मैं दो मीडियम में करूंगा, तीन मीडियम में करूंगा। तो जब टेलीविजन में आया तो वो टेलीविजन का मैं कहूंगा बहुत अच्छा दौर था। आप सोचिए कि उस लेट 90s में मैंने उस समय टेलीविजन में अनुराग बासु के साथ काम किया, मैंने श्रीराम राघवन के साथ काम किया, ठीक है, उसी दौर में कश्यप भी टेलीविजन में कर रहा था, इम्तियाज अली भी टेलीविजन में थे, रवि राय भी टेलीविजन में थे। तो एक बहुत बढ़िया दौर था, अच्छी राइटिंग का, अच्छे डायरेक्शन का, अच्छे कैरेक्टर्स का, टेलीविजन का। तो मैं बड़ा खुश था टेलीविजन से। डेली सोप नहीं बन रहे थे, वीकली सोप बन रहे थे, टेलीफिल्म्स बन रही थी। मैं जो आगे चल के जो फिल्म डायरेक्टर्स बने वही सब टेलीविजन में थे, आगे चल के जो फिल्म में अच्छे सिनेमाटोग्राफर बने वो सब टेलीविजन में थे। तो हम लोग कैरेक्टर बिल्ड करते थे टेलीविजन में। और सोचिए, मैं जब टेलीविजन में काम कर रहा था तो महीने के महीने कमा रहा था, तो एक तरह से आप सिक्योर्ड भी हो गए, है ना। तो बहुत अच्छा था मेरे लिए, तो बहुत बढ़िया दौर था। फिर सिनेमा बना, और सिनेमा जिस तरह के सिनेमा से मैं आया वो सिनेमा उस दौर के लिए अटपटा था, क्योंकि वो दौर जो था ना, एक तरफ तो एक्शन का दौर था, अक्षय कुमार, अजय देवगन, सुनील शेट्टी, ये लोग एक्शन के मास्टर्स थे।
0: आ रही थी, हाँ, बिल्कुल।
1: दूसरी तरफ रोमांटिक फिल्म का दौर था, आमिर, शाहरुख और सलमान, ये लोग रोमांटिक फिल्म्स ही कर रहे थे।
0: बिल्कुल।
1: तो ये दो स्रोत चल रहा था। सीरियस सिनेमा उस समय ना के बराबर
0: ना के बराबर था। बिल्कुल,
1: सीरियस सिनेमा का दौर मिड 80s में खत्म हो गया था। उसके बाद कोई सीरियस सिनेमा बन ही नहीं रहा था, अगर इक्का दुक्का बन भी रहा था तो वो कोई देखने के लिए कुछ नहीं था। तो इस समय या तो आप खिलाड़ियों के खिलाड़ी करेंगे, या ऐलान करेंगे, या परदेसी परदेसी उसमें जाएंगे
0: जी।
1: आप कहीं नहीं, मुझे देखकर या मुझे जिस तरह से लोगों ने इंडस्ट्री की कुछ लोगों ने नापा तोला कि अरे ये यहाँ या वहां फिट नहीं होता है
0: जी।
1: ये मेरे लिए एक बात कहने लगे कि ये 80s का या 70s का अमोल पालेकर है, समझ रहे, वो जो चोर और छोटी सी बात और बातों बातों में और वो जो वो रजनीगंधा या सीरियस सिनेमा जो है उस तरह का, एक बॉय नेक्स्ट डोर, एक अच्छा सुशील पढ़ा लिखा लड़का जो ट्रेनिंग लेके आया है, तो उसको हम कहां फिट करेंगे, इस तरह का वो था। और सच बताऊं तो गलती मेरी भी ये थी कि मेरे अंदर वो एम्बिशन नहीं थी, वो ड्राइव नहीं था कि मैं अपने आप को प्रूव करूं कि मैं यहां बिलोंग करता हूं, तो मैंने भी नहीं किया
0: इस तरह के रोल में।
1: जी जी जी जी, मैंने वो कोशिश ही नहीं की।
0: पर एक आर्टिस्ट के तौर पे ये अच्छी बात भी है कि आप अलग अलग वेरिएशन लेकर आते हैं, अलग अलग किरदार गढ़ते हैं।

0: किसी एक तरफ टाइपकास्ट नहीं हुए हैं।
1: वो बन गया, वो हो गया कि लोगों ने, जैसे मैंने कहा ना कि थिएटर से टेलीविजन हो गया, मैंने कोशिश नहीं की, वो हो गया। एंकरिंग होस्टिंग में बन गया, वो कर रहा था मैं उस समय, पैसे कमा रहा था, पता नहीं कहां से मैंने अपने आप के अंदर एक एंकर होस्ट पा लिया छोटे समय के लिए। फिर मैं उससे भी निकल गया क्योंकि उसमें ब्रांडिंग हो गई थी मेरे दिमाग में कि ये एंकर होस्टिंग कर रहा है, मैं उससे निकल गया। एक्टिंग में क्या था कि चूंकि मैं टीवी में वैरायटीज रोल कर रहा था और सिनेमा में वैरायटीज नहीं होते थे उन दिनों ना, स्टॉक कैरेक्टर्स होते थे, हीरो का फादर, हीरो की मदर, हीरोइन की फ्रेंड,

0: पर एक आर्टिस्ट के तौर पे ये अच्छी बात भी है कि आप अलग-अलग वेरिएशन लेकर आते हैं,
1: वो मेरे
0: अलग-अलग किरदार गढ़ते हैं, किसी एक तरफ टाइपकास्ट नहीं हुए हैं।
1: वो बन गया, वो हो गया कि लोगों ने, जैसे मैंने कहा ना कि थिएटर से टेलीविजन हो गया, मैंने कोशिश नहीं की, वो हो गया। एंकरिंग होस्टिंग में बन गया, वो कर रहा था मैं उस समय, पैसे कमा रहा था, पता नहीं कहां से मैंने अपने आप के अंदर एक एंकर होस्ट पा लिया छोटे समय के लिए। फिर मैं उससे भी निकल गया क्योंकि उसमें ब्रांडिंग हो गई थी मेरे दिमाग में कि ये एंकर होस्टिंग कर रहा है, मैं उससे निकल गया। एक्टिंग में क्या था कि चूंकि मैं टीवी में वैरायटीज रोल कर रहा था और सिनेमा में वैरायटीज नहीं होते थे उन दिनों ना, स्टॉक कैरेक्टर्स होते थे, हीरो का फादर, हीरो की मदर, हीरोइन की फ्रेंड, कॉमेडियन, विलेन मतलब एक ही तरह का विलेन, कॉमेडियन मतलब वो आते ही लोग हंसेंगे।
0: हाँ,
1: आप समझ रहे हो, वो किरदार जो कैरेक्टराइजेशन कहते हैं वो नहीं था, वो थोड़ा थोड़ा बदलने लगा लगान के बाद, दिल चाहता है के बाद, सत्या के बाद थोड़ा
0: हाँ।
1: बदलने लगा। उसको आने में फिर भी 3-4 साल थे जब मैं आया अदा चौरसे की माँ के 1999 में, तब यही चल रहा था दौर। फिर टेलीविजन बदल गया, डेली सोप आ गया, सास बहू हो गया, मैंने टेलीविजन भी छोड़ दिया, मैंने टेलीविजन छोड़ दिया, मैंने कहा मैं ये नहीं कर सकता,
0: हाँ।
1: ना मैं उसमें फिट होता हूँ, ना मैं कर सकता हूँ, और ना मेरा जो वैल्यूज है, प्रिंसिपल्स है, उसके साथ जाता है। तो भाई मैं करूं तो करूं क्या, तो मैंने थिएटर एक्टिविटी और बढ़ा दी, मैं ग्लोबली थिएटर करने लगा।
0: जी
1: मैं जो नाटक कर रहा था वो बाहर ट्रेवल करने लगा, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया में जगह जगह मैं ट्रेवल करने लगा। बीबीसी में से रेडियो प्लेस का मेरा दौर शुरू हुआ और यहाँ कुछ बंगाली फिल्मों से मुझे बुलावा आने लगा। तो यहाँ हिंदी फिल्म में कुछ सीरियस फिल्में चल रही थी, वहां बंगाली फिल्म से जो साहित्य बेस्ड फिल्में थी, लिटरेचर बेस्ड, फिर कुछ फिल्म मेकर्स थे जो ढूंढ रहे थे कि कुछ एक ऑल्टरनेटिव पर्सनैलिटी मिले, जो इस तरह के कैरेक्टर्स जो हों साहित्य में हैं, जो पढ़े लिखे, इंटेलिजेंट, थिंकिंग, वो पोर्ट्रे करे, तो मुझे बुलावा आया, तो मैं गया क्योंकि बंगाली फिल्म से मैं काम करने का मेरा शौक पुराना था, वही फिल्में देख के मैं बड़ा हुआ और मुझे अच्छी फिल्में मिलने लगी, तो वो मैं करने लगा। तो अब बंगाली फिल्म, हिंदी फिल्म, बीबीसी रेडियो, खूब सारा थिएटर और एड फिल्म्स मिलने लगे, तो वो करने लगा। तो कमाई मेरी पहले से कम हो गई क्योंकि मैं टीवी छोड़ दिया, लेकिन उससे मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि मैं नुक्कड़ नाटक से आया था, मैं जानता था कि आप किसी भी परिस्थिति में आप जो कर रहे हो और कह रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि आप कितना कमा रहे हो। तो इस परिस्थिति से मैं जूझना मेरे लिए बड़ा आसान था क्योंकि मैं क्रिएटिवली सेटिस्फाइड था, पहली बात तो ये, एज एन आर्टिस्ट मैं सेटिस्फाइड था और जितना मिल रहा था बहुतों से ज्यादा था,
0: बिल्कुल,
1: तो मुझे कोई शिकायत नहीं थी।
0: और अभी ओटीटी आ गया है, उसमें तो वैसे भी जो नए लोग आ रहे हैं उनके लिए भी बहुत जगह है, बहुत किरदारों की
1: तो
0: जगह है, जो कहीं फिल्मों में लिमिटेड था।
1: बिल्कुल,
0: वो
1: नहीं,
0: यहां
1: नहीं, ओटीटी
0: पर
1: में
0: अभी
1: एक अच्छी बात ये हुई कि ओटीटी में ना बहुत कैरेक्टर्स लिखे जाते हैं
0: जी,
1: और एक कैरेक्टर को अगर 3 सीन भी मिलता है ना, वो तीन बहुत कमाल के सीन्स लिखे जाते हैं, वो ऐसे नहीं होते कि उनको आए और चले गए, वो सीन का कोई मायने होता है। तो भले वो 8 एपिसोड का कोई सीरीज है ओटीटी में, उसमें एक एपिसोड में वो आ रहा है, जैसे मैंने किया आर्या सीजन 1 में, मैंने एक एपिसोड में काम किया सुष्मिता के साथ, लेकिन वो किरदार एक डेफिनेट किरदार था जो उस एपिसोड में आता है और उस एपिसोड को इम्पैक्ट करता है और चला जाता है
0: जी।
1: तो उसको बिल्ड करने में मजा आया, उसकी वर्कशॉपिंग हुई, मैंने सुष्मिता सेन के साथ 2 दिन वर्कशॉपिंग की एक रिश्ता बनाने के लिए, उस पे काम किया, उसकी आवाज पे, उसकी बॉडी लैंग्वेज पे, उस स्वभाव पे, ये सब कुछ ओटीटी में एक क्राफ्ट को लेके जो एक सीरियसनेस आ गया था, अभी कितने दिन बरकरार रहेगा मुझे पता नहीं, लेकिन ये एक सीरियसनेस ये आ गया था ओटीटी में जो मुझे अच्छा लगा। ये मेरे थिएटर के प्रशिक्षण के साथ बहुत अच्छा जुड़ता है, जहां आपको स्क्रिप्ट पहले मिलता है, जहां आपको बैकग्राउंड पहले दिया जाता है, जहां आपका रिसर्च होता है, जहां वर्कशॉपिंग होती है, फिर प्रिपेयर्ड होकर आप सेट पे जाते हैं।
0: बिल्कुल, यहां सुनते हैं आपकी पसंद का एक और गाना।
1: जी, मेरे पसंद के गाने, अब हम अमिताभ बच्चन के दौर में आ जाते हैं।
0: हाँ।
1: बारिश का मौसम है तो रिमझिम गिरे सावन जो है वो मेरा बहुत ही पसंदीदा गाना है, वो आप सुना दीजिए, लोग टकाते हुए सुनते हैं उसको।
0: बिल्कुल बिल्कुल।

0: आते हैं डबिंग इंडस्ट्री की तरफ।
1: जी
0: तो कैप्टन अमेरिका की बात ना की जाए तो ये इंटरव्यू पूरा नहीं होगा, क्योंकि
1: जी
0: वॉइसिंग में आपने ऐसे तो बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज की डबिंग की है,
1: जी
0: लेकिन साथ साथ ये कुछ किरदार हैं जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए, पसंद किए गए हैं। तो इससे कैसे जुड़ना हुआ और इसकी चुनौतियां अपने लिहाज से कैसी है?
1: देखिए, मैं दिल्ली में ना, जब मैं थिएटर की पोजीशन ले रहा था तो कमाने के लिए मैं वॉइसिंग करता था।
0: जी
1: मैं बड़े इंटरेस्टिंग वॉइसिंग करता था। मैं मलयालम सीरीज जो होते थे टीवी के लिए, दूरदर्शन, उसको हिंदी में डब करता था। पपेट फिल्म्स में वॉइसिंग देता था, पपेट्स की वॉइसिंग, हाँ, तोते की वॉइस, सियार का वॉइस, ये सब मैं करता था वहाँ पे। कुछ डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह की भी बैकग्राउंड वॉइसिंग करता था, तो
0: जी
1: बड़ा मजा आता था। मुंबई में आया तो थोड़ी एड की वॉइसिंग की, लेकिन पूरी तरह से नहीं, उतना ही हुआ। फिर छूट गया क्योंकि मैं बहुत व्यस्त हो गया। बाद में 2010 के आसपास फिर से मुझे वॉइसिंग के लिए, पता नहीं, साउंड एंड विजन से बुलावा आया कि आप करना चाहेंगे। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने करना शुरू किया और हॉलीवुड फिल्मों में मुझे वॉइसिंग का मौका मिलने लगा। कुछ बड़ी बड़ी फिल्में मैंने हॉलीवुड की 2012, 18, बी मूवी करके की, और फिर वॉर्नर ब्रदर्स से फिर टेस्टिंग का वो आया। जब ये सारी कुछ हॉलीवुड की बड़ी फिल्में करने के बाद टेस्टिंग का मौका आया, और पता नहीं कैप्टन अमेरिका के लिए मुझे क्यों चुना गया, आई डोंट नो दैट, क्योंकि उसकी जो आवाज है
0: जी

0: मिला जो उसका साथ तो जमीन चांद से भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगी। फूलों में इत्र की सी तेज खुशबू घुल मिल गई। दिल की राहें उस ओर मुड़ गईं जहां से उसकी राहें शुरू होती हैं। पीपल के पेड़ के पीछे रुखसत होता चांद बेहद खूबसूरत लगने लगा। हसरतों का जहां आबाद हो गया।
1: वो चांद मुस्कुरा।

दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। जिंदगी की राहों में दिल ने पग पग पर ठोकर खाई, अंधेरे घने बादलों से चमकी एक रोशनी की लकीर, ख्वाबों का जहां जगमगा गया, हवाओं में खनक सी आ गई, ओस की बूंदे मोती सरीखी चमकने लगी, जिंदगी किसी और की अमानत हो गई।

0: मोहब्बत की बांसुरी बजी तो दिल को खबर ही नहीं रही। जिंदगी के झंझावात से दूर दिल आसमान में पतंग बन के उड़ चला। मौसम बदल गया, हर मौसम बहार बन गया। रूठने मनाने की रुत आ गई, पतझड़ में पत्तों के गिरने की आहट में संगीत के सुर घुल गए। सूखे पीले पत्ते हरे भरे हो गए।
1: ओ मुझसे मत पूछो

ख्यालों के आंगन में एक रोज उसने सपनों के दीप जला दिए। उसने दिखाई नई दुनिया, उस दुनिया में हवाएं गीत गा रही थी, बारिश की बूंदें पत्तियों पर मोती सी ठहरी थी। उस दुनिया में न था नफरत का रंग, न थी कोई तलखी, हवाओं में भी मोहब्बत की तासीर थी। दिल तब से उनके पहलू में जा बैठा है।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। तराने नए पुराने कार्यक्रम लेके हम हाजिर होंगे बस थोड़ी ही देर में।

तरानी नए पुराने कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी दोस्त प्रीति शर्मा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं खुदा गवाह फिल्म के इस गाने के साथ। इसे गाया है लता मंगेशकर ने।

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो
1: पके पेड़।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।
2: रात जी आ रही दिल अंधेरा है, तू जो सजन नहीं मेरा है, मेरा है रात।
0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
3: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
3: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
4: ये है विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है तराने नए पुराने।

0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

तरानी नए पुराने कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे समाचारों के बाद। यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। थोड़ी ही देर में समाचार होंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। नेपाल तिब्बत सीमा के पास रसुवा क्षेत्र में आज सुबह भूटे कोशी नदी में अचानक आई बाढ़ के कारण 384 पर्यटक लापता हैं। इनमें 105 भारतीय शामिल हैं। लापता लोगों में 291 विदेशी नागरिक और 93 नेपाली नागरिक हैं। इनमें ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड्स के नागरिक भी शामिल हैं। ये शुरुआती आंकड़े हैं और अभी इनका सत्यापन किया जा रहा है। प्रभावित क्षेत्र में खोज और बचाव अभियान जारी है। बाढ़ के कारण अब तक 7 लोगों के मारे जाने की खबर है। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने प्रभावित भारतीय नागरिकों की सहायता और जानकारी के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये हेल्पलाइन नंबर है 9779851316807 और दूसरा नंबर है 9779701075000। दूतावास ने बताया कि वो बाढ़ से प्रभावित भारतीय नागरिकों के शीघ्र बचाव और राहत के लिए नेपाल सरकार के संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार भारत नेपाल को जल्द से जल्द राहत सामग्री भेजने की तैयारी कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में आई बाढ़ से हुई जनहानि और तबाही पर दुख व्यक्त किया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस कठिन समय में भारत के लोगों की संवेदनाएं नेपाल के लोगों के साथ हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से टेलीफोन पर बातचीत में कहा कि भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचाव और राहत कार्यों के लिए दोनों देशों की टीमें आपस में मिलकर काम कर रही हैं। नेपाल में ग्लेशियर फटने से बिहार में अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। गंडक नदी से लगे 6 जिलों पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में विशेष निगरानी रखी जा रही है। सीतामढ़ी, शिवहर और अन्य जिलों के जिलाधिकारियों को भी स्थिति पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। पश्चिमी चंपारण के बगहा और वैशाली के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। गंडक नदी में पानी बढ़ने की आशंका को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की एक टीम गोपालगंज और बेतिया में तैनात की गई है। साथ ही एक अन्य टीम को मुजफ्फरपुर में तैयार रखा गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि स्थिति पर नजर रखने के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की गई है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से टेलीफोन पर बातचीत की। गृह मंत्री ने राज्य सरकार को स्थिति से निपटने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। श्री शाह ने कहा कि स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल को तैनात किया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत प्रथम 2500 पात्र महिला लाभार्थियों को अनुमोदन पत्र सौंप दिए। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि ये महिलाओं के सशक्तिकरण, कल्याण और सम्मान की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। भारतीय चिकित्सा संघ ने इन्फ्लुएंजा H1N1 के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। संघ ने कहा कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। संस्था ने लोगों को फ्लू के लक्षणों के लिए डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक्स नहीं लेने को कहा है। मेघालय सरकार ने स्कूली बच्चों में बुनियादी पठन कौशल को बेहतर बनाने और सीखने की कमियों को दूर करने के लिए CM इंपैक्ट रीड एंड राइज मेघालय कार्यक्रम शुरू किया है। इसका लक्ष्य है कि हर बच्चा 7 वर्ष की उम्र तक पढ़ना और लिखना सीख सके। जम्मू कश्मीर के पुंछ में छड़ी मुबारक यात्रा आज धार्मिक और आध्यात्मिक उल्लास के साथ संचालित की गई। इसके साथ ही श्री बूढ़ा अमरनाथ जी यात्रा 2026 के समापन की औपचारिक शुरुआत हो गई। श्री बूढ़ा अमरनाथ जी यात्रा 2026 का औपचारिक समापन रक्षाबंधन के दिन होगा। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने फॉलो ऑन मिलने के बाद दूसरी पारी में चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 6 विकेट पर 229 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही श्रीलंका ने 16 रन की बढ़त ले ली है। श्रीलंका की पहली पारी 290 रन पर सिमट गई थी। भारत ने पहली पारी में 9 विकेट पर 503 रन बनाए थे और पारी घोषित कर दी थी। भारतीय टीम श्रृंखला में 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणीचं हे नागपूर केंद्र आहे, प्रसारित करीत आहोत

प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा झरोखा के अंतर्गत। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम संध्या रंजन। 6:45 पर सुनिए संगीत सरिता श्रृंखला ताल प्रभा भाग 10। कलाकार हैं तबला वादक पंडित कालीनाथ मिश्र, प्रस्तुति मनीषा जैन की है। शाम 7 बजे सुनिए जयमाला इंद्रधनुष के अंतर्गत राग अनुराग आप सुनेंगे शाम 7:45 पर। रात्रि 8 बजे हवा महल में सुनिए झलकी खरीदारी कोट की, लेखक KL यादव, निर्देशक विजय बैनर्जी। चित्रलोक का समय रहेगा रात्रि 8:15 पर। रात्रि 9 बजे सुनिए आपके लिए। आज के फनकार ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 9:30 पर। कार्यक्रम केंद्रित है फिल्मकार मधुर भंडारकर पर। आलेख और स्वर अमरकांत दुबे का, प्रस्तुति रमेश गोखले। रात्रि 10 बजे सुनिए छाया गीत, आलेख और स्वर मंदाकिनी जोशी का, प्रस्तुतकर्ता राघवेन नेगी। ढलती जाए रात आप सुनेंगे रात्रि 10:30 पर। और रात्रि 11 बजे सुनिए रंग तरंग। ये थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। आइए अब आपको बता दें कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। कल सुबह 6:05 पर सुनिए वंदनवार, सुबह 6:35 और शाम माफ कीजिएगा 6:30 और शाम 6:30 पर सुनिए कार्यक्रम विवरण झरोखा में। रामचरितमानस आप सुनेंगे 6:35 पर। कल प्रसारित होगा भाग 293। सुबह 6:45 पर सुनिए संगीत सरिता श्रृंखला ताल प्रवाह भाग 11। कलाकार हैं तबला वादक पंडित कालीनाथ मिश्र, प्रस्तुति मनीषा जैन की। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होगा शाम 6:45 पर। बोले बिसरे गीत आप सुनेंगे सुबह 7 बजे। 7:30 पर सुनिए हम है राही प्यार के। सुबह 8:15 और दोपहर 2 बजे सुनिए त्रिवेणी, आलेख और स्वर सोनाली पाठक का, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। चित्रलोक आप सुनेंगे सुबह 8:30 पर। आज के फनकार का समय रहेगा सुबह 9:30। कार्यक्रम केंद्रित है पार्श्व गायक मुकेश पर, आलेख और स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुति मनीषा जैन। सुबह 10 बजे पिटारा में सुनिए आज के मेहमान, इसमें सुनिए अभिनेता जॉय सेन गुप्ता से अनुराधा उपाध्याय की बातचीत। संपादन सहायक है काजल भद्रगे, प्रस्तुति जुबैर खान। रंग तरंग आप सुनेंगे सुबह 11 बजे और रात्रि 11 बजे। यादों की महफिल सजेगी दोपहर 12:05 पर। दोपहर 1 बजे कार्यक्रम होगा सुरीला सफर, सदाबहार नगमे आप सुनेंगे दोपहर 2:30 पर। दोपहर 3 बजे सुनिए सखी सहेली, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। हेलो फरमाइश ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 4 बजे, संपादक ममता सिंह, प्रस्तुतकर्ता राघवेन नेगी। छाया गीत का समय रहेगा शाम 5 बजे। 5:30 पर सुनिए तराने नए पुराने। शाम 6:35 पर कार्यक्रम होगा संध्या रंजन। जयमाला का प्रसारण होगा शाम 7 बजे। 7:45 पर सुनिए इंद्रधनुष के अंतर्गत इनसे मिलिए, इसमें सुनिए गजल गायिका ऋतु जौहरी से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा भाग, प्रस्तुतकर्ता राघवेन नेगी। रात्रि 8 बजे हवा महल में सुनिए नाटिका झूठी शान, लेखन है सलीमा खुर्शीद का, निर्देशन गंगा प्रसाद माथुर। चित्रलोक का समय रहेगा रात्रि 8:15 पर। रात्रि 9 बजे सुनिए आपके लिए। आज के फनकार सुनिए रात्रि 9:30 पर। कार्यक्रम केंद्रित है पार्श्व गायक मुकेश पर, आलेख और स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुति मनीषा जैन। रात्रि 10 बजे सुनिए छाया गीत, आलेख और स्वर संगीता श्रीवास्तव का, प्रस्तुतकर्ता राघवेन नेगी। और ढलती जाए रात आप सुनेंगे रात्रि 10:30 पर। ये थे आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा झरोखा के अंतर्गत।

अभी आपने उषा मंगेशकर की आवाज में जय संतोषी माँ फिल्म का गाना सुना। इसे लिखा था प्रदीप ने, संगीत सी अर्जुन का था। आइए अब सुनते हैं महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज में बैराग फिल्म का गाना। गीत आनंद बख्शी का है, संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

0: संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ताल प्रवाह। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध तबला वादक कालीनाथ मिश्र। आपसे बातचीत की है रामकृष्ण दास ने। आज प्रस्तुत है इस श्रृंखला की 10वीं कड़ी।
1: नमस्कार, संगीत सरिता के श्रोताओं को मैं रामकृष्ण दास स्वागत करता हूं। आज फिर हम इस ताल प्रवाह में शामिल होंगे। हमारे साथ हैं तबला नवाज श्री कालीनाथ मिश्रा जी। अभी तक हमने कई प्रचलित और अप्रचलित ताल सुने हैं, उसके बारे में जानकारी हासिल की है। हमें बहुत अच्छा लगा है, आनंद भी हुआ है, और इसके साथ साथ मीठी मीठी धुन भी हमें सुनने को मिली है। नाच पर, गाने पर जो जो ताल प्रयोग होते हैं उसका खूबसूरत अंदाज हमने सुनी है। मैं मिश्रा जी से ये जानना चाहूँगा कि आज आप हमारे श्रोताओं को कौन सा ताल सुनाएंगे?
2: इस कड़ी में दास बाबू, मैं सोच रहा हूँ कि फोक का एक अंदाज है जो ठुमरी में ये ज्यादा प्रचलित है, ये ताल जिसे कहते हैं हम चाचर भी कह सकते हैं इसको।
1: जी,
2: चाचर। धा धा तक धिन ता तिट ता ता

0: अंदाज है, तो देखिए उस चंदी में लगी या एक अंदाज छोटा सा, जरूरी कि उसमें हम तबले का बोल पढ़ें, एक चलने का तरीका कैसे, कभी कभी प्रेम बहुत जरूरी है।
1: अच्छा आप मुझे बताइएगा, चाचर और दीपचंद में कोई फर्क है?
0: एक चलन का, खाली हल्का सा चलन का, धाधीन धाधातीन तक, धाधीन धाधातीन तक, हल्का सा अंदाज का एक है। तो प्रस्तुत करते हैं हम दीपचंदी, अंग है देखिए, वो आया वहीं से है।
1: अच्छा क्या ऐसी बात है क्या कि चाचर फोक म्यूजिक में प्रयोग होता है और दीपचंदी ठुमरी में प्रयोग होता है? ओके,
0: तो आया ये रूपक का अंदाज है, रूपक ती तीना धीना धी, अगर हम प्योर ती तीना धीना धीना बजाएंगे तो ताल कराएगा रूपक ताल, लेकिन ये दीपचंदी खास है, दीपचंदी विलंबित भी बहुत होता है जिसमें बहुत गुनीजन ठुमरी गाय है, रुका हुआ दीपचंदी, लेकिन आज मैं फोक टाइप का सुनाता हूँ दीपचंदी आपको।
1: बड़ी अच्छी बात है
0: फारूक भाई।

इस जो इसका जो छंद है इसमें दास बाबू, इसमें बहुत से राजस्थानी फोक भी हैं, बहुत से गाने फिल्मों के हैं, बहुत से ठुमरियाँ गाई जाती हैं हमारे बनारस में, चैती कजरी टप्पा, लेकिन इसका एक अंदाज आपको दिखा रहा हूँ कि दीपचंदी का क्या अंदाज है। पर ये आया रूपक के हिसाब से आया, ती ती ना धी ना धी ना ती ती ना धी ना धी ना, पर ये ठेका हो जाएगा।

0: तो ये अंदाज लग्गी का अंदाज है वो, कि रूपक से या दीपचंदी से या दादरा से कहरवा में कैसे जाते हैं, अब उसका अंदाज बदल जाता है। और बड़ा एक एक ऐसी जगह, एक ऐसा जगह है श्रोताओं, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि कैसे हम जाते हैं ताकि लय को तकलीफ ना हो।
1: वाह,
0: लय को कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए

0: ये है दीपचंदी का एक अंदाज। और क्या बात है, एक बात मैं और कहना चाहूंगा श्रोताओं को, सिर्फ घराने के ऊपर मत जाओ। मैं इस घराने से हूं, मैं उस घराने से हूं, मैं फर्रुखाबाद का, मैं दिल्ली का हूं, मैं बनारस का हूं। नहीं, आप जिस गुरु से सीख रहे हैं उस संगीत को आगे बढ़ाइए। अगर संगीत सरिता यही सोचे कि मुझे सिर्फ घराने को बुलाना है तो मुश्किल हो जाएगा हमको सुनने के लिए। और आज पूरे भारत में हम इसको रेडियो को सुनते हैं कि आज किसका गायन होने वाला है, आज किसका बांसुरी बजेगा, आज किसका सारंगी बजेगी, आज किसका तबला होगा। तो आप रियाज करिए, गुरु से शिक्षा पाइए और उसको कैसे बढ़ाएंगे, कैसे विस्तार करेंगे। हमने कभी देखा नहीं, मैंने दर्शन नहीं किया, लेकिन कंठे बाबा को, कंठे महाराज जी को,
1: कंठे महाराज,
0: उनको मैंने सुना कि वो गायक के साथ जब बजाते थे या सारंगी के साथ बजाते थे तो उनका तबला भी गाता था।
1: क्या बात,
0: ऐसा सुंदर ठेका देते थे, गड़ा हुआ ठेका, कि लगता था कि शायद ये गाना गा रहे हैं कि तबला बजा रहे हैं। उसी तरह से पूरन महाराज, किशन महाराज जी के पुत्र, अभी यंग कलाकारों में मैं दो चार नाम बताऊंगा, जैसे आज संजू सहाय, क्या बढ़िया तबला वादक हैं, बहुत लाजवाब, गट्टा बाया चाटी, मिजाज भी वैसे अच्छा है। शुभ जो महाराज जी के नाती हैं, राम कुमार मिश्रा, तो एक अंदाज होनी चाहिए गाने बजाने का कि हम उसको क्या करते हैं। ये नहीं कि हाँ आप चार प्रोग्राम कर लिए तो आपको ये नाज हो गया कि मैं बहुत बड़े कलाकार से, नहीं नहीं नहीं, आप संगीत की साधना करिए, सरस्वती जी की पूजा करिए और अपने काम को आगे बढ़ाइए, अपने माता पिता का नाम आगे करिए, अपने गुरु का नाम आगे करिए।
1: क्या बात, बहुत खूबसूरत बात है आपने की है। और चाचर, दीपचंदी, इन तालों को बड़ी अच्छी तरह से आपने प्रदर्शन की है।
0: एक बात और बता जाऊंगा जी, मुझे अचानक देखिए एक गाना याद आया, इसी दीपचंदी का है और म्यूजिक है उसमें शंकर जयकिशन जी का
1: जी,
0: फिल्म है आरजू, आपको याद आ रहा है वो गाना कितना अच्छा है, इसमें प्योर क्लासिकल म्यूजिक, अजी रूठ कर अब

ताल प्रवाहर इस श्रृंखला की ये थी 10वीं कड़ी। जाने माने तबला वादक कालीनाथ मिश्र से बातचीत की रामकृष्ण दास ने। इस श्रृंखला में कालीनाथ मिश्रा जी को सारंगी पर लहरा दे रहे हैं उस्ताद फारूख लतीफ खान और हारमोनियम पर हैं विनोद पड़गे जी। तकनीकी सहयोग वंदना ठाकुर और निखिल धामापुरकर। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।

यादों की बारात, जी हाँ ये नाम है फिल्म का, जिसका गाना अब आप सुनेंगे लता मंगेशकर, पद्मनी शिवांगी और साथियों की आवाजों में। गीत मजरू सुल्तानपुरी का है, संगीत आर डी बर्मन का।

अभी आपने शावदान सिन्हा की आवाज में मैंने प्यार किया फिल्म का ये गाना सुना। इसे लिखा था असद भोपाली ने, संगीत राम लक्ष्मण का था। फौजी साथियों, कार्यक्रम जयमाला का शेष भाग आप सुनेंगे इस अंतराल के बाद।

कार्यक्रम चित्रलोक में आपका स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी दोस्त प्रीति शर्मा। दोस्तों, आज फिल्मकार मधुर भंडारकर का जन्मदिन है, तो उनको विविध भारती परिवार की तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं उनकी ही फिल्मों के गाने। पहला गाना हमने लिया है फिल्म फैशन से, इसे गाया है सुखविंदर सिंह, सत्या हिंदुजा, रॉबर्ट बॉब ओमोलो ने। गीत संदीप नाथ का है, संगीत है सलीम सुलेमान का।

0: तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।
2: रात जी आ रही दिल अंधेरा है, तू जो सजन नहीं मेरा है, मेरा है रात।
0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
3: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
3: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
4: आइए अब सुनते हैं कैलेंडर गर्ल्स फिल्म का गाना। मीत ब्रदर अंजान और खुशबू ग्रेवाल की आवाजों में, गीत कुमार का है, संगीत मीत ब्रदर अंजान का है।

आइए अब सुनते हैं कुणाल गांजावाला और अंतरा मित्रा की आवाजों में दिल तो बच्चा है जी फिल्म का गाना। इसे लिखा है सईद कादरी ने, संगीत प्रीतम का,

0: घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: चित्रलोक कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे ब्रेक के बाद।

0: ब्रेक के बाद कार्यक्रम चित्रलोक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को वो भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा, तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्री,
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों की 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: चित्रलोक कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं फिल्मकार मधुर भंडारकर के फिल्मों के गाने। आइए अब सुनते हैं ट्रैफिक सिग्नल फिल्म का गाना। इसे लिखा है कैलाश खेर ने, आवाज कैलाश खेर की है, संगीत कैलाश परेश और नरेश का है।

ध्रुव कार्यक्रम में आज आपने सुनी फिल्मकार मधुर भंडारकर की फिल्मों के गाने। इस गाने के साथ ही चित्रलोक कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। थोड़ी ही देर में समाचार होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक भीषण बाढ़ में 46 लोगों की मौत, 100 से अधिक भारतीयों सहित लगभग 500 लोग लापता। भारत ने नेपाल में बचाव और राहत कार्यों में तेजी आने के साथ ही हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। बिहार और उत्तर प्रदेश ने पड़ोसी देश में बाढ़ के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए तैयारियां तेज की। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। पेचिंग में सीमा वार्ता के 25वें दौर में 8 सूत्री सहमति बनी। ओणम और ईद मिलाद हर्षोल्लास से मनाया गया। और क्रिकेट में मेजबान श्रीलंका ने फॉलो ऑन के बाद चौथे दिन दूसरी पारी में 6 विकेट पर 229 रन बनाए। मैच पर भारत की पकड़ मजबूत। और अब समाचार विस्तार से। नेपाल तिब्बत सीमा के भोटेकोशी नदी में आई अचानक बाढ़ से अब तक 105 भारतीयों और 37 प्रवासी भारतीयों सहित करीब 500 लोग लापता हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों से अब तक 46 शव बरामद किए गए हैं और 93 लोगों को बचाया गया है। अधिकांश भारतीय तिब्बत में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जा रहे थे। अचानक आई बाढ़ से रसुवा तथा धादिंग जिले प्रभावित हुए। बाद में इसका असर नुवाकोट और चितवन तक पहुंचा। एक रिपोर्ट।
1: लापता लोगों में ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड्स के नागरिक भी शामिल हैं। नेपाल पर्यटन बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि ये शुरुआती आंकड़े हैं। प्रभावित क्षेत्र में खोज और बचाव अभियान जारी है। प्रारंभिक जांच के अनुसार भूकंप के कारण हिमस्खलन हुआ, इससे पिघली हुई बर्फ का पानी कोशी नदी में आ गया और अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ से रसुवा क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने रसुवा, नुवाकोट, धादिंग, गोरखा और चितवन के प्रभावित क्षेत्रों के सांसदों के साथ स्थिति पर चर्चा की। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: काठमांडू में भारतीय दूतावास ने प्रभावित भारतीय नागरिकों की सहायता और जानकारी के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये हेल्पलाइन नंबर है 9779851316807 और दूसरा हेल्पलाइन नंबर है 9779091075000। दूतावास ने बताया कि वो बाढ़ प्रभावित भारतीय नागरिकों के शीघ्र बचाव और राहत के लिए नेपाल सरकार के संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार भारत नेपाल को जल्द से जल्द राहत सामग्री भेजने की तैयारी कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में आई बाढ़ से हुई जनहानि और तबाही पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत इस कठिन घड़ी में नेपाल के साथ है। उन्होंने कहा कि भारत इस आपदा से प्रभावित लोगों के लिए नेपाल सरकार के राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से टेलीफोन पर बातचीत में कहा कि भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचाव और राहत कार्यों के लिए दोनों देशों की टीमें आपस में मिलकर काम कर रही हैं। नेपाल में ग्लेशियर फटने के बाद बिहार में अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: नेपाल में बाढ़

0: नदी में जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए बिहार के 6 जिलों पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। सीतामढ़ी, शिवहर और अन्य जिलों के जिलाधिकारियों को भी स्थिति पर लगातार और करीबी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। पश्चिम चंपारण के बगहा और वैशाली जिले के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से जल्द सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। राज्य के उप मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि फिलहाल गंडक नदी का जलस्तर अपेक्षाकृत कम है, जो कि एक सकारात्मक स्थिति है। हालांकि स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए संभावित जल प्रवाह को देखते हुए वाल्मीकि नगर बराज से 2.5 लाख क्यूसेक तक पानी छोड़े जाने की संभावना है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि स्थिति पर नजर रखने के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की गई है।
2: उस पर हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूं। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकि नगर जाऊंगा।
1: आपदा मोचन बल के कमांडेंट हितेंद्र पाल सिंह कंडारी ने बताया कि बिहार में 9 टीमें तैनात हैं और कई अन्य टीमें अलर्ट पर हैं।
3: मानसून के सीजन में हमारी कुछ टीमें पहले से ही प्रिपरेशन थी। अभी जो संभावना जताई जा रही है कि फ्लड का पानी जो नेपाल में है वो इंडिया में एंटर करेगा, तो उसके बाद यहाँ पे भी फ्लड की सिचुएशन बन सकती है। उसके मद्देनजर हमारी टीमों को वहाँ पे भेजा गया।
1: इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से टेलीफोन पर बातचीत की। गृह मंत्री ने राज्य सरकार को स्थिति से निपटने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। वहीं उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों महाराजगंज और कुशीनगर में सतर्कता बढ़ा दी गई है। नेपाल में अचानक बाढ़ के कारण दोनों जिलों में गंडक और नारायणी नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ से हुई तबाही पर चिंता व्यक्त करते हुए महाराजगंज और कुशीनगर के स्थानीय प्रशासन को सभी जरूरी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इधर मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बताया कि निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण कल दक्षिण उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में भी तेज वर्षा की संभावना है। कल दिल्ली में भी वर्षा होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने तथा द्विपक्षीय संबंधों के स्वस्थ और स्थिर विकास के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। सीमा के मुद्दे पर भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच वार्ता का 25वां दौर कल पेइचिंग में आयोजित किया गया। चीन के विशेष प्रतिनिधि सीपीसी केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य और केंद्रीय विदेश आयोग के कार्यालय के निदेशक वांग यी तथा भारत के विशेष प्रतिनिधि और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने भारत चीन सीमा मुद्दे पर गहन विचार विमर्श किया और 8 बिंदुओं पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने सीमा के मुद्दे के समाधान के लिए एक रूपरेखा तैयार करने हेतु वार्ता को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता पर बल दिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि व्यस्ततम रेल लाइनों को 4 लेन में बदलने की दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि देश में 7 व्यस्ततम रेल मार्ग हैं जो तकरीबन 11,000 किलोमीटर तक फैले हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली हावड़ा, हावड़ा चेन्नई,

0: समाधान के लिए एक रूपरेखा तैयार करने हेतु वार्ता को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता पर बल दिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि व्यस्ततम रेल लाइनों को 4 लेन में बदलने की दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि देश में 7 व्यस्ततम रेल मार्ग हैं जो तकरीबन 11,000 किलोमीटर तक फैले हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली हावड़ा, हावड़ा चेन्नई, चेन्नई मुंबई, मुंबई दिल्ली, दिल्ली चेन्नई, मुंबई हावड़ा और दिल्ली गुवाहाटी 7 व्यस्ततम रेल मार्ग हैं। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग और स्कूल शिक्षा तथा साक्षरता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जारी निर्देशों पर हुई प्रगति का जायजा लिया गया और चल रही पहलों के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। श्री जोशी ने समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने और प्रभावी ढंग से आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करने की जरूरत पर बल दिया। दिल्ली सरकार ने आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत प्रथम 2,500 पात्र महिला लाभार्थियों को अनुमोदन पत्र सौंपे। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2,500 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि ये महिलाओं के सशक्तिकरण, कल्याण और सम्मान की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि देश की प्रगति के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण आवश्यक है।
1: 1 अगस्त से लेकर के आज तक 9,22,000 बहनों ने इस योजना में अपना नाम रजिस्टर किया। इस दिल्ली लक्ष्मी योजना में पहली 2,500 बहनों को हमने अप्रूवल सर्टिफिकेट सौंपा है, क्योंकि ये पहली 2,500 बहनें हैं जिन्हें इस योजना का लाभ मिलने जा रहा है।
0: मुंबई पुलिस ने एमपीएससी की ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा का प्रश्न पत्र कथित तौर पर लीक होने के मामले में महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के 3 अधिकारियों समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। अदालत ने सभी 6 आरोपियों को बुधवार तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति कल रायपुर में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित करेगी। इस विषय पर व्यापक विचार विमर्श के लिए विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 200 लोगों को आमंत्रित किया गया है। मेघालय सरकार ने स्कूली बच्चों में बुनियादी पठन कौशल को बेहतर बनाने और सीखने की कमियों को दूर करने के लिए सीएम इंपैक्ट रीड एंड राइज मेघालय कार्यक्रम शुरू किया है। इसका लक्ष्य है कि हर बच्चा 7 वर्ष की आयु तक पढ़ना और लिखना सीख सके। भारतीय चिकित्सा संघ आईएमए ने इन्फ्लुएंजा H1N1 के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। आईएमए ने कहा कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। चिकित्सा संघ ने लोगों को फ्लू के लक्षणों के लिए डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक्स नहीं लेने को कहा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। दुनिया भर में रह रहे केरलम वासी आज तिरुओणम का पर्व मनाया। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये पौराणिक राजा महाबली के स्वागत और नई फसल के आगमन की खुशी में सभी केरलम वासियों द्वारा उत्साह के साथ मनाया जाता है।
2: तिरुओणम के अवसर पर केरलम में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। ओणम पर्यटन सप्ताह के अंतर्गत राज्य के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक कार्यक्रम जारी हैं। जिला मुख्यालयों के साथ साथ प्रमुख पर्यटन स्थलों पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। केरलम का सबसे बड़ा फसल उत्सव ओणम अब समापन की ओर है। तिरुअनंतपुरम से स्मृति एम पलुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सिद्धार्थ सिंह।
0: इस बीच कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने केरलम मंडल में लगभग 4,40,000 पेंशन भोगियों को आज अगस्त 2026 की पेंशन उनके खातों में भेज दी। सामान्य तौर पर पेंशन का वितरण महीने की अंतिम तिथि को होता है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलाद उन नबी भी आज उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मिलाद जुलूस भी निकाले गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कश्मीर घाटी में इस अवसर पर विभिन्न मस्जिदों और दरगाहों में हजारों श्रद्धालु जुटे और विशेष नमाज अदा की।
3: ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में पूरी घाटी में हजारों की तादाद में अकीदतमंद मस्जिदों और दरगाहों में जमा हुए और खुसूसी नमाजों और मजहबी मजलिसों में शामिल हुए। सबसे बड़ी मजलिस श्रीनगर के दरगाह हजरत बल में हुई, जहां पर पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास निशानी को लोगों के सामने नुमाया किया गया और उनकी जिंदगी पर रोशनी डाली गई। ऐसी ही मजलिसें घाटी के दीगर इलाकों में भी हुई, जहां पर लोगों ने

0: जम्मू कश्मीर और पूरे मुल्क की खुशहाली के लिए दुआएं की। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
1: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में छड़ी मुबारक यात्रा आज धार्मिक और आध्यात्मिक उल्लास के साथ संचालित की गई। इसके साथ ही श्री बूढ़ा अमरनाथ जी यात्रा के समापन की औपचारिक शुरुआत हो गई। यात्रा समापन रक्षाबंधन के दिन होगा। भारत ने बाढ़ से जूझ रहे नेपाल की सहायता के लिए 10 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री तथा आवश्यक दवाइयां भेजी हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत इस संकट की घड़ी में नेपाल और वहां के लोगों के साथ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पत्रा देवी हुतात्मा स्मारक राष्ट्रीय एकता, साहस और बलिदान का प्रतीक है, जिसने गोवा की मुक्ति में योगदान दिया था। श्री सिंह ने स्मारक के उद्घाटन समारोह में कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों से लोग गोवा आए और इसकी स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। और अब खेल खबरें। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने फॉलो ऑन मिलने के बाद दूसरी पारी में चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 6 विकेट पर 229 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही श्रीलंका ने 16 रन की बढ़त ले ली है। श्रीलंका की पहली पारी में 290 रन पर सिमट गई थी। भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। भारतीय टीम श्रृंखला में 1-0 से आगे है। हंगरी में पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन में वीर चोटरानी और विल्वन सेंथिल कुमार सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। चोटरानी ने क्वार्टर फाइनल में मिस्र के मोहम्मद अल शेरबिनी को और विल्वन सेंथिल कुमार ने मलेशिया के एन यो एनजी को हराया। अब सेमीफाइनल में ये दोनों खिलाड़ी आमने सामने होंगे। मुंबई में एशियाई जूनियर क्लासिकल शतरंज चैंपियनशिप में मयंक चक्रवर्ती ने ओपन और प्रतीति बोरदोलोई ने लड़कियों के वर्ग का खिताब जीत लिया है। ओपन वर्ग का कांस्य पदक भारत के ही दक्ष ने हासिल किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक भीषण बाढ़ में 46 लोगों की मौत, 100 से अधिक भारतीयों सहित लगभग 500 लोग लापता। भारत ने नेपाल में बचाव और राहत कार्यों में तेजी आने के साथ ही हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। बिहार और उत्तर प्रदेश ने पड़ोसी देश में बाढ़ के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए तैयारियां तेज की। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। पेचिंग में सीमा वार्ता के 25वें दौर में 8 सूत्री सहमति बनी। ओणम और ईद मिलाद हर्षोल्लास से मनाया गया। और क्रिकेट में मेजबान श्रीलंका ने फॉलो ऑन के बाद चौथे दिन दूसरी पारी में 6 विकेट पर 229 रन बनाए। मैच पर भारत की पकड़ मजबूत। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये है विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है आपके लिए। आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में सफर फिल्म का गाना। गीत इंदिवर ने लिखा है, संगीत कल्याण जी आनंद जी का है।

इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की दीजिए अनुमति और आप सुनते रहिए विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, काम काज। तो जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती।

0: से सुनेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे कुछ बातें कर लें। जाहिर है ये बातें भी मधुर भंडारकर के बारे में ही होंगी। मुंबई में ही पले बढ़े मधुर अपने करियर की शुरुआती दिनों में एक वीडियो लाइब्रेरी चलाया करते थे। जी हाँ, वहां भी वो फिल्मों से ही घिरे रहते थे। तो क्या मधुर, आपको फिल्मों का शौक बचपन से ही था?
1: बचपन से ऐसा था कि पिक्चर का बहुत शौक था, थिएटर में जाके पिक्चर देखना। और खास करके मुझे याद आता है कि हमारे वो टाइम पे रोड पे पिक्चर बहुत दिखाया करते थे, जैसे गणेश उत्सव होता था या गोविंदा या सत्यनारायण की पूजा होती थी, तो काफी पिक्चरें देखी, हर टाइप की पिक्चर देखी, ब्लैक एंड व्हाइट देखी और अलग अलग प्रकार की पिक्चरें देखी। तो सिनेमा का एक जुड़ाव जब से रहा है हमेशा, बचपन में एक नॉर्मल था लेकिन फिल्म से काफी जुड़ाव था कि पिक्चर में जाके शूटिंग देखना, लोगों को मिलना। रोड पे जब पिक्चर देखते थे हम लोग, मुझे याद है कि जब पिक्चर देख रहे और बीच में कोई गाय आ जाती थी तो काफी भागम भाग होती थी।

एक वीडियो कैसेट लाइब्रेरी चलाता था। काफ़ी साल मुझे उसमें, एक 4-5 साल मैंने स्ट्रगल किया। वीडियो कैसेट घर घर जाके पहुंचाता था। मैं खार में रहता था, तो वर्सोवा जुहू एरिया इलाके में जाके वीडियो कैसेट रहता था। कई फिल्म वालों को भी कैसेट दिया करता था मैं। तो वहाँ से तो पहले से फिल्म का तो था शौक, लेकिन एक ऐसा हो गया कि जब वीडियो कैसेट देते देते फिल्म वालों से बहुत ही काफ़ी करीब आ चुका था मैं। तो मुझे ऐसा लगा कि यहीं से मौका मिलना चाहिए मुझे। तो मैंने वीडियो कैसेट्स के बाद मैंने कुछ और जॉब्स किए बॉम्बे में, जैसे छोटे मोटे क्लैप देना, कंटिन्यूटी लिखना छोटे मोटे डायरेक्टर के साथ। मेरी कोई एकदम डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं थी, क्योंकि मुझे कोई बड़ा डायरेक्टर अपना असिस्टेंट रख लेगा। तो काफ़ी एक सवा साल मुझे स्ट्रगल करना पड़ा। उसके बाद मेरी मुलाकात मिस्टर राम गोपाल वर्मा जी से

तो उनके साथ में जुड़ा रहा 91 से लेकर 95 तक, तो 5 साल का सफर उनके साथ जुड़ा रहा, तो काफी कुछ सीखने मिला। वो एक अलग टाइप के डायरेक्टर है और काफी इनोवेटिव और क्रिएटिव किस्म के डायरेक्टर है, तो बहुत उनसे सीखने मिला और वहां से एक जर्नी मेरी शुरू हुई है। क्योंकि जब पहली पिक्चर जब मैं बनाने निकला था तो लोगों ने मुझे कहा कि आप कमर्शियल फिल्म बनाइए, क्योंकि जो कमर्शियल फिल्म चलती है, तो मैं जिस तरह की सब्जेक्ट और जिस तरह आइडिया थे मेरे पास, तो कहीं लोगों ने बोला कि तुम बहुत ही इंटेलेक्चुअल सोचते हो और तुम बहुत ही श्याम बेनेगल गोविंद नरानी टाइप सोचते हो, तुम आप कमर्शियल फिल्म में बनाओ। तो मुझे लगा कि रंगीला पिक्चर में मैं एसोसिएट डायरेक्टर था मिस्टर रामगोपाल वर्मा जी का, तो उसके बाद मैं इंडिपेंडेंट हो गया, मुझे लगा कि एक इंडिपेंडेंट फिल्म बनानी चाहिए। तो लोगों ने मुझे कहा कि तुम एक्सपेरिमेंटल सिनेमा या अलग टाइप का सिनेमा मत बनाओ, क्योंकि जो पहली पिक्चर होनी चाहिए वो कमर्शियल फिल्म होनी चाहिए, अगर कमर्शियल फिल्म चलेगी तो आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा दूसरे प्रकार की फिल्म बनाने का। तो मैंने शायद दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा लिया और सोचा, और इस सबसे मैंने एक कमर्शियल फिल्म बनाने की पूरी कोशिश की जो दूसरों को पसंद था वो बनाया, जिसका नाम था त्रि शक्ति जो पिक्चर थी, जिसमें अरशद वारसी, मिलिंद गुनाजी, शरद कपूर थे। तो वो पिक्चर बनने में ही 2.5 साल लग गए और बाय द टाइम रिलीज हुई उसको 3 साल के बाद पिक्चर रिलीज हुई। तो जब बॉक्स ऑफिस से पिक्चर लगी तो किसी के स्टेटस वहां पे नहीं थे, क्योंकि अरशद, शरद, मिलिंद गुनाजी तीनों के बॉक्स ऑफिस स्टेटस भी खत्म हो चुके थे। तो बड़े ही जद्दोजहद से वो पिक्चर रिलीज हुई, लेकिन वो ऐसी पिक्चर थी जिसकी खबर भी नहीं छपी, वो आई और चले गई, पता नहीं चला किसी को। तो मेरे माथे पे एक होता है वो लग गया कि फ्लॉप डायरेक्टर बोल के, तो ये बहुत मुश्किल होता है कि एक इंसान को फ्लॉप डायरेक्टर का जब टैग लगता है, खास करके आपकी पहली पिक्चर नहीं चले और खास करके जो पिक्चर जिसमें कोई स्टारकास्ट भी नहीं थी, जो बी ग्रेड फिल्म कहा जाता था, तो वहां से उठकर इस पोजिशन में पहुंचना बहुत संघर्ष करना पड़ा।

0: अगली फिल्म चांदनी बार, जिसने न सिर्फ अपने झंडे गाड़े बल्कि आपको राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिला दिया, उसका आइडिया आपको कैसे आया?
1: देखिए त्रिशक्ति जब नहीं चलने के बाद एक 1.5 साल ऐसा मेरी लाइफ में आया कि जहाँ पे मुझे लगा कि मैं क्या काम करूँ बोल के, किस तरह की, मुझे एक ही लगा कि ये जो पिक्चर मैंने बनाई थी त्रिशक्ति, ये मेरी फिल्म नहीं थी, ये मेरे दिल से निकली हुई फिल्म नहीं थी, मुझे लगा कि मैंने किसी और के हिसाब से फिल्म बनाई है। तो मुझे लगा कि एक फिल्म ऐसी बनानी चाहिए जिसमें मेरा काम नजर आए, तो इसी तरह से

0: चांदनी बार का सब्जेक्ट, एक बार मेरा एक दोस्त था जो मुझे बार में ले गया, मुझे पता नहीं लेडीज बियर बार है, तो वहां ले गया। और उसने बार को जब मैंने देखा, मुझे लगा यार ये कैसा कल्चर है, यहाँ पे लोग लड़कियां डांस कर रहे हैं और लोग पैसे फेंक रहे हैं। तो वहां से जो आइडिया जनरेट हुआ मेरे से, तो वहां से ही मुझे लगा कि ऐसी फिल्म बनानी चाहिए। तो बहुत तो लोगों को मैंने सब्जेक्ट सुनाया इसका, तो सब लोगों ने रिफ्यूज किया, बोला नहीं ये तो सब्जेक्ट समझ में नहीं आता है, या जिनको समझ में आया तो वो अश्लील बनाना चाहते थे। तो मैं अश्लील फिल्म नहीं बनाना चाहता था, मुझे लगा कि मैं अपने हिसाब से एक फिल्म बनाऊंगा बोल के, जिसके अंदर इमोशनल बॉन्डिंग रहेगी बोल के। तो तब जाके मैंने मिस्टर आर मोहन, जो मेरी पिक्चर गलती से त्रिशक्ति देखे हुए थे, तो उनको लगा कि मधुर ने ऐसे टेक्निकली काम अच्छा किया था पिक्चर में त्रिशक्ति में। तो मैंने उनको सब्जेक्ट सुनाया चांदनी बार का, और उन्होंने बोला बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और मैं तुम्हारे साथ फिल्म बनाऊंगा। फिर मैंने एक रिसर्च किया, 6 महीने के ऊपर रिसर्च किया, बार में जाके लोगों से मिलके, बार वालों से मिलकर, वेटर से मिलकर, कस्टमर से मिलकर, तो काफी रिसर्च करके 6-8 महीने में मैंने उसकी स्क्रिप्ट के राइटर के साथ बैठकर उसको डाला, और उनको लगा कि पिक्चर में स्पार्क है और ये बन सकती है अच्छी पिक्चर। तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है मधुर मैं बनाऊंगा। और तब्बू जी उनके साथ काम कर चुकी थी सदाए काला पानी पिक्चर में, तो मैंने उनको बोला तब्बू अगर होगी तो अच्छा रहेगा पिक्चर में। तो मैं और आरमोन साहब तब्बू को जाके मिले और हमने उनको नरेट किया, और तब्बू को बहुत अच्छा लगा सब्जेक्ट आइडिया, और उसके बाद ये पिक्चर मुकम्मल हुई। मुझे लगा कि एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए, क्योंकि मेरा दूसरा चांस था, अगर ये पिक्चर नहीं चलती तो शायद मैं यहाँ बैठा नहीं होता। और जब मैं चांदनी बार बना रहा था 1999-2000 में, तो जब म्यूजिक इंडस्ट्री जो है वो बड़ी पीक पे थी, और बिना गाने के तो पिक्चर ही नहीं बनती थी, और आइटम गाना तो एकदम पीक पे था वो टाइम पे। तो लेकिन मैंने मेरे प्रोड्यूसर को कन्विंस किया कि मैं बोला इसमें मैं कोई गाना नहीं रखना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगा कि इस पिक्चर से, गाना आने से पिक्चर का नरेशन जो है इसका बहुत ही कमजोर पड़ेगा। और मुझे लगा कि 6 महीने जो बार में रिसर्च किए, तो मैंने हमेशा फिल्मी गाने सुने थे, तो इतना जहन में था मेरा कि मुझे लगा कि रियलिस्टिक गाना होने में ही बेटर होगी, तो इस पिक्चर की जो मोल्डिंग है वो भी रियलिस्टिक लगेगी। तो इसलिए हमने कोई गाना या कोई आइटम सॉन्ग, अगर चांदनी बार मेरे ख्याल से ऐसी जगह थी जिसके अंदर आप 5 आइटम गाना भी डालते तो कम पड़ता, हर लड़की आइटम गाने भी डांस कर रही, लेकिन मैंने रियलिस्टिक गाना रखा जो पिक्चर के पुराने जो गाने होते हैं जानबूझ के रखा, और एक जर्नी दिखाई थी 1985 से 2000 तक। तो मैंने उस हिसाब से ईयर वाइज ईयर मैंने देखा कि गाने चेंज भी होते हैं, एम्बियंस चेंज होता है, सेट को रेनोवेट किया गया, तो हमने वही डिसीजन लिया। और मैं इस बारे में मेरे प्रोड्यूसर को भी सहयोग दूंगा कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया इस बारे में।
1: ये तो थी फिल्म चांदनी बार की बातें, सिर्फ यही नहीं बल्कि मधुर भंडारकर की फिल्म पेज 3 भी राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजी गई। आपको भी अच्छी लगी थी ना ये फिल्म?

इस फिल्म पेज थ्री को बहुत ही रीजनेबल बजट में नए कलाकारों को लेकर बहुत ही कम समय में मधुर भंडारकर ने बना लिया। इससे जुड़ी कुछ बातें भी उनसे सुनेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि मधुर भंडारकर की एक और फिल्म थी आन, इसे भी डायरेक्ट उन्होंने ही किया था, लेकिन फिल्म के निर्माता फिरोज नडियाडवाला से उनके कुछ मतभेद होने के कारण उन्होंने तकरीबन कंप्लीशन पर ही ये फिल्म छोड़ दी, इसीलिए क्रेडिट्स में उनका नाम नहीं है। बहरहाल आइए सुनते हैं फिल्म आन का गाना।

0: हाँ तो मधुर जी, अब पलटाइए पेज थ्री।
1: पेज थ्री एक ऐसी फिल्म थी कि लोगों ने लगा कि ये किस तरह की फिल्म है और पता नहीं लोग इसे पसंद करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि एक पेज थ्री टाइटल ही बहुत ही अलग टाइटल था और पिक्चर में कोई फेस वैल्यू नहीं था। लेकिन हमारे प्रोड्यूसर, हमारे टीम ने पूछा उसको, स्क्रीन प्ले डायलॉग में इसको ढहा भरा से और इस तरह से उसको हमने प्रेजेंट किया, तो उस बात की खुशी हुई कि पिक्चर चली बोल के। वो पेज थ्री का आइडिया आया था जब मैं कहीं पार्टीज में गया, जैसे पेज थ्री पार्टीज कहते हैं, और कहीं अलग अलग मुझे लगा कि अलग अलग प्रकार के लोग एक पार्टी में आते, चाहे वो बिजनेस वर्ल्ड से हो, फिल्म वर्ल्ड से हो, एड वर्ल्ड से हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, पॉलिटिशियंस हो, तो एक छत के नीचे आते हैं और इंटरेक्ट करते हैं। तो मुझे लगा कि इस पर एक फिल्म बननी चाहिए। जब मैं ऑब्जर्व करता था, मैं एक अच्छा ऑब्जर्वर हूँ जैसे लोग कहते हैं, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि लोग किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, तो मुझे लगा कि इस पर फिल्म बन सकती है। तो मुझे पहले लगा कि एक ओवरनाइट सब्जेक्ट बनाते हैं जिसमें रात को पार्टी चालू होती सवेरे खत्म होती है, लेकिन फिर मुझे लगा कि इतने कैरेक्टर्स एक रात में मैं नहीं दिखा पाऊंगा, और किसके पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाना बड़ा मुश्किल हो गया था पिक्चर, कि ड्राइवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रखे, कोई सोशलाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से रखे। मुझे फिर एक लगा कि जर्नलिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो अच्छा रहेगा, तो इसलिए एक जर्नलिस्ट ऐसी रखी जो नई है बीट पे और नई तरह से काम शुरू किया है, तो ज्यादा मंझी हुई नहीं है वो, तो उस तरह से उसकी जर्नी हमने दिखाई है। खास घटना तो नहीं कहूंगा, लेकिन कहीं ऐसे पेज थ्री में इंसिडेंट्स मैंने देखे पार्टी में, कि किस तरह से सुपरफिशियल लोग, किस तरह से एक प्लास्टिक वर्ल्ड हम कहते हैं जैसे डिपिक्ट कहते हैं, कि वो आते हैं वहां पे, माने चेहरे के पीछे हर इंसान की कहानी होती है, हर इंसान का एक जज्बात होता है
2: जी।
1: तो मुझे लगा कि ये पिक्चर की स्टोरी अगर बताई जाए तो बहुत ही अनयूजुअल सब्जेक्ट था ये
2: जी।
1: लेकिन मुझे लगा कि रिस्क लेके, लोगों ने मुझे कहा चलो भाई तुम फिल्म बनाना चाहते हो ठीक है, लेकिन कम से कम टाइटल तो चेंज करो, ये पेज थ्री समझ में किसको आएगा। लोग कहीं लोगों ने कहा कि मर्डर मिस्ट्री है, कोई फ्लैट नंबर है, क्या है ये
2: जी।
1: समझ में नहीं आ रहा पिक्चर, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, कि मैं उस टाइटल से सीमित था कि पेज थ्री होना चाहिए। मैं मेरे ख्याल से कोई भी एक पिक्चर चलती वो क्रेडिट पूरा डायरेक्टर को लेना नहीं चाहिए, मेरे ख्याल से पूरे टीम ने के मेहनत की है, प्रोड्यूसर ने मेहनत की है, और मेरे राइटरों ने मेहनत की है, म्यूजिक डायरेक्टर ने मेहनत की, राजू सिंह बैकग्राउंड म्यूजिक स्कोर बहुत अच्छा उसने किया, तो सब लोग ने की मेहनत।

दोस्तों, मधुर भंडारकर की बातों को सुनने के बाद आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि उन्होंने फिल्मों में जो भी सब्जेक्ट रखे हैं, जो भी उठाए हैं, जो समस्याएं दिखाई हैं, वो सब उनकी जिंदगी

आसपास घटने वाली चीजों को भी उन्होंने फिल्मों में उतारा है। उन्होंने कहीं कहा है कि मैं समस्याओं को सुलझाने की कोशिश नहीं करता। पेज 3 उन्होंने बनाई सन 2005 में, कॉर्पोरेट बनाई 2006 में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड को लेकर, ट्रैफिक सिग्नल बनाई सन 2007 में, बहुत ही खूबसूरत फिल्म 2008 में, फैशन वर्ल्ड को लेकर उन्होंने एक रियलिस्टिक फिल्म दिखाने की कोशिश की, और फिर जेल की जिंदगी पर बनी सन 2009 में जेल। तो एक बहुत ही

को लेकर उन्होंने एक रियलिस्टिक फिल्म दिखाने की कोशिश की और फिर जेल की जिंदगी पर बनी सन 2009 में जेल। तो एक बहुत ही रियलिस्टिक कोशिश करते हैं मधुर भंडारकर अपनी फिल्मों के जरिए समाज को ये दिखाने की कि उसके आसपास उसके अंदर क्या हो रहा है ये भी देखिए।

सामाजिक सरोकारों को देखकर, जानकर, महसूस करके उसे रुपहले पर्दे पर प्रस्तुत करने में माहिर मधुर भंडारकर की दो फिल्मों का जिक्र यहाँ जरूरी करना हो जाता है। एक तो दिल तो बच्चा है जी, इसी कड़ी में एक और फिल्म है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं,

0: जब हम बात मधुर भंडारकर की कर रहे हैं तो ये जिक्र भी जरूरी है, यानी कहना चाहिए कि लीक से हटकर एक अलग सब्जेक्ट पर फिल्म बनाने वाले इस निर्देशक की हीरोइन के बाद कौन सी फिल्म आई तो तुरंत नाम याद आता है, कैलेंडर गर्ल्स। इस प्रतिभावान निर्देशक को भारत सरकार ने भी सराहा, उनकी प्रतिभा को नवाजा पद्मश्री देकर सन 2016 में। तो दोस्तों ये था फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम, रमेश गोखले द्वारा प्रस्तुत। इस कार्यक्रम के लिए शोध आलेख और स्वर अमरकांत का। अब नमस्ते।
1: आज के फनकार।

आइए सुनते हैं छाया की। सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। सामिन, कहते हैं जब विचारों की दौड़ लगती है तब शब्द आजाद परिंदों की तरह अपनी बनी बनाई तमाम बंदिशों को तोड़ देना चाहता है। ठीक वैसे ही मेरा ये बंजारा

यूं कहूं बंजारापन कहां चैन से सो पाता है भला। जीवन की कठोर यात्रा में खुद को ढूंढ रहा होता है एक बंजारे की तरह, इधर उधर तलाश रहा होता है अपना ठौर ठिकाना आजाद पंछी की तरह। बेहद मुश्किल है बंजारा मिजाजी, ये बंजारापन। गुलजार साहब तो कहते हैं रात चांद और मैं तीनों ही बंजारे हैं।

कहाँ होता है बंजारों का कोई घर या अपना शहर। मुसाफिर होते हैं, पीठ पर बिछौना साथ लिए घूमते हैं इधर उधर। जंगल संस्कृति के लोग नदी सभ्यता से जैसे कोई नाता नहीं। बस ऐसे ही मैं और मेरा बंजारा मन। जिंदगी में जिंदगी ज्यादा चाहता है सजावट कम, धूप और हवा चाहता है पर्दे कम, सार्थकता चाहता है फर्नीचर कम। जीवन भर खुद को ढोया, खुद से कभी ना हारी हूं मैं। हाँ, एक बंजारा ही हूं मैं। हाँ, एक बंजारा ही हूं मैं।

जावेद अख्तर साहब अपनी एक नज्म में लिखते हैं, मैं बंजारा वक्त के कितने शहरों से गुजरा हूँ, लेकिन वक्त के इस एक शहर से जाते जाते मुड़ के देख रहा हूँ। सोच रहा हूँ तुमसे मेरा ये नाता भी टूट रहा है। तुमने मुझको छोड़ा था जिस शहर में आकर, वक्त का अब वो शहर भी मुझसे छूट रहा है। वो सारे दिन जिनके कंधे पर सोती हैं अब भी तुम्हारी जुल्फ की खुशबू, सारे लम्हे जिनके माथे पर रोशन अब भी तुम्हारे लम्स का टीका, नम आँखों से गुमसुम मुझको देख रहे हैं।

थोड़ी भी जिंदगी को छोड़कर अक्सर तन मन और जीवन बंजारा बन जाता है। देखा जाए तो हम कहीं ना कहीं बंजारे ही तो हैं, कोई काम की तलाश में, कोई घर की तलाश में और कोई खुद की तलाश में भटक ही तो रहा है। जीवन की इस कठोर यात्रा में भूखा प्यासा दर दर भटकता हुआ प्यार और सुकून का सहारा ढूंढ रहा होता है ये बंजारा मन।

आवारापन बंजारापन न जाने कहाँ कहाँ भटक आता है निरंकुश होकर। रात्रि की निस्तब्धता में घर के कोने से लेकर मन के आकाश तक बेधड़क और निडर होकर किसी ने क्या खूब लिखा है, आवारापन बंजारापन एक खला है सीने में, हर दम हर पल बेचैनी है, कौन बला है सीने में। जाने ये कैसी आग लगी है, इसमें धुआं न चिंगारी, हो न हो इस बार कोई खाब जला है सीने में, आवारापन बंजारापन एक खला है सीने में, एक खला है सीने में।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को वो भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्री।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों की 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
3: नसीब इंसान का,
2: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।
4: रात जी यारी दिल अंधेरा है, तू जो सजल नहीं मेरा है, मेरा है रात।
2: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
2: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें,
2: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
5: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के

0: अमेरिका इन द प्रेस चैनल है। लीजिए सुनिए समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। नेपाल तिब्बत सीमा के भूटे कोशी नदी में आई अचानक बाढ़ से अब तक 105 भारतीयों और 37 प्रवासी भारतीयों सहित करीब 500 लोग लापता हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों से अब तक 46 शव बरामद किए गए हैं और 93 लोगों को बचाया गया है। अधिकांश भारतीय तिब्बत में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जा रहे थे, अचानक आई बाढ़ से रसुवा और धादिंग जिले प्रभावित हुए। बाद में इसका असर नुवाकोट और चितवन तक पहुंचा।
2: लापता लोगों में ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड्स के नागरिक भी शामिल हैं। नेपाल पर्यटन बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि ये शुरुआती आंकड़े हैं। प्रभावित क्षेत्र में खोज और बचाव अभियान जारी है। प्रारंभिक जांच के अनुसार भूकंप के कारण हिमस्खलन हुआ, इससे पिघली हुई बर्फ का पानी कोशी नदी में आ गया और अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ से रसुवा क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने रसुवा, नुवाकोट, धादिंग, गोरखा और चितवन के प्रभावित क्षेत्रों के सांसदों के साथ स्थिति पर चर्चा की। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: काठमांडू में भारतीय दूतावास ने प्रभावित भारतीय नागरिकों की सहायता और जानकारी के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। हेल्पलाइन नंबर हैं 9779851318077 और 9779701075000 पर संपर्क कर सकते हैं। दूतावास ने बताया है कि वह बाढ़ प्रभावित भारतीय नागरिकों के शीघ्र बचाव और राहत के लिए नेपाल सरकार के संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में आई बाढ़ से हुई जनहानि और तबाही पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत इस कठिन घड़ी में नेपाल के साथ है। उन्होंने कहा कि भारत इस आपदा से प्रभावित लोगों के लिए नेपाल सरकार के राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह से टेलीफोन पर बातचीत में कहा कि भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचाव और राहत कार्यों के लिए दोनों देशों की टीमें आपस में मिलकर काम कर रही हैं। भारत ने बाढ़ से जूझ रहे नेपाल की सहायता के लिए 10 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री तथा आवश्यक दवाइयां भेजी हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत इस संकट की घड़ी में नेपाल और वहां के लोगों के साथ है। नेपाल में ग्लेशियर फटने के बाद बिहार में अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि स्थिति पर नजर रखने के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की गई है। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से टेलीफोन पर बातचीत की। गृहमंत्री ने राज्य

0: सरकार को स्थिति से निपटने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों महाराजगंज और कुशीनगर में सतर्कता बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ से हुई तबाही पर चिंता व्यक्त करते हुए महाराजगंज और कुशीनगर के स्थानीय प्रशासन को सभी जरूरी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने तथा द्विपक्षीय संबंधों के स्वस्थ और स्थिर विकास के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। सीमा के मुद्दे पर भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच वार्ता का 25वां दौर कल पेइचिंग में आयोजित किया गया। चीन के विशेष प्रतिनिधि सीपीसी केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य और केंद्रीय विदेश आयोग के कार्यालय के निदेशक वांग जी तथा भारत के विशेष प्रतिनिधि और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भारत चीन सीमा मुद्दे पर गहन विचार विमर्श किया तथा 8 बिंदुओं पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने सीमा के मुद्दे पर समाधान के लिए एक रूपरेखा तैयार करने हेतु वार्ता को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता पर बल दिया। भारतीय चिकित्सा संघ आईएमए ने इन्फ्लुएंजा AH1N1 के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। आईएमए ने कहा कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। दुनिया भर में रह रहे केरलम वासियों ने आज तिरुओणम का पर्व मनाया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह पौराणिक राजा महाबली के स्वागत और नई फसल के आगमन की खुशी में सभी केरलवासियों द्वारा उत्साह के साथ मनाया जाता है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलाद उन नबी आज देश के विभिन्न हिस्सों में धार्मिक उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। हंगरी में पीएसए बुडापेस्ट स्वेश ओपन में भारत के वीर चोटरानी और सेल्वन सेंथिल कुमार सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नीना ओरेकल। A massive flash flood swept through the northern part of Nepal near the border with Tibet today, claiming 46 lives so far and leaving 500 people missing, including over 100 Indians. The flood surged through the Bhote Koshi River this morning from the direction of Tibet. Preliminary reports suggest that the flash flood may have been triggered by an earthquake that caused an avalanche, sending large quantities of melted snow into the Bhote Koshi River. Rescue and relief operations have been intensified, with the Nepal Army deploying helicopters and disaster response teams to support search operations. Security officials said 93 people have been rescued from the different parts of the affected areas. According to the Nepal Tourism Board, those reported missing include foreign nationals and Nepali citizens. Among the foreign nationals, 105 are Indians, while 37 are NRIs, most of whom were travelling to Tibet for the Kailash Mansarovar Yatra. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan expressed grief at the loss of lives in the neighbouring country. Prime Minister Narendra Modi spoke to his Nepalese counterpart Birendra Shah and conveyed his condolences. In a social media post, Mr. Modi said, India is ready to provide all possible humanitarian assistance to Nepal. Meanwhile, India has dispatched 10 tons of humanitarian assistance and disaster relief and essential medicines to support the people of Nepal. The Indian Embassy in Kathmandu has issued emergency numbers for assistance and information regarding Indian nationals affected by the flash floods in Nepal. The embassy said that people requiring assistance can contact the embassy on helpline plus 977-985-131-6807 plus 977-970-910-7500 and plus 977-981-032-6117. These emergency numbers can also be contacted through WhatsApp. Bihar has stepped up preparedness following flash floods in the Himalayan nation and the possibility of a sudden rise in the water level of the Gandak River. Heightened vigilance is being maintained in six districts of Bihar: West Champaran, East Champaran, Gopalganj, Saran, Muzaffarpur and Vaishali. Chief Minister Samrat Chaudhary said that a high-level team has been constituted to closely monitor the situation. Union Home Minister Amit Shah spoke to Chief Minister Samrat Chaudhary over the phone.